0: Rachi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: कई बंदे ना अपना विजिटिंग कार्ड अपना मुंह खोलने से पहले दे देते हैं, विच इज़ नॉट ट्रू इन दिस केस दैट आई एम गोइंग टू टेल यू. हमारे ऑफिस में एक नया बंदा आया. नाउ दिस गाय, आई एम 100% श्योर कि रोज शाम को इसकी मम्मी इसे सब्जी लेने भेजती है सब्जी मंडी, क्योंकि ये जैसे मुझसे हैगल कर रहा था ना, आई वॉज लाइक यार तेरे स्किल्स कितने कूल हैं. सो ही इज ऑब्वियस अ लिटिल बिट इंटरेस्टेड इन मी एंड आई टोल्ड हिम कि आई एम हैप्पी सिंगल, मुझे अभी रिलेशनशिप का कोई शौक नहीं है ये वो, ठीक है. सो ही इज टेलिंग मी कि अच्छा ठीक है, रिलेशनशिप नहीं तो हम फ्रेंडशिप ट्राई कर सकते हैं. तो ऐसे मुझे नहीं चाहिए फ्रेंडशिप, मेरे पास जितने फ्रेंड्स हैं मैं खुश हूँ. तो कह रहा है कि मैं एच आर से बात करके अपनी सीट तेरे साथ चेंज कर सकता हूँ, यू नो लाइक हम इकट्ठे पार्टनर्स होकर बैठ सकते हैं. तो आवाज़ देखिए, हैगल क्या कर रहा है यार, नहीं करनी तुझसे बातें, नहीं बनाना है तुझे फ्रेंड, नहीं बनाना है आपके लिए हलवा, आपको समझ में नहीं आ रहा मालिक. बट आई ऑनेस्टली

0: Pepe Mirchi.
1: Escabana, pues cabana, sacabana.
2: ¡Rámbala!
1: ¡Murga, murga! ¡La vieja la murga!
2: ¡Mirchi, murga!
3: हेलो,
4: दिमाग खराब कर रखा है। रॉयल स्टूडियो से बोल रहे हैं भाई?
3: हाँ जी।
4: यार कमाल कर दिया आपने, जो फोटो खींचा थे मेरे बेटे की शादी का, सारी एल्बम आ गई है। क्या फोटो खींचे यार, दिमाग खराब कर दिया।
3: क्यों सर जी, क्या हो गया फोटो में?
4: अरे फोटो आकर देख यार, यहाँ पे क्या एल्बम बना रखी है, सबके फोटो अजीब से आए यार, सारे फोटो यार बकवास कर दिया आपने, मेरा दिमाग खराब।
3: फोटो बहुत अच्छा है। क्या
4: फोटो? बहुत अच्छा है। सतीश चंद का एक बटन है, उसकी शादी के फोटो बिखा दिए यार, सारे दिमाग।
3: सतीश जी बहुत अच्छे फोटो बहुत।
4: अरे मैं झूठ बोल रहा हूँ, मतलब मैं पागल हूँ? आपने एल्बम देखी है? एल्बम देखी है?
3: मैंने देखी खुद अपने हाथ से। सर जी हमने फिश लाइन लगाया उसके ऊपर, बेहतरीन। आप देखिए एक से बेहतरीन क्लोजअप है उसके अंदर।
4: अरे क्लोजअप को मारा गोली यार, क्लोजअप तो देखे में शर्म आ रही है हमें।
3: अरे शर्म की क्या बात है सर,
4: जितने फोटो हैं सबके कपड़े गायब है यार, तूने किया क्या ये?
3: किसी का
4: कपड़े गायब है, एक आदमी का मैं खड़ा हूँ, अजीब सा लग रहा हूँ यार। मैं
3: लेंस लगाया नहीं।
4: क्या कौन सा लेंस लगाया? एक तो बता, ये बदमाशी करते हो, कपड़े गायब
3: नहीं
4: दीदी, मैं कल को
3: फोटो खींचे।
4: अरे लेंस ऐसे पूरे कपड़े कौन से, मैंने शेरवानी पहना की थी, शेरवानी गायब है, अंदर से सब दिख रहा है यार। शेरवानी तुमने गायब करी है यार मेरी।
3: अरे
4: मैं केस कर सकता हूँ वहाँ पे?
3: नहीं साहब, देखिए केस वेस की बात मत कीजिए, इसने हमारा नाम है इलाके में।
4: अरे हमारा भी कुछ था, अब कुछ नहीं बचा जब से फोटो देखे हैं।
3: सर क्या बात, चुन के बनाया है?
4: कोई फोटो चुन के नहीं बनाया, मेरा बेटा खड़ा है, कपड़े नहीं है बहू, उसका चलो छोड़ो, मैंने देखा भी नहीं है, वो खड़ा है, जितने बराती आया सबके कपड़े गायब है, ऐसा लग रहा है यार, पता नहीं अफ्रीका में शादी हो रही है यार।
3: अरे नहीं सर, कहीं गड़बड़ लग रही है मुझे,
4: गड़बड़
3: देखना चाहूंगा एक बार फिर आपकी एल्बम, ऐसी कोई बात नहीं
4: यार, इतना बुरा लग रहा है, हर आदमी के प्लेट में, हर आदमी के हाथ में प्लेट है, कपड़े है भी।
3: दिखाइए
4: आपका कपड़े कैसे, आप उसको सही करिए यार,
3: कोई सिस्टम ही नहीं है, कपड़े गायब हो जाए।
4: ऐसा सिस्टम है, एक जगह होता है।
3: कहाँ होता है बताइए?
5: रेडियो मिर्ची 98.3 FM पर आप मुर्गा बन रहे हैं रेडियो मिर्ची।
2: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स

0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York, South Asia's number one radio station. It's hot.
2: अगर आपने ऑनलाइन विग्स और हैंडकफ्स ऑर्डर किए हैं बिकॉज यू आर जस्ट दैट काइंड ऑफ पर्सन हु लव्स गेटिंग रियली नॉटी इन बेड, लेकिन आप ये शेयर करना चाहते हो किसी के साथ बिकॉज इट्स सच एन ऑसम फीलिंग और अभी तक आपको ऐसा कोई नहीं मिला हु विल नॉट जज यू फॉर दिस, यू कैन चेंज दैट राइट नाउ. जी हाँ, नाउ इज द टाइम एंड दिस इज द प्लेस टू मेक एनी कन्फेशन यू वॉन्ट टू मेक. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है RoCHIE. हिट मी अप, DM मी विद योर नंबर एंड योर कन्फेशन एंड आई विल कॉल यू लाइक आई कॉल्ड माई मिस्ट्री कॉलर. हाई मिस्ट्री कॉलर.
3: हेलो रोशी,
2: हाउ आर यू मिस्ट्री कॉलर?
3: आई एम गुड, हाउ आर यू?
2: मतलब इतना सेक्सी साउंड करने की क्या जरूरत है?
3: आई मीन आई गेट दैट अ लॉट, दैट्स हाउ माय वॉइस इज.
2: ओहो, सो हम्बल. आई गेट दैट अ लॉट, लेकिन क्या करूं, आवाज ही ऐसी है. अच्छा तो ये बताओ मिस्टर हम्बल एंड मॉडेस्ट मिस्ट्री कॉलर, आपकी सीक्रेट कन्फेशन ऑफ द डे क्या है?
3: जब यू आर इन कॉलेज एंड यू आर स्टेइंग इन अ पीजी एंड यू आर इन अ living relationship, so you tend to move together, and we decided that we would not get fat.
2: Okay, that's a very reasonable thing to do.
3: Yeah, but it's very difficult because once you're staying with your partner and at a home and doing nothing, you tend to eat. But we decided to stay healthy, and we decided that sab healthy khana aayega, and hum sab healthy khana khayenge so that we don't get fat, because for the fitness conscious ho jata. But the worst part is, I get to go for grocery shopping. When I go for grocery shopping, I do justice to the grocery shopping, but I also do justice with my cheat day.
2: Okay.
3: That is, whenever I go for grocery shopping, say, you know, alternate days, I tend to have ice creams, I tend to have Frankies.
2: बिना अपनी girlfriend को बताए?
3: बिना अपनी गर्लफ्रेंड को बताए.
2: हे भगवान, यहाँ आपकी गर्लफ्रेंड सैलेड पे जी रही है, थिंकिंग कि मेरा बेबी भी सैलेड ही खा रहा है मेरे साथ. हाउ डेडिकेटेड. आप वहाँ फ्रैंकीज और आइसक्रीम्स खा रहे हो?
3: हाँ, बिकॉज़ यू नो, वंस यू सी दैट इन फ्रंट ऑफ यू पीपल हैविंग इट, यू कांट रेजिस्ट योरसेल्फ.
2: आई कांट बिलीव यू. ये तो फ्रैंकीज के साथ है. अगर आप बाहर हुए और आपके सामने कोई बहुत हॉट लड़की आ गई हु इज हॉटर देन योर गर्लफ्रेंड, फिर आप अच्छा ये बताओ, अगर किसी दिन आपकी गर्लफ्रेंड ने आपको पकड़ लिया फ्रैंकीज खाते हो और आइसक्रीम्स ठूसते हो अपने मुंह में, तो आप क्या करोगे? व्हाट विल यू डू टू सेव द डे?
3: या दैट्स वन

ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: ओ यार मिर्जापुर आ गई यानी 2018 में जिन लोगों ने इस सीरियल बात देखल बे ना, इन लोगों को तो बिंदास्त में एक बार थिएटर में जाकर अपने अपनी कालीन अब चद्दर बिछाकर कालीन भैया के एंटरटेनमेंट देखना बनता है। सारे जो कलाकार है वो धमाल करते हैं। इनफैक्ट जीतूराज तो कहेगा कि जितने लोगों को मिर्जापुर पसंद आई थी उन लोगों को तो 100% पसंद आएगी, पर जिन लोगों ने मिर्जापुर ये सीरीज नहीं देखी उन लोगों को भी एक बार बिंदास देख लेनी चाहिए। बहुत धमाल है, बहुत सारी गाली गलौच है, बहुत सारी गुंडागर्दी है, बहुत सारा खून रेजी है, बट दैट इज व्हाट मिर्जापुर इज ऑल अबाउट। बट जीतूराज को स्त्रियों का महत्व बड़ा पसंद आता है एंड मिर्जापुर सीरीज में जो स्त्रियों को महत्व दिया था वो इस पहले हिस्से में, शायद ऐसे लगता है कि दूसरा हिस्सा भी आएगा मिर्जापुर द मूवी का, इस पहले हिस्से में स्त्रियों को महत्व नहीं दिया है। कोई कारण होगा पता नहीं है, बट बिंदास देखी जा सकती है। ई भौकाल एक बार एंटरटेनमेंट के लिए अपनी फैमिली के साथ देखना चाहिए या नहीं, एक ऑल त्योहार है। हम तोहका ना ही बोला है कि जाके थिएटर में अपनी फैमिली के साथ देखाओ, इंडिविजुअली अपने फ्रेंड्सवा के साथ बिंदास तंगड़ियां पसार के कुर्सियों पर बैठकर

0: के जो धमाल करे, कभी कभार तो ऐसे लगा है कि ज्यादा इम्पोर्टेंट कौन है, रवि किशन बाबू कि हमार कालीन भैया पंकज त्रिपाठी। वो फुल एंटरटेनमेंट है यार। 3.5 मिर्ची है टीम मिर्ची की तरफ से, देखा और अपनी कितनी मिर्चियां हैं वो हमका बताओ इंस्टाग्राम पर, आए @ मिर्ची जीत राज। समझे कि नहीं समझे, सही है
1: जीतू राज। Only on Mirchi, it's hot.

0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York, South Asia's number one radio station. It's hot.
2: कई बार हमारे प्यार की टाइमलाइन लुक्स अ लॉट लाइक द ईसीजी ऑफ अ सीरियसली लाइक डेवेस्टेटेड हार्ट पेशेंट, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हाँ हम इस बंदे के साथ हैं, वी हैड अ ग्रेट रिलेशनशिप बट इट्स नॉट वर्किंग आउट एनी मोर, हम उसके साथ ब्रेकअप कर लेते हैं. कट टू एक दो हफ्ते गुजरते हैं, उसके बाद हमें इस बंदे की याद आती है, हम इस बंदे को फिर मैसेज करते हैं, ही इज़ लाइक हाँ यार कैसी है तू, आई रियली मिस यू, देन यू गेट बैक विद दैट पर्सन. फिर आप तीसरा चौथा पांचवा छठा सता इट सीम्स आई जस्ट मेड अ न्यू वर्ड सातवा ब्रेकअप कर लेते हो. बट द ट्रूथ इज़ कि कई लोगों की रिलेशनशिप की टाइमलाइन ऐसी ही होती है. आई रिमेंबर आई वॉज वंस डेटिंग दिस गाय और हमारा रिलेशनशिप 3 लंबे साल चला, उसमें आई थिंक हमने 300 बार ब्रेकअप किया होगा और जितनी बार ब्रेकअप के बाद हम वापस आते थे आर रिलेशनशिप फेल्ट मोर इंटेंस समहाउ इवन डीपर एंड मोर मीनिंगफुल. इट्स अनदर थिंग कि हम उस ब्रेकअप वाले रिलेशनशिप को सस्टेन नहीं कर पाए. But now that I look back and think about it, I think it was one of my most beautiful relationships ever. And तब मुझे लगता है कि शायद हर relationship की किस्मत नहीं होती है to turn into a marriage or a forever after. But इसका ये मतलब भी नहीं है कि relationships lose their meaning because वो forever after और शादी के बंधन में नहीं बंधे हैं. और अगर आपकी भी जिंदगी में ऐसा ही कोई quirky AF relationship है, I want to know your story, Morning Glory, और उसके बारे में बताने के लिए आप मुझे ढूंढ सकते हो Insta पर या FB पर. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. So go ahead and do whatever you have to do. लेकिन कहीं मत जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना. And I am not breaking up with you. सुनते रहो मिर्ची, it's hot.

0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: कुछ भी कर लो, कुछ भी जिंदगी में आपकी गर्लफ्रेंड आपसे खुश नहीं होगी. दिस इज अ जेनेरिक फैक्ट. और अगर आप इसके बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं भाइयों और बहनों, व्हाई डोंट यू हिट मी अप इंस्टा पर या एफबी पर. मेरा नाम है मिर्ची रोशी. नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. देयर्स टन्स एंड टन्स ऑफ वीडियोस वेटिंग फॉर यू. बट राइट नाउ मेरे साथ लाइन पर रिधिमा है. हाय रिधिमा.
3: हाय रोशी,
2: कैसे हो आप?
3: मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हो?
2: यार मैं सेक्सी एज ऑलवेज, क्या बताऊँ अब आपको. अपने मुंह मियां मिट्ठू भी तो नहीं बनना चाहिए ना, मेरी मम्मी ने सिखाया था मुझे.
3: नहीं नहीं, आपको अलाउड है.
2: यू आर सो क्यूट, आपको अलाउड है. बट आप मुझे ये बताओ कि आप सिंगल हो या एक रिलेशनशिप में हो?
3: मैं रिलेशनशिप में हूँ.
2: वाह,
3: तो लेकिन उससे बेहतर है मैं सिंगल रहूँ.
2: क्यों?
3: मैं बहुत फैशन कॉन्शियस हूँ. और जो मेरा बॉयफ्रेंड है ना, उसे फैशन का एफ भी नहीं पता है.
2: सीरियसली?
3: हाँ.
2: तो यार क्या फर्क पड़ता है? आई मीन, इज दैट अ गुड थिंग कि सारी नजरें आप पर होंगी, आपके बॉयफ्रेंड को कोई नहीं देखेगा मेरे हिसाब से.
3: आई एम अ फैशन ब्लॉगर, मुझे दिखाना पड़ता है कि मेरा बॉयफ्रेंड है और इसका फैशन सेंस अच्छा है और इसका फैशन सेंस बहुत ही बुरा है.
2: तो आप कब से डेट कर रहे हो इस बंदे को? जब डेट कर रहे थे तब नहीं देखा था कि मैं फैशन ब्लॉगर?
3: बचपन से. सिक्स क्लास से वी आर डेटिंग ईच अदर.
2: Oh,
3: और हमें बचपन से ही पता था हाँ हम दोनों ही डेट करेंगे. हाँ. लेकिन परेशान हो गई हूँ बहुत. उसका फैशन सेंस मैंने सब ट्राई कर लिया लेकिन वो नहीं ठीक हो सकता.
2: तो आप अपने फैशन ब्लॉग पे क्यों बोल रहे हो दैट यू हैव अ बॉयफ्रेंड? बोलो ही मत ना दैट यू हैव अ बॉयफ्रेंड, से दैट यू आर सिंगल.
3: यार शो ऑफ करना भी तो बनता है ना.
2: यार अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे फैशन ब्लॉगिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन माय बचपन का प्यार, तो इस बंदे को डंप कर लो और एक नया बॉयफ्रेंड बना लो हु इज मोर फैशनेबल. नहीं,
3: इतना भी नहीं कर सकते यार, दिल टूट जाएगा.
2: किसका? उसका कि आपका?
3: दोनों का.
2: ओह यू लव हिम सो मच. अच्छा ठीक है, तो फिर एक और चीज आप जो कर सकते हो वो ये है, अपने बॉयफ्रेंड को ना अपना प्रोजेक्ट बना ले अपने फैशन व्हाटएवर इंस्टाग्राम सोशल मीडिया के लिए. ठीक है? सो यू बेसिकली टेल देम कि देखो मेरा बॉयफ्रेंड कितना अनफैशनेबल है, बट देखो मैं ऐसे 6 महीने में कितना फैशनेबल बनाती हूँ. इससे दो चीजें होंगी, लोगों को लगेगा कि आप रियल लाइफ में ऐसा कर सकते हो, लोगों को बदल सकते हो, उनके फैशन सेंस को बदल सकते हो. एंड एक बार आपका बॉयफ्रेंड ऐसे फेमस हो जाएगा फॉर बीइंग योर प्रोजेक्ट, वो कभी वापस अपने पुराने फैशन सेंस में नहीं जाएगा.
3: दैट्स अ गुड आइडिया, थैंक यू रोशी.
2: यू आर मोस्ट वेलकम माय डार्लिंग. मेरा तो काम ही लोगों की मदद करने का. अच्छा और ऑफलाइन ना, आई एम गोइंग टू फॉलो यू एंड नेवर अनफॉलो यू इन माय लाइफ. आई लव यू. थैंक
3: आई लव योर कंटेंट.
2: थैंक यू सो मच माय डार्लिंग, इट वाज अमेजिंग टॉकिंग टू यू. और अगर आपकी भी जिंदगी में ऐसे ही रिधिमा की तरह

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: साथ जीतू राज, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: ओ यार मिर्जापुर आ गई। यानी 2018 में जिन लोगों ने इस सीरियल बा देखल बे ना, इन लोगों को तो बिंदास्त में एक बार थिएटर में जाकर अपने अपनी कालीन अब चद्दर बिछा कर कालीन भैया के एंटरटेनमेंट देखना बनता है। सारे जो कलाकार है वो धमाल करते हैं। इनफैक्ट जीतूराज तो कहेगा कि जितने लोगों को मिर्जापुर पसंद आई थी उन लोगों को तो 100% पसंद आएगी, पर जिन लोगों ने मिर्जापुर ये सीरीज नहीं देखी उन लोगों को भी एक बार बिंदास देख लेनी चाहिए। बहुत धमाल है, बहुत सारी गाली गलौच है, बहुत सारी गुंडागर्दी है, बहुत सारा खूनरेजी है, बट दैट इज व्हाट मिर्जापुर इज ऑल अबाउट। बट जीतूराज को स्त्रियों का महत्व बड़ा पसंद आता है, एंड मिर्जापुर सीरीज में जो स्त्रियों को महत्व दिया था वो इस पहले हिस्से में, शायद ऐसे लगता है कि दूसरा हिस्सा भी आएगा मिर्जापुर द मूवी का, इस पहले हिस्से में स्त्रियों को महत्व नहीं दिया है। कोई कारण होगा पता नहीं है, बट बिंदास देखी जा सकती है। ई भौकाल एक बार एंटरटेनमेंट के लिए अपनी फैमिली के साथ देखना चाहिए या नहीं, एक ऑल त्योहार है। हम तोहका ना ही बोला है कि जाके थिएटर में अपनी फैमिली के साथ देखाओ, बट इंडिविजुअली अपने फ्रेंड्सवा के साथ बिंदास तंगड़ियां पसार के कुर्सियों पर बैठकर देख लो। हैं ई का भौकाल मचाए मिर्जापुर द मूवी ने। एंड हां, भूलना मत हमारे रवि किशन भैया जब जब स्क्रीन पर आते ना भैया, अमा पनवा चटाई के जव धमाल करे, कभी कभार तो ऐसे लगाए कि ज्यादा इम्पोर्टेंट कौन है, रवि किशन बाबू कि हमारे कालीन भैया पंकज त्रिपाठी। वो फुल एंटरटेनमेंट है यार। 3.5 मिर्ची है टीम मिर्ची की तरफ से, देखा और अपनी कितनी मिर्चियां हैं वो हमका बताओ इंस्टाग्राम पर आए @मिर्ची जीतूराज। समझे कि नहीं समझे, सही है
0: साथ जीतूराज, only on Mirchi, it's hot.

आपके एक्स बॉयफ्रेंड की शादी हो रही है, उसकी शादी में सिर्फ एक महीना बचा है, एंड यू रियलाइज कि अरे ये तो मेरा सच्चा प्यार है, एंड देन यू डिसाइड कि एक महीना बचा है, दैट्स 30 डेज, आई कैन स्टिल ट्राई एंड विन हिम बैक. क्या आप ऐसा करोगे, हाँ या ना? मेरी बेस्टी की एक कजन है, एंड शी काइंड ऑफ मतलब ब्रोक अप विद हर बॉयफ्रेंड, वेंट टू अमेरिका. अब वो वापस आई है काम धाम छोड़ के, डिसाइडेड टू लाइक सेटल डाउन इन इंडिया. और उसने रियलाइज किया कि आई जेन्युइनली स्टिल हैव द हॉट्स फॉर माय एक्स बॉयफ्रेंड और मैं उसे वापस पाना चाहती हूँ. एक्सेप्ट टाइनी लिटिल प्रॉब्लम, उसकी शादी हो रही है एक महीने में, बट इंस्टेड ऑफ बैकिंग ऑफ शी इज सेइंग कि क्या फर्क पड़ता है, मैं इन 30 डेज में उसका दिल टर्न अराउंड ऐसा करूंगी दैट ही विल वांट टू बी विद मी. नाउ आई डोंट नो इफ एथिकली, मॉरली, रोमांटिकली ये सही चीज है टू डू और नॉट. And because I'm confused about it, I thought I will ask you, कि आपको लगता है कि what she's trying to do basically

0: Robert Buchanan.
1: Investments are subject to market risk. Read all skin related documents carefully.
2: Mirchi. R-O-C-H-I-E.
3: Roshi Roshi.
4: Yeah. Mirchi Roshi.
5: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
6: Like in life, honestly, मैंने maximum number of लोगों को इसलिए dump किया है because they were so grumpy. ये खड़ूस variety has been so irritating for me because उनके हिसाब से या तो उनकी तरह से काम करो या take the highway. And I usually took the highway. And I'm so happy about that क्योंकि एक नई research के हिसाब से the one thing जो एक relationship को permanently damage कर सकती है वो ये है that अगर सामने वाला party, जैसे मेरे पापा कहते हैं कि ओ जेडी party है, सामने वाली party अगर खड़ूस हो ना तो फिर इट्स अ डील ब्रेकर ब्रो. एंड मोर पीपल बिकॉज दे आर लुकिंग फॉर मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स, ये वो चाहते हैं कि सामने वाले इंसान की जो थिंकिंग है वो थोड़ी सी फ्लेक्सिबल हो, आपकी जो भी डिजायर्स एंड एक्टिविटीज हैं वो मनूवरेबल हो ताकि बोथ ऑफ द पीपल कैन डू व्हाट दे बोथ एंजॉय डूइंग इंस्टेड ऑफ जस्ट फॉलोइंग जो एक इंसान करना चाहता है. तो टू कोट माई डैड, अगर सामने वाली पार्टी फ्लेक्सिबल नहीं है तो काम ही नहीं करना उनके साथ. सिमिलरली, अगर सामने वाली पार्टी फ्लेक्सिबल नहीं है तो रिलेशनशिप में ही नहीं रहना उनके साथ. और इसी तरह अगर आपने भी ऐसे ग्रंपी लोगों को लेफ्ट राइट एंड सेंटर रिजेक्ट किया है, आई थिंक वी शुड हैव अ कॉन्वर्सेशन एंड कंपेयर नोट्स. और वो करने के लिए आप मुझे ढूंढ सकते हो इंस्टा पर या एफबी पर. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. सो हिट मी अप बेबी, लेट्स गेट टॉकिंग एंड व्हाटएवर यू डू. कहीं मत जाना, जाना क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: Mitchie Roshi.
1: Only on Radio Mitchie New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: अगर आपने ऑनलाइन विग्स और हैंडकफ्स ऑर्डर किए हैं बिकॉज यू आर जस्ट दैट काइंड ऑफ पर्सन हु लव्स गेटिंग रियली नॉटी इन बेड, लेकिन आप ये शेयर करना चाहते हो किसी के साथ बिकॉज इट्स सच एन ऑसम फीलिंग और अभी तक आपको ऐसा कोई नहीं मिला हु विल नॉट जज यू फॉर दिस, यू कैन चेंज दैट राइट नाउ.
3: द सीक्रेट बॉक्स.
2: जी हाँ, नाउ इज द टाइम एंड दिस इज द प्लेस टू मेक एनी कन्फेशन यू वॉन्ट टू मेक. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. हिट मी अप, DM मी विद योर नंबर एंड योर कन्फेशन एंड आई call you like I called my mystery caller. Hi mystery caller.
4: Hello Roshi.
2: How are you mystery caller?
4: I'm good. How are you?
2: Matlab itna sexy sound karne ki kya zarurat hai?
4: I mean I get that a lot, but that's how my voice is.
2: Oh, so humble. I get that a lot, lekin kya karu, awaaz hi aisi hai. अच्छा तो ये बताओ मिस्टर हम्बल एंड मॉडेस्ट मिस्ट्री कॉलर, आपकी सीक्रेट कन्फेशन ऑफ द डे क्या है?
4: जब यू आर इन कॉलेज and you are staying in a PG and you are in a living relationship, so you tend to move together and we decided that we would not get fat.
2: Okay, that's a very reasonable thing to do.
4: Yeah, but it's very difficult because once you are staying with your partner and at a home and doing nothing, you tend to eat. But we decided to stay healthy and we decided that some healthy khana aega and हम सिर्फ हेल्दी खाना खाएंगे सो दैट वी डोंट गेट फैट बिकॉज फॉर द फिटनेस कॉन्शियस हो जाता है. बट द वर्स्ट पार्ट इज आई गेट टू गो फॉर ग्रोसरी शॉपिंग. व्हेन आई गो फॉर ग्रोसरी शॉपिंग आई डू जस्टिस टू द ग्रोसरी शॉपिंग बट आई ऑल्सो डू जस्टिस विथ माई चीट डे.
2: ओके,
4: दैट इज व्हेनेवर आई गो फॉर ग्रोसरी शॉपिंग से यू नो ऑल्टरनेट डेज आई टेंड टू हैव आइसक्रीम्स, आई टेंड टू हैव फ्रैंकीज.
2: बिना अपनी गर्लफ्रेंड को बताए?
4: बिना अपनी गर्लफ्रेंड को बताए.
2: हे भगवान, यहाँ आपकी गर्लफ्रेंड सैलेड पे जी रही है थिंकिंग कि मेरा बेबी भी सैलेड ही खा रहा है मेरे साथ. हाउ डेडिकेटेड. आप वहाँ फ्रैंकीज और आइसक्रीम्स खा रहे हो?
4: हाँ, बिकॉज यू नो वंस यू सी दैट इन फ्रंट ऑफ यू पीपल हैविंग इट यू कांट रेजिस्ट योरसेल्फ.
2: आई कांट बिलीव यू. ये तो फ्रैंकीज के साथ है. अगर आप बाहर हुए और आपके सामने कोई बहुत हॉट लड़की आ गई हु इज हॉटर देन योर गर्लफ्रेंड, फिर आप अच्छा ये बताओ अगर किसी दिन आपकी गर्लफ्रेंड ने आपको पकड़ लिया फ्रैंकीज खाते हो और आइसक्रीम्स ठूसते हो अपने मुंह में, तो आप क्या करोगे? व्हाट विल यू डू टू सेव द डे?
4: या दैट्स वन क्वेश्चन आई हैव नो आंसर टू, बट इट विल बी लाइक आई विल बी हैविंग द फ्रैंकी एंड हाफ ऑफ इट विल बी इन माय माउथ एंड आई वोंट बी एबल टू च्यू.
2: यू नो व्हाट, आई कैन रोशिफाई यू एंड होप दैट वो रोशिफिकेशन के बाद वो दिन ही ना आए जब आप पकड़े जाओ. हाउ डज दैट साउंड?
4: दैट साउंड्स अमेजिंग.
2: तने गहरी सांस लीजिए बिकॉज
0: रोशिफाइड.
2: ऑल द बेस्ट माय डार्लिंग, आई होप कि आप कभी पकड़े ना जाओ. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस वेरी वेरी नॉटी कन्फेशन विद मी. और अगर आपने भी अपने पार्टनर की आंखों में धूल झोंकी है सिर्फ फ्रैंकीज और आइसक्रीम्स के चक्कर में, तो आपको नहीं लगता हमें इसके बारे में बात कर लेनी चाहिए? एंड टू डू दैट आप मुझे ढूंढ सकते हो इंस्टा पर या FB पर. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. सो डू व्हाटएवर यू हैव टू डू, लेकिन कहीं मत जाना क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
0: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: साथ जीतू राज only on मिर्ची it's hot।
1: ओ यार मिर्जापुर आ गई यानी 2018 में जिन लोगों ने इस सीरियल बात देखल बे ना, इन लोगों को तो बिंदास्त में एक बार थिएटर में जाकर अपने अपनी कालीन अब चद्दर बिछा कर कालीन भैया के एंटरटेनमेंट देखना बनता है। सारे जो कलाकार है वो धमाल करते हैं। इनफैक्ट जीतूराज तो कहेगा कि जितने लोगों को मिर्जापुर पसंद आई थी उन लोगों को तो 100% पसंद आएगी, पर जिन लोगों ने मिर्जापुर ये सीरीज नहीं देखी उन लोगों को भी एक बार बिंदास देख लेनी चाहिए। बहुत धमाल है, बहुत सारी गाली गलौच है, बहुत सारी गुंडागर्दी है, बहुत सारा खून रेजी है, बट दैट इज व्हाट मिर्जापुर इज ऑल अबाउट। बट जीतूराज को स्त्रियों का महत्व बड़ा पसंद आता है एंड मिर्जापुर सीरीज में जो स्त्रियों को महत्व दिया था वो इस पहले हिस्से में, शायद ऐसे लगता है कि दूसरा हिस्सा भी आएगा मिर्जापुर द मूवी का, इस पहले हिस्से में स्त्रियों को महत्व नहीं दिया है। कोई कारण होगा पता नहीं है, बट बिंदास देखी जा सकती है। ये भौकाल एक बार एंटरटेनमेंट के लिए अपनी फैमिली के साथ देखना चाहिए या नहीं, एक ऑल त्योहार है। हम तोहका ना ही बोला है कि जाके थिएटर में अपनी फैमिली के साथ देखाओ, बट इंडिविजुअली अपने फ्रेंड्सवा के साथ बिंदास तंगड़ियां पसार के कुर्सियों पर बैठकर देख लो। हैं ये का भौकाल मचाए मिर्जापुर द मूवी ने। एंड हां, भूलना मत हमारे रवि किशन भैया जब जब स्क्रीन पर आते ना भैया, अमा पनवा चटाई के जव धमाल करे, कभी कभार तो ऐसे लगाए कि ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, रवि किशन बाबू कि हमारे कालीन भैया पंकज त्रिपाठी। वो फुल एंटरटेनमेंट है यार। 3:30 मिर्ची है टीम मिर्ची की तरफ से, देखा और अपनी कितनी मिर्चियां हैं वो हमका बताओ इंस्टाग्राम पर आए @मिर्ची जीतूराज। समझे कि नहीं समझे, सही है
0: साथ जीतूराज। Only on Mirchi, it's hot.

0: Mitchy Roshi.
1: Only on Radio Mitchy New York, South Asia's number one radio station. It's hot.
2: जिंदगी में हमें कई बार ऐसा लगता है जब हम एक नया रिलेशनशिप बनाते हैं उसमें किस लेवल तक हम अपनी ट्रू जिंदगी को कन्फेस कर सकते हैं इन अ कपल ऑफ वीक्स या मंथ्स डिपेंडिंग ऑन हाउ क्लोज एंड इंटीमेट योर पार्टनर इज विद यू. अगर आप उनके साथ अपनी जिंदगी के स्पेशली वो पीरियड्स ऑफ योर लाइफ व्हिच हैव बीन डिफिकल्ट फॉर यू वो शेयर करते हो ना देन ऐसी कन्फेशंस कैन एक्चुअली हेल्प यू बॉन्ड बेटर. आई रिमेम्बर मेरे लास्ट रिलेशनशिप में आई डिस्कस माई एक्सट्रीमली चेकर्ड रिलेशनशिप विद माई डैड विद माई देन बॉयफ्रेंड और हमें डेट करते हुए शायद उस वक्त 2 ही महीने हुए थे बट बिकॉज आई शेयर समथिंग सो क्लोज टू माई हार्ट विद हिम ही कुड शेयर विद मी कि उसके और उसकी मम्मी का रिलेशनशिप भी कुछ वैसा ही था जो मेरे डैड और मेरा है एंड दैट गॉट अस सो क्लोज टुगेदर ना दैट जब हम ब्रेकअप कर रहे थे हम एक दूसरे से यही डिस्कशन कर रहे थे कि ऐसी कॉन्वर्सेशंस ऐसी इंटीमेट कॉन्वर्सेशंस अबाउट द वूंड्स ऑफ आवर हार्ट हम किसी और से नहीं कर पाए हैं. So maybe having real life confessions with your partner is not such a bad idea because it actually helps you bond better. But जब आप ऐसा कर रहे हो ना make sure कि आपका partner आपकी सारी insecurities और wounds के बारे में sensitive हो क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं होगा ना then there's no point opening up because it might end up actually making your wounds even worse. So use your discretion, use your judgment और अगर आपको इसमें किसी की मदद की जरूरत है मैं तो हमेशा ही अपने आप को आपका रोशी कहती हूँ. मेरा नाम है मिर्ची रोशी. काम है आपसे प्यार करना. नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. तो सोच क्या रहे हो. हिट मी अप ऑन इंस्टा या FB एंड व्हाइल यू डू दैट लेट मी टेल यू दिस जिसके पास लव है उसके पास सब है एंड आई लव यू लोड्स.

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
2: द शो स्टार्ट्स इन
3: बॉलीवुड को समझना है तो एक बात मान लीजिए, अब इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। जिस फिल्म को इंडस्ट्री सेफ समझती है, ऑडियंस उसे इग्नोर कर देती है, और जिस फिल्म को देखकर पहला रिएक्शन आता है कि भाई ये क्या बनाई है, कभी कभी वही थिएटर्स में हंगामा कर देती है। Whether it's a Dhurandhar 2, Awarapan 2, Toxic या फिर हैवान, and then of course you got the Dhamals, the cocktails and the Welcome to the Jungles. मतलब ऑडियंस एक अजीब सी डिमांड कर रही है, सरप्राइज भी चाहिए और एंटरटेनमेंट भी चाहिए, बस एक चीज नहीं चाहिए, प्रिडिक्टेबिलिटी। शायद बॉलीवुड की सबसे इंटरेस्टिंग बात आज यही है। इंडस्ट्री फ्यूचर की तरफ भाग रही है, लेकिन ऑडियंस कभी कभी उसे पास्ट की तरफ खींच लाती है। जैसे आज शान की आवाज सैफ अली खान लगभग 2 दशक बाद, और हैवान से ही इस बार का काउंटडाउन होता है किकस्टार्ट। दिस इज गाना नंबर 20, मेरे हीरो है वो।
4: नंबर 20।
5: लेके जन्म पहला पहला कदम, जब चलते हैं हम उंगली थामे कोई,
6: लिख रहे हो ना?
5: तुम भी गाओ।

जब कोई गाना खत्म होता है हम तुरंत उस टाइम पर कुछ बोलते नहीं, बस 2-3 सेकंड्स की वो खामोशी होती है। ना लिरिक्स की कोई एक लाइन दिमाग में अटकी होती है, ना म्यूजिक का कोई पर्टिकुलर पीस, बस आवाज अंदर कहीं रुक गई होती है। तो फिर आओ, मेरे लिए उन्हीं गानों में से एक है। और शायद म्यूजिक की सबसे खूबसूरत बात भी यही है, हर कनेक्शन का एक्सप्लेनेशन नहीं होता। इसलिए आज एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, म्यूजिक हटाने वाला हूं, प्रोडक्शन हटाने वाला हूं, सिर्फ आवाज आप तक पहुंचाना चाहता हूं।

बस अभी जो सुना उसमें अरेंजमेंट नहीं है, फिर भी आवाज पहचान में आ जाती है। आवाज है अरमान मलिक की। एक वक्त था जब रोमांटिक सॉन्ग्स के लिए बॉलीवुड की सबसे इंस्टेंटली रिकॉग्नाइजेबल यंग आवाजों में अरमान का नाम आता था, और फिर उन्होंने इंडिपेंडेंट म्यूजिक में अपनी अलग दुनिया बनाई। और शायद इसलिए नंबर 18 पर आता हुआ ये ब्रांड न्यू गाना सिर्फ एक नई एंट्री नहीं लगती, कभी कभी कमबैक अनाउंसमेंट से नहीं होता, बस आवाज दोबारा सुनाई देती है। और आप खुद समझ जाते हैं, प्रेम कीटाणु से अरमान मलिक इज बैक विद अ सॉन्ग कॉल्ड कहो तो, एंड डेब्यूज ऑन नंबर 18।

मदहोश नाम ही ऐसा है कि वॉल्यूम बढ़ाने से पहले ही दुनिया थोड़ी धीमी पड़ जाती है, और ये एक कॉम्प्लीमेंट है, और यही कॉम्प्लीमेंट बहुत सारे सिंगर्स को भी दिया जा सकता है। और वैसे ही एक सिंगर है जिनकी मैं बात करना चाहता हूँ, नाम है मोहम्मद इरफान। यार इरफान की आवाज में हमेशा से एक अजीब क्वालिटी थी, वो आवाज आपको इम्प्रेस करने नहीं आती थी, वो सीधा मूड बदल देती थी। फिर मोहब्बत याद है आपको, कितनी बातें की हैं मैंने इस गाने की इस शो पर। सॉन्ग वाज संग बाय 3 सिंगर्स, अरिजीत सिंह, साइम भट्ट एंड मोहम्मद इरफान। 3 आवाजें एक गाना, अरिजीत एक दास्तान बन गए, इरफान की आवाज दास्तान बनने से पहले ही जैसे खामोश हो गई, लेकिन आवाज कहीं नहीं गई।

0: कुछ होता है यार दिल में, क्या आवाज है, और शायद दर्द यही है। कभी कभी टैलेंट का खत्म होना प्रॉब्लम नहीं होता, बस उसके पास पहुंचने वाले वो मौके खत्म हो जाते हैं। इस हफ्ते धमाल 4 का कहर संग बाय गुरु रंधावा नंबर 16 पर है। क्योंकि हम इरफान की बातें कर रहे थे, कुछ गाने वक्त के साथ पुराने नहीं होते, वो बस आप ही का एक पुराना वर्जन वापस ले आते हैं। इरफान के लिए वो वक्त था एक विलन का। मिथुन ने तुम ही हो के बाद एक नई आवाज को चुना और बंजारा में मोहम्मद इरफान वो आवाज बन गए। दिस सॉन्ग फ्रॉम एक विलन इज माई रिवाइंड ट्रैक ऑफ द वीक।
1: टॉप 20 रिवाइंड।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: कुछ फ्रेंचाइजेस को रीबूट करने की जरूरत होती है और कुछ को अपना असली चेहरा याद दिलाने की। There's a film called Race, जिसे आप नहीं भूले और मैं भी नहीं भूला, लेकिन रेस शायद उस दूसरी कैटेगरी में आती है, क्योंकि पहली दो फिल्म्स में गाड़ियां तेज थी, लोग उससे भी ज्यादा तेज थे, लेकिन असली मजा स्पीड का नहीं था, मजा था इंफॉर्मेशन का। आपको कुछ पता है और कैरेक्टर को कुछ और ही पता है, और हर 10 मिनट में फिल्म आपको सडनली बताती थी कि जो आप समझ रहे थे वो बिल्कुल गलत था। एंड देन आई सलमान खान की रेस 3। इसमें प्रॉब्लम सिर्फ डायरेक्शन या कास्टिंग की नहीं थी, प्रॉब्लम ये थी कि रेस का जो सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है वो कहीं रास्ते में ही छूट गया, एंड दैट वाज ऑडियंस को डाउट में रखना। अब रेस 4 की बात हो रही है, रीबूट की बात हो रही है, और कास्टिंग पॉसिबिलिटीज काफी इंटरेस्टिंग है। देयर कुड बी आमिर खान, देयर कुड बी टाइगर श्रॉफ, देयर कुड बी सिद्धार्थ मल्होत्रा, विच ऑल्सो मीन्स कि स्केल हो सकता है, एक्शन हो सकता है, बड़े स्टार्स हो सकते हैं। लेकिन असली सवाल अब भी एक ही है, क्या ये रेस होगी या रेस के नाम से एक और एक्शन फिल्म होगी? क्योंकि रेस का मैजिक तभी वापस आएगा जब फिल्म खत्म होने के बाद आप भी सोचेंगे कौन किस पर भारी पड़ा। वेल, लेट मी लीव यू विद दैट थॉट एंड ऑल्सो लीव यू विद माई स्पेशल रिक्वेस्ट सॉन्ग ऑफ द वीक, विच हैपेंस टू बी फ्रॉम द फिल्म दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, बेनी दयाल और शालमली खोलगड़े की आवाज में। दिस इज लत लग गई।
1: Special request song.

महीनों से जिस गाने ने इस काउंटडाउन पर अपना बसेरा बनाया हुआ था, आज उसके सामने वक्त ने एक बार फिर एक नया फैसला लिखा है। कैरा हुआ इज ऑन नंबर टू, लेकिन नंबर वन की कहानी सिर्फ एक चार्ट पोजीशन की नहीं है यार, एक पुराना गाना वापस आता है और हमें लगता है कि हम गाना सुन रहे हैं, लेकिन एक्चुअली हम अपनी पुरानी जिंदगी सुन रहे हैं। तेरा मेरा रिश्ता उन्हीं गानों में से 19 साल पहले पहली बार सुना था, लेकिन फिर हम बदले, शहर बदले, लोग बदले, जिंदगी ने अपना साउंड ट्रैक बदला, लेकिन वो धुन कहीं नहीं गई। और जब आवारापन 2 ने उसे दोबारा हमारे सामने रखा तो हमने सिर्फ एक पुराना गाना नहीं सुना, हमने देखा कि उस गाने के अंदर हमारा कौन सा वर्जन अभी भी दबा हुआ था, अभी भी जिंदा था। तेरा मेरा रिश्ता ने आवारापन को सिर्फ नॉस्टैल्जिया नहीं दिया, उसने फिल्म को एक मेमोरी दी है। और आज वही मेमोरी महीनों पुराने नंबर वन सॉन्ग गहरा हुआ को उसकी जगह से उतार रहा है। इस हफ्ते का नंबर वन सॉन्ग तेरा मेरा रिश्ता कुछ धुनें वक्त के साथ पुरानी नहीं होती, बस हम उनमें खुद का एक नया हिस्सा ढूंढ लेते हैं।

0: कुछ गाने हम चूज करते हैं और कुछ गाने पता नहीं कब हमें चूज कर लेते हैं, फिर वो किसी सफर का हिस्सा बन जाते हैं, किसी याद का, किसी ऐसे वक्त का जिसे हम दोबारा जीना भी नहीं चाहते और पूरी तरह भूलना भी नहीं चाहते। शायद इसलिए हम हर हफ्ते यहां लौटते हैं। That's it for this episode of the Mirchi Talk 20. Until the next time we meet, this is Suren, over and out. Mirchi
1: Talk 20. Suren ke saath, only on Mirchi. It's hot. O chanati kuri, o chanati kuri.

0: साथ जीतू राज only on मिर्ची it's hot।
1: ओ यार मिर्जापुर आ गई यानी 2018 में जिन लोगों ने इस सीरियल बाद देखल बे ना, इन लोगों को तो बिंदास्त में एक बार थिएटर में जाकर अपने अपनी कालीन अब चद्दर बिछाकर कालीन भैया के एंटरटेनमेंट देखना बनता है। सारे जो कलाकार है वो धमाल करते हैं। इनफैक्ट जीतूराज तो कहेगा कि जितने लोगों को मिर्जापुर पसंद आई थी उन लोगों को तो 100% पसंद आएगी, पर जिन लोगों ने मिर्जापुर ये सीरीज नहीं देखी उन लोगों को भी एक बार बिंदास देख लेनी चाहिए। बहुत धमाल है, बहुत सारी गाली गलौज है, बहुत सारी गुंडागर्दी है, बहुत सारा खूनरेजी है, बट दैट इज व्हाट मिर्जापुर इज ऑल अबाउट। बट जीतूराज को स्त्रियों का महत्व बड़ा पसंद आता है एंड मिर्जापुर सीरीज में जो स्त्रियों को महत्व दिया था वो इस पहले हिस्से में, शायद ऐसे लगता है कि दूसरा हिस्सा भी आएगा मिर्जापुर द मूवी का, इस पहले हिस्से में स्त्रियों को महत्व नहीं दिया है। कोई कारण होगा पता नहीं है, बट बिंदास देखी जा सकती है। ई भौकाल एक बार एंटरटेनमेंट के लिए अपनी फैमिली के साथ देखना चाहिए या नहीं, एक ऑल त्योहार है। हम तोहका ना ही बोला है कि जाके थिएटर में अपनी फैमिली के साथ देखाओ, बट इंडिविजुअली अपने फ्रेंड्सवा के साथ बिंदास तंगड़ियां पसार के कुर्सियों पर बैठकर देख लो हैं। ई का भौकाल मचाया मिर्जापुर द मूवी ने। एंड हां, भूलना मत हमारे रवि किशन भैया जब जब स्क्रीन पर आते ना भैया, अमा पनवा चटाई के जव धमाल करे, कभी कभार तो ऐसे लगाए कि ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, रवि किशन बाबू कि हमारे कालीन भैया पंकज त्रिपाठी। वो फुल एंटरटेनमेंट है यार। 3:30 मिर्ची है टीम मिर्ची की तरफ से, देखा और अपनी कितनी मिर्चियां हैं वो हमका बताओ इंस्टाग्राम पर आए @मिर्ची जीतूराज। समझे कि नहीं समझे, सही है।
0: साथ जीतूराज।

0: Radio Mitchy, New York. It's hot.
1: Love is messy, Jay.

0: Radio Mitri, New York, South Asia's number one radio station. It's hot.
1: Purani Jeans, Mirchi Shreya ke saath. Only on Mirchi. It's hot.
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

महमूद साहब पूरी रात किशोरदा के घर के सामने बैठे रहे पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ। उनके गार्ड ने ना जाकर के किशोरदा को बताया कि अरे महमूद रात भर यहीं बैठे रहे। ये जो गाना भी आपने सुना इज फ्रॉम द फिल्म पड़ोसन। अब हुआ ये कि पड़ोसन का फेवरेट कैरेक्टर, अगर आपने ये फिल्म देखी है तो विद्यापीठ ही होगा, यानी किशोरदा का प्लेट कैरेक्टर। नाउ व्हाट हैपेंड वाज कि किशोरदा एट दैट टाइम वाज जस्ट नॉट इंटरेस्टेड इन डूइंग अ फिल्म, मतलब उनको एक्टिंग करनी ही नहीं थी। लेकिन महमूद साहब जो ये फिल्म बना रहे थे उन्हें पता था कि इस जोवियल कैरेक्टर में अगर कोई फिट हो सकता है तो वो किशोरदा है। किशोरदा को वो मनाने गए लेकिन किशोरदा ने साफ मना कर दिया, तो महमूद जी उनके घर के सामने डेरा डाल के बैठ गए कि जब तक वहां नहीं कहेंगे वो वहां से नहीं हिलेंगे। सो किशोरदा ने ये फिल्म की एंड गेस व्हाट, किशोरदा इतने कमाल थे कि जब फिल्म के रशेस सुनील दत्त साहब जो कि फिल्म के मेन लीड थे उन्होंने देखे तो ही वॉज वेरी वॉरिड कि ये क्या हुआ है, ये तो किशोरदा के नाम की फिल्म हो जाएगी। तो उन्होंने और महमूद साहब ने किशोरदा के कुछ कुछ सीन्स एक्चुअली में चॉप भी किए एंड ये बात किशोरदा को पता थी एंड ही डिड नॉट माइंड क्योंकि उनका प्यार तो बस गाना था। ऑलराइट, ऑन दैट नोट, हेलो एंड वेलकम, दिस इज मी श्रेया ओनली ऑन पुरानी जीन्स। आज और किस किस के किस से लेकर के आई हूँ सब बताऊंगी एक एक करके, जल्दी से वापस आओ ओनली ऑन मिर्ची

0: जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुवारे,
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना?

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

काका ना हमेशा से अपनी फिल्म में एक काना खुद पे ऐसा जरूर पिक्चराइज कराते थे जो कि किशोर दा ने उनके लिए प्लेबैक किया और पंचम दा ने उनके लिए कंपोज किया हो, जिसमें वो बस हरफन मौला की तरह जिंदगी को एंजॉय करते हुए आगे चले जा रहे हैं, जैसे कि ये गाना फ्रॉम द फिल्म मेरे जीवन साथी। अब इस फिल्म को बनाने में पता है क्या हो रहा था, क्योंकि काका यानी राजेश खन्ना जब किसी फिल्म में आ जाते थे तो भाई सुपरस्टार थे और उनका जो पैसा होता था वो फिल्म के बजट को ऑलरेडी शूट कर देता था। ऐसे में डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स क्या करते थे कि वो हीरोइंस के साथ कॉम्प्रोमाइज करने लगते थे। तो ये जो फिल्म थी, दिस वॉज ऑफर्ड टू साधना जी, वहीदा रहमान, हेमा मालिनी, वो भी टॉप क्लास हीरोइंस, उनके पैसे जो थे वो कम ही नहीं हो रहे थे, दे आस्क फॉर अच्छा खासा पैसा। अब भाई प्रोड्यूसर थोड़ा परेशान हुए कि मैं दो दो स्टार्स को एक साथ कैसे फिट करूं, तो ऐसे में राजेश खन्ना ने उनको सजेस्ट किया तनुजा जी। एंड तनुजा जी जो उस समय एक्चुअली में ए ग्रेड फिल्मों को देखना चाह रही थी, उसमें काम करना चाह रही थी बड़े डायरेक्टर्स और बड़े एक्टर्स के साथ, शी सेड यस एंड दिस फिल्म मेरे जीवन साथी वॉज एक्चुअली अ हिट। पुरानी जींस पे इसी फिल्म का गाना मैंने आपको सुनाया था, अब कौन आ रहा है, हाँ मैं बताऊंगी नहीं, सुना दूंगी।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: तेरा क्या होगा कालिया?
3: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
2: अब
4: मिर्ची खा।
5: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

ये गाना ऋषिकेश दा की एक टेली सीरीज आई थी जिसका नाम था तलाश. ओके, 90s में टेलीविजन सीरियल आया करता था और ये गाने की लाइन उसमें यूज हुई थी. पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ हेमंत कुमार का ये गाना जो कि उन्होंने खामोशी फिल्म के लिए गाया है और ना कंपोज भी उन्होंने ही किया था. अब ऋषिकेश दा की एक टेली सीरीज जिसका नाम था तलाश, उसमें इस गाने की लाइन को यूज किया गया था. जीवन एक प्यास है, सभी को कुछ तलाश है. वेल, दिस इज फ्रॉम द फिल्म खामोशी जिसमें थे राजेश खन्ना और वहीदा रहमान. एक्चुअली में डायरेक्टर साहब तो लेना चाहते थे देव आनंद जी को, लेकिन वहीदा रहमान ने काका को सजेस्ट किया था और ये फिल्म अच्छी खासी पॉपुलर हुई थी. और भी क्या क्या किस्से उस जमाने के लेकर के आई हूँ, एक साथ थोड़ी ना बताऊंगी. गाने सुनकर के वापस आओ. दिस इज मी श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: ओ यार मिर्जापुर आ गई। यानी 2018 में जिन लोगों ने इस सीरियल बा देखल बे ना, इन लोगों को तो बिंदास्त में एक बार थिएटर में जाकर अपनी अपनी कालीन चद्दर बिछाकर कालीन भैया के एंटरटेनमेंट देखना बनता है। सारे जो कलाकार है वो धमाल करते हैं। इनफैक्ट जीतूराज तो कहेगा कि जितने लोगों को मिर्जापुर पसंद आई थी उन लोगों को तो 100% पसंद आएगी, पर जिन लोगों ने मिर्जापुर ये सीरीज नहीं देखी उन लोगों को भी एक बार बिंदास देख लेनी चाहिए। बहुत धमाल है, बहुत सारी गाली गलौच है, बहुत सारी गुंडागर्दी है, बहुत सारा खूनरेजी है, बट दैट इज व्हाट मिर्जापुर इज ऑल अबाउट। बट जीतूराज को स्त्रियों का महत्व बड़ा पसंद आता है, एंड मिर्जापुर सीरीज में जो स्त्रियों को महत्व दिया था वो इस पहले हिस्से में, शायद ऐसे लगता है कि दूसरा हिस्सा भी आएगा मिर्जापुर द मूवी का, इस पहले हिस्से में स्त्रियों को महत्व नहीं दिया है। कोई कारण होगा पता नहीं है, बट बिंदास देखी जा सकती है। ई भौकाल एक बार एंटरटेनमेंट के लिए अपनी फैमिली के साथ देखना चाहिए या नहीं, एक कॉल त्योहार है। हम तोहका ना ही बोला है कि जाके थिएटर में अपनी फैमिली के साथ देखाओ, बट इंडिविजुअली अपने फ्रेंड्सवा के साथ बिंदास तंगड़ियां पसार के कुर्सियों पर बैठकर देख लो। ई का भौकाल मचाया मिर्जापुर द मूवी ने। एंड हां, भूलना मत हमारे रवि किशन भैया जब जब स्क्रीन पर आते हैं ना भैया, अमा पनवा चटाई के जब धमाल करे, कभी कभार तो ऐसे लगाए कि ज्यादा इम्पोर्टेंट कौन है, रवि किशन बाबू कि हमारे कालीन भैया पंकज त्रिपाठी। वो फुल एंटरटेनमेंट है यार। 3:30 मिर्ची है टीम मिर्ची की तरफ से, देखा और अपनी कितनी मिर्चियां हैं वो हमका बताओ इंस्टाग्राम पर, आए @ मिर्ची जीतूराज। समझे कि नहीं समझे, सही है
1: साथ जीतूराज Only on Mirchi, it's hot.
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

राजेश खन्ना और मुमताज जी की हिट जोड़ी का एक और ये खास गाना फ्रॉम देयर फिल्म आपकी कसम। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, और जब काका पर्दे के उस पार होते थे तो उनकी आवाज पीछे से कौन बनता था? ऑफ कोर्स इट हैज टू बी किशोरदा। वेल, ये फिल्म की ना एक और खास बात है, यूके में एक नया नया इंडियन थिएटर खुला था, इंडियन सिनेमा खुला था, और उसका नाम था नटराज। वहां पे पिक्चराइज यानी वहां पे दिखाने वाली ये पहली इंडियन फिल्म थी आपकी कसम। इसी फिल्म का गाना मैं लेकर के आई थी। अगला कौन सा है? हाँ, चलो किशोरदा की बात हुई है, किशोरदा का ही एक और गाना कमिंग अप राइट नेक्स्ट। मैं हूँ श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

ये पहली फिल्म थी जीतू जी और गुलजार साहब के एक साथ। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, ये गाना इज फ्रॉम द फिल्म परिचय। नाउ दिस वाज द फर्स्ट फिल्म इन द सीरीज ऑफ थ्री फिल्म्स जो कि गुलजार साहब ने डायरेक्ट की थी और जितेंद्र जी पे पिक्चराइज थी। द अदर टू फिल्म्स जो थी वो थी एक खुशबू और दूसरी थी किनारा। दोनों में इतनी अच्छी जमी कि दोनों ने तीन फिल्मों में एक साथ काम किया, यानी इन तीनों फिल्मों में गुलजार साहब ने डायरेक्ट किया और जीतू जी ने उसमें काम किया। वैसे बाय द वे जो अदर टू फिल्म्स थी यानी खुशबू एंड किनारा, ये दोनों जीतू जी के ही बैनर के अंडर बनी थी और उसका नाम तब था तिरुपति पिक्चर्स। और इन तीनों में ऑफ कोर्स आर डी बर्मन साहब का म्यूजिक एंड गुलजार साहब के लिरिक्स थे। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, कम राइट बैक।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: आओ बच्चों, आज तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं मैं। शेर की कहानी सुनोगे?

0: कई साल पहले की ये बात है।
1: बोलो माँ, चुप क्यों हो गए?
0: भयानक अंधेरी सिया रात में लिए अपनी बंदूक मैं हाथ में,

0: जा रहा था, नहीं आ रहा था, नहीं नहीं जा रहा था।
1: उफ़, आगे भी तो बोलो ना।
0: बताता हूँ। नहीं भूलती उफ़ वो जंगल की रात, मुझे याद है वो थी मंगल की रात। चला जा रहा था मैं डरता हुआ, हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ।
2: बोलो हनुमान की जय, जय जय बजरंग बली की जय। हाँ बोलो हनुमान की जय, जय हो बजरंग बली की जय।
0: घड़ी थी अंधेरा मगर सख्त था, कोई 10:15 का बस वक्त था।

0: लरजता था कोयल की भी कूक से, बुरा हाल हुआ उस पे भूख से, लगा तोड़ने एक बेरी से बेर, मेरे सामने आ गया एक शेर।
1: कोई खिड़की बन के नजर फिर गई तो बंदूक भी हाथ से गिर गई। मैं लपका, वो झपका, मैं ऊपर, वो नीचे, वो आगे, मैं पीछे, मैं पेड़ पे, वो पीछे, अरे बचाओ, मैं डाल डाल, वो पान पान, मैं पसीना, वो दांत दांत, मैं सुर में, वो ताल में, ये जंगल पाताल में, बचाओ, बचाओ, अरे भागो, अरे भागो, अरे भागो।

बहुत ही खास बात है इस गाने में, क्योंकि बच्चन साहब के गाए हुए कलेक्शन का ये पहला गाना था। पुरानी जीन्स में आप श्रेया के साथ, दिस सॉन्ग इज संग बाय अमिताभ बच्चन जी, और ये उन्हीं की मूवी मिस्टर नटवर लाल का गाना है। लेकिन उन्होंने इतने सारे जो गाने गाए ना, ओ साथी रे, आज रपट जाए तो, नीला आसमास हो गया, मच गया शोर, एंड सो मेनी ऑफ देम, अमर अकबर एंथनी, सो मेनी ऑफ देम, उनमें यानी इस टैलेंट में, उनके गाने के टैलेंट में ये गाना पहला गाना था, मेरे पास आओ। राजेश रोशन ने कंपोज किया था एंड ही एक्चुअली वेंट एंड सजेस्टेड दिस टू बच्चन साहब कि इस गाने में मुझे आपकी आवाज़ की ज़रूरत है। अगर शायद राजेश रोशन ना होते और बच्चन साहब को कन्विंस ना करते तो मैं बच्चन साहब की आवाज़ इतने ढेर सारे गानों में मिलती ही नहीं। ऑल राइट, और कौन कौन सी बातें हैं उस जमाने के, एक एक करके बताऊंगी। कम राइट बैक, मैं हूँ श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में। अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
1: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची। इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

ये गाना तो पंचम दा ने इस फिल्म के लिए बनाया ही नहीं था। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ ये जो गाना आपने सुना ना, दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग मैंने पूछा चांद से, आर डी बर्मन साहब ने कंपोज किया है, रफी साहब ने गाया है। दिस फिल्म के लिए गाना बना ही नहीं था। अब्दुल्ला से बहुत पहले रफी साहब और पंचम दा ने ये गाना बना करके रखा था, लेकिन एक बार रफी साहब के घर पे संजय खान ने ये गाना सुना। गाना क्या है, इस गाने की धुन सुनी एंड ही लव्ड इट इंस्टेंटली एंड ही सेड कि मैं जो फिल्म बना रहा हूँ अब्दुल्ला, उसमें इस गाने को मैं डेफिनेटली जगह देना चाहता हूँ। फिर ईयर्स लेटर, क्योंकि इस गाने को बने हुए ऑलरेडी काफ़ी टाइम हो गया था, थोड़े बहुत मिनिमल चेंजेस के साथ रफ़ी साहब ने गाना गाया और ऑफकोर्स पंचम दा की कॉम्पोजिशन है और इसको अब्दुल्ला में रखा गया। वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग्स दिस इज, मैंने पूछा चांद से। पुरानी जीन्स पे आप खुश रहे आगे साथ, और भी किस्से हैं एक एक करके सुनाती रहूंगी। कम राइट बैक।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर साथ जीतू राज मिर्ची इट्स हॉट।
1: ओ यार मिर्जापुर आ गई यानी 2018 में जिन लोगों ने इस सीरियल बात देखल बे ना इन लोगों को तो बिंदास्त में एक बार थिएटर में जाकर अपने अपनी कालीन अब चद्दर बिछाकर कालीन भैया के एंटरटेनमेंट देखना बनता है। सारे जो कलाकार है वो धमाल करते हैं। इनफैक्ट जीतूराज तो कहेगा कि जितने लोगों को मिर्जापुर पसंद आई थी उन लोगों को तो 100% पसंद आएगी, पर जिन लोगों ने मिर्जापुर ये सीरीज नहीं देखी उन लोगों को भी एक बार बिंदास देख लेनी चाहिए। बहुत धमाल है, बहुत सारी गाली गलौज है, बहुत सारी गुंडागर्दी है, बहुत सारा खून रेजी है, बट दैट इज व्हाट मिर्जापुर इज ऑल अबाउट। बट जीतूराज को स्त्रियों का महत्व बड़ा पसंद आता है एंड मिर्जापुर सीरीज में जो स्त्रियों को महत्व दिया था वो इस पहले हिस्से में, शायद ऐसे लगता है कि दूसरा हिस्सा भी आएगा मिर्जापुर तो मूवी का, इस पहले हिस्से में स्त्रियों को महत्व नहीं दिया है, कोई कारण होगा पता नहीं है, बट बिंदास देखी जा सकती है। ई भौकाल एक बार एंटरटेनमेंट के लिए अपनी फैमिली के साथ देखना चाहिए या नहीं, एक ऑल त्योहार है। हम तोहका ना ही बोला है कि जाके थिएटर में अपनी फैमिली के साथ देखाओ, बट इंडिविजुअली अपने फ्रेंड्सवा के साथ बिंदास तंगड़ियां पसार के कुर्सियों पर बैठकर देख लो हैं ये का भौकाल मचाया मिर्जापुर द मूवी ने। एंड हां भूलना मत हमार रवि किशन भैया जब जब स्क्रीन पर आते हैं ना भैया अमा पनवा चटाई के जब धमाल करे कभी कभार तो ऐसे लगाए कि ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है रवि किशन बाबू कि हमार कालीन भैया पंकज त्रिपाठी। वो फुल एंटरटेनमेंट है यार। 3:30 मिर्ची है टीम मिर्ची की तरफ से, देखा और अपनी कितनी मिर्चियां हैं वो हमका बताओ इंस्टाग्राम पर आए एट मिर्ची जीतूराज। समझे कि नहीं समझे, सही है
0: साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

लेट लेजेंडरी एक्टर मनोज कुमार जी के पास ना जनरली हर फिल्म डायरेक्टर जाता था अपनी फिल्म के रशेस दिखाने और उनसे सजेशन भी लेता था। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ ये जो गाना आपने सुना इज फ्रॉम द फिल्म कलाकार। इसमें थे कुणाल गोस्वामी और श्रीदेवी जी। अच्छा, जब मनोज कुमार जी को ये फिल्म के रशेस दिखाए गए ना प्री लॉन्च से भी पहले, तो मनोज कुमार जी ने इस फिल्म में कुछ चेंजेस बताए कि फिल्म के कैरेक्टर को सिंपथी नहीं मिलेगी अगर वो ऑडियंस को ऐसे दिखेगा, बिकॉज फिल्म में कुणाल गोस्वामी श्रीदेवी के साथ बहुत रफली बिहेव करता है एंड लेटर ऑन पता चलता है ओ ही वाज डायग्नोज विद कैंसर। तो मनोज कुमार जी ने ये कहा था कि ये बात पहले ही बता दो, इंटरवल से पहले बता दो, सो दैट ऑडियंस को ये रफ बिहेवियर समझ में आए और वो कैरेक्टर के साथ सिंपथाइज कर पाए। पर ऐसा डायरेक्टर साहब ने किया नहीं और उनका मानना था कि इसी वजह से फिल्म बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप रही। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया। ऐसे बड़े सारे किस्से ना मुझे पता करके आने में आपके लिए बहुत मजा आती।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

रफी साहब का ये गाना ओनली ऑन पुरानी जीन्स. मैं हूँ श्रेया. मूवी का नाम है तुमसे अच्छा कौन है. और इस फिल्म की सबसे खास बात बताओ बताओ क्या. अच्छा चलो मैं ही बता देती हूँ. ललिता पवार का डबल रोल था इस फिल्म में. सोचो ना हीरोइन का ना हीरो का, पर ललिता पवार का डबल रोल. सच अ रेयर फिल्म है ना. हाँ जी, तो इसी फिल्म का गाना आपको सुनाया हमारे किशोरदा. क्या सुनाने वाले हैं जरा गौर फरमाइए.

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

भाई शर्मिला जी को लेटर ऑन ये गलती लग रही हो, लेकिन मुझे तो लगता है कि ओ हो, शी लुक सो हॉट, शी लुक सो सेंसुअस। पुरानी जींस पे आप हो श्रेया के साथ, ये जो गाना है ये है फ्रॉम द फिल्म एन इवनिंग इन पेरिस, जिसमें शर्मिला टैगोर ने बिकिनी पहन के पूरे इंडिया को शॉक कर दिया था। लेटर ऑन इन अ चैट शो विद हर डॉटर इन लॉ यानी करीना कपूर खान, उन्होंने ये बात एक्सेप्ट की कि उन्होंने उस समय सोचा नहीं और बहुत वे अहेड, यू नो, चीज उन्होंने बहुत पहले कर ली। बट आई वुड से कि क्या हॉट और क्या सेंसुअस वो लगे, और उनसे ज्यादा खूबसूरत, उनसे ज्यादा हॉट कोई भी बिकनी में ना कभी लगा और ना कभी लगेगा। तो उनकी इसी फिल्म का गाना एन इवनिंग इन पेरिस का गाना था जो रफी साहब ने गाया। अगला कौन है? अगला है नहीं बताऊंगी, नहीं सुना दूंगी।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में। अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।

0: only on Radio Mercy New York. It's hot.
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

देव साहब ने मना किया, जितेंद्र जी ने मना किया, और तो और प्रकाश मेहरा ने भी मना कर दिया। किसी को ये नहीं पता था कि इस फिल्म के इतने सक्सेसफुल सीक्वल्स बनेंगे और आज तक बनते रहेंगे। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, ये जो गाना है इज फ्रॉम द फिल्म द ओरिजिनल डॉन, जिसको लिखने वाले थे सलीम जावेद साहब की जोड़ी। एंड फॉर अ लॉन्ग पीरियड दे वर नॉट एबल टू सेल द स्क्रिप्ट टू एनीवन। जब वो ये स्क्रिप्ट लेकर के गए ना, तो उनको भाई जीतू जी ने मना कर दिया, प्रकाश मेहरा ने मना कर दिया, देव आनंद साहब ने मना कर दिया कि इस स्क्रिप्ट में क्या है, इट इज ऑल अबाउट वन कैरेक्टर जिसका नाम है डॉन। इट वॉज अल्टीमेटली डायरेक्टर चंद्र बैरट एंड प्रोड्यूसर नरिमन ईरानी जिन्होंने स्क्रिप्ट को यू नो परचेज किया उनसे, खरीदा उनसे। और फिर तो डॉन के बारे में क्या ही कहना, डॉन वन, डॉन टू, डॉन थ्री, डॉन फोर, और मुझे लगता है न जाने कितनी डॉन्स बनती रहेंगी। लेकिन द ओरिजिनल इज ऑलवेज द ओरिजिनल, बच्चन साहब एज डॉन ऑलवेज। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। मिर्ची पर उसको साथ जीतू राज only on मिर्ची it's hot।
1: ओ यार मिर्जापुर आ गई। यानी 2018 में जिन लोगों ने इस सीरियल बा देखल बे ना, इन लोगों को तो बिंदास्त में एक बार थिएटर में जाकर अपनी अपनी कालीन अब चद्दर बिछा कर कालीन भैया के एंटरटेनमेंट देखना बनता है। सारे जो कलाकार है वो धमाल करते हैं। इनफैक्ट जीतुराज तो कहेगा कि जितने लोगों को मिर्जापुर पसंद आई थी उन लोगों को तो 100% पसंद आएगी, पर जिन लोगों ने मिर्जापुर ये सीरीज नहीं देखी उन लोगों को भी एक बार बिंदास देख लेनी चाहिए। बहुत धमाल है, बहुत सारी गाली गलौच है, बहुत सारी गुंडागर्दी।

0: सकती है। ये भौकाल एक बार एंटरटेनमेंट के लिए अपनी फैमिली के साथ देखना चाहिए या नहीं, एक ऑल त्योहार है। हम तोहका ना ही बोला है कि जाके थिएटर में अपनी फैमिली के साथ देखा हो, बट इंडिविजुअली अपने फ्रेंड्सवा के साथ बिंदास तंगड़ियां पसार के कुर्सियों पर बैठकर देख लो है। ये का भौकाल मचाए मिर्जापुर द मूवी ने। एंड हां, भूलना मत हमार रवि किशन भैया जब जब स्क्रीन पर आते ना भैया, अमा पनवा चटाई के जव धमाल करे। कभी कभार तो ऐसे लगाए कि ज्यादा इम्पोर्टेंट कौन है, रवि किशन बाबू कि हमार कालीन भैया पंकज त्रिपाठी। फुल एंटरटेनमेंट है यार। 3.5 मिर्ची है टीम मिर्ची की तरफ से, देखा और अपनी कितनी मिर्चियां हैं वो हमका बताओ इंस्टाग्राम पर आए @ मिर्ची जीतूराज। समझे कि नहीं समझे, सही है
1: जीतूराज। Only on Mirchi, it's hot.

0: only on Radio Mercy New York. It's hot.
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ जाने का टाइम, यानी लेट्स हिट द हाईवे। आज का मेरा हाईवे हिट उन लोगों पे है जिन्हें एक ही बंदे पे बार बार प्यार आता है। उनके सामने कितनी भी हसीनाएं आ जाएं या फिर कितने भी हैंडसम मुंडे आ जाएं, उन्हें तो प्यार बस इसी एक बंदे पे बार बार आता है। अनुराधा पौडवाल एंड पंकज उदास जी की आवाज में कौन सा गाना है आप गौर फरमाइए। तब तक मैं जाती हूँ, ख्याल रखो अपना। इन केस यू वांट टू स्पीक विद मी तो वन टू वन चैट हो जाएगी ना हमारी फेसबुक या इंस्टा पे, आरजे श्रेया विद लव। दैट्स आरजे SHREYA विद लव। बस DM कर देना। गुड नाइट।

0: ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: ओ यार मिर्जापुर आ गई यानी 2018 में जिन लोगों ने इस सीरियल बा देखल बे ना, इन लोगों को तो बिंदास्त में एक बार थिएटर में जाकर अपनी अपनी कालीन अब चद्दर बिछा कर कालीन भैया के एंटरटेनमेंट देखना बनता है। सारे जो कलाकार है वो धमाल करते हैं। इनफैक्ट जीतूराज तो कहेगा कि जितने लोगों को मिर्जापुर पसंद आई थी उन लोगों को तो 100% पसंद आएगी, वह जिन लोगों ने मिर्जापुर ये सीरीज नहीं देखी उन लोगों को भी एक बार बिंदास देख लेनी चाहिए। बहुत धमाल है, बहुत सारी गाली गलौच है, बहुत सारी गुंडागर्दी है, बहुत सारा खूनरेजी है, बट दैट इज व्हाट मिर्जापुर इज ऑल अबाउट। बट जीतूराज को स्त्रियों का महत्व बड़ा पसंद आता है, एंड मिर्जापुर सीरीज में जो स्त्रियों को महत्व दिया था वो इस पहले हिस्से में, शायद ऐसे लगता है कि दूसरा हिस्सा भी आएगा मिर्जापुर द मूवी का, इस पहले हिस्से में स्त्रियों को महत्व नहीं दिया है। कोई कारण होगा पता नहीं है, बट बिंदास देखी जा सकती है। ये भौकाल एक बार एंटरटेनमेंट के लिए अपनी फैमिली के साथ देखना चाहिए या नहीं, एक और त्योहार है। हम तोहका ना ही बोला है कि जाके थिएटर में अपनी फैमिली के साथ देखाओ, बट इंडिविजुअली अपने फ्रेंड्सवा के साथ बिंदास तंगड़ियां पसार के कुर्सियों पर बैठकर देख लो हैं। ये का भौकाल मचाया मिर्जापुर द मूवी ने। एंड हां, भूलना मत हमारे रवि किशन भैया जब जब स्क्रीन पर आते ना भैया, अमा पनवा चटाई के जव धमाल करे, कभी कभार तो ऐसे लगाए कि ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, रवि किशन बाबू कि हमार कालीन भैया पंकज त्रिपाठी। वो फुल एंटरटेनमेंट है यार। 3.5 मिर्ची है टीम मिर्ची की तरफ से, देखा और अपनी कितनी मिर्चियां हैं वो हमका बताओ इंस्टाग्राम पर आए @मिर्ची जीतूराज। समझे कि नहीं समझे, सही है
0: जीतूराज। Only on Mirchi, it's hot.
2: मेरा चैन वैन सब उजड़ा, जालिम नजर

0: ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
0: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: साथ जीतू राज, only on मिर्ची, it's hot.
1: ओ यार मिर्जापुर आ गई यानी 2018 में जिन लोगों ने इस सीरियल बाद देखल बे ना, इन लोगों को तो बिंदास्त में एक बार थिएटर में जाकर अपने अपनी कालीन अब चद्दर बिछा कर कालीन भैया के एंटरटेनमेंट देखना बनता है। सारे जो कलाकार है वो धमाल करते हैं। इनफैक्ट जीतूराज तो कहेगा कि जितने लोगों को मिर्जापुर पसंद आई थी उन लोगों को तो 100% पसंद आएगी, पर जिन लोगों ने मिर्जापुर ये सीरीज नहीं देखी उन लोगों को भी एक बार बिंदास देख लेनी चाहिए। बहुत धमाल है, बहुत सारी गाली गलौज है, बहुत सारी गुंडागर्दी है, बहुत सारा खून रेजी है, बट दैट इज व्हाट मिर्जापुर इज ऑल अबाउट। बट जीतूराज को स्त्रियों का महत्व बड़ा पसंद आता है एंड मिर्जापुर सीरीज में जो स्त्रियों को महत्व दिया था वो इस पहले हिस्से में, शायद ऐसे लगता है कि दूसरा हिस्सा भी आएगा मिर्जापुर तो मूवी का, इस पहले हिस्से में स्त्रियों को महत्व नहीं दिया है। कोई कारण होगा पता नहीं है, बट बिंदास देखी जा सकती है। ई भौकाल एक बार एंटरटेनमेंट के लिए अपनी फैमिली के साथ देखना चाहिए या नहीं, एक ऑल त्योहार है। हम तोहका ना ही बोला है कि जाके थिएटर में अपनी फैमिली के साथ देखाओ, बट इंडिविजुअली अपने फ्रेंड्सवा के साथ बिंदास तंगड़ियां पसार के कुर्सियों पर बैठकर देख लो। ई का भौकाल मचाए मिर्जापुर द मूवी ने। एंड हां, भूलना मत हमारे रवि किशन भैया जब जब स्क्रीन पर आते ना भैया, अमा पनवा चटाई के जव धमाल करे, कभी कभार तो ऐसे लगाए कि ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, रवि किशन बाबू कि हमारे कालीन भैया पंकज त्रिपाठी। वो फुल एंटरटेनमेंट है यार। 3:30 मिर्ची है टीम मिर्ची की तरफ से, देखा और अपनी कितनी मिर्चियां हैं वो हमका बताओ इंस्टाग्राम पर आए @मिर्ची जीतूराज। समझे कि नहीं समझे, सही है
0: साथ जीतूराज। Only on Mirchi, it's hot.

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन, इट्स हॉट।

0: और सुनता है सबकी, करें उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन। इट्स हॉट।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन, इट्स हॉट।

Mola, mucho de un paega. Con mola, con mola.

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Sethia and Brahma Kumari, Sister Shivani. Only on Mirchi. It's hot.
1: टीचर्स के लिए ब्रह्म कुमारी सिस्टर शिवानी क्या कहती हैं?
2: आइए जानते हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा के इस स्पेशल एपिसोड में
1: ब्रह्म कुमारी सिस्टर शिवानी और विशाल सेठिया के साथ।
3: नमस्कार, आज बहुत आई थिंक सौभाग्य का दिन है। हमने एक बीज बोया था बहुत सालों पहले, बहुत सालों तो नहीं, 1.5 साल पहले, और उसका शायद फल आज हमें मिल रहा है कि हमारे सौभाग्य की सिस्टर शिवानी आज हमारे साथ हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस सिस्टर शिवानी।
2: शुक्रिया, ओम शांति।
3: सिस्टर, मेरे मन में ना बहुत सारे प्रश्न उथल पुथल करते रहते हैं, तो आज मैं, क्योंकि मौका मिला है, तो मैं विदाउट पुटिंग एनी बैकग्राउंड मैं ऐसे ही पूछने वाला हूँ आपसे। तो पहले ही माफी मांग रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि ये ऊटपटांग से सवाल है तो आप मुझे माफ कर दीजिएगा और अपने हिसाब से बताइएगा। सिस्टर, टीचर्स डे पे मैं बहुत सारी चीजें सोचता हूँ, स्कूल में बहुत सारी चीजें होती थी। मुझे आपसे पूछना है कि आप, आज ऐसा मौका मिलता है कि शायद कई लोगों का आप मार्गदर्शन करती हैं, आपके लिए वो कौन सी एक महिला है, इंसान है, जो भी है, जिनको अपना गुरु मानते हैं, वो कौन सा गुरु मंत्र उन्होंने दिया था जो आपने हमेशा याद रखा है?
4: हर एक बच्चे की लाइफ में फर्स्ट वुमन विल बी द मदर।
3: बिल्कुल।
4: एंड इस राजयोग मेडिटेशन को सीखना, इस ज्ञान को समझना, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं था।
3: अच्छा।
4: तो मैं काफी उससे दूर दूर रहती थी, मुझे जरूरत नहीं लगती थी उसकी। बट मेरी मदर ने शुरू किया। हाँ। तो उन्होंने ऑब्वियसली, यू नो, पेरेंट फिर ऑब्वियसली चाहेगा कि बच्चा भी वो सीखे जिसमें उसका फायदा है।
3: बिल्कुल।
4: लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट आज से 30 years back, जरूरत ही नहीं लगती थी, लाइफ परफेक्ट थी। अगर आप अकेडमिक्स में अच्छा कर रहे हो तो आपकी जीवन सेट है, आपको कोई टेंशन नहीं है। स्ट्रेस वर्ड ही नहीं पता था हमारे को, तो फिर मेडिटेशन की क्या जरूरत। तो द मोर शी वुड पुश मी, द मोर आई वुड मूव अवे। बट आई हैव सीन कि वो पर्सिस्टेंस, एंड उन्होंने फिर बोलना बंद कर दिया। सो नाउ आई लर्न्ड यू कैन बी अ टीचर लाइक दैट आल्सो। क्या आप बोलना बंद कर देते हैं, आप कुछ कहना बंद कर देते हैं, लेकिन आप सिर्फ एक अच्छी प्योर इंटेंशन रखते हैं ना, तो वो इंटेंशन मैजिकल रिजल्ट लेकर आती है। सो ऑफ कोर्स फिर हम, वंस आई केम टू द ब्रह्मा कुमारीज, आई मेट सो मेनी सिस्टर्स, एवरीवन हैज टॉट मी सो मच, लेकिन जर्नी स्टार्ट करने के लिए तो निमित्त वही है। सो लॉट ऑफ ग्रेटिट्यूड टू हर फॉर दैट।
0: रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर शिवानी, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए। इट्स अ जर्नी। चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची। इट्स ऑल।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Sethia and Brahma Kumari, Sister Shivani. Only on Mirchi. It's hot.
1: क्या गुस्से में भी हम पॉजिटिव वाइब्रेशंस भेज सकते हैं? आइए जानते हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा के इस स्पेशल एपिसोड में ब्रह्म कुमारी, सिस्टर शिवानी और विशाल सेठिया के साथ।
2: ये आपने बहुत खूबसूरत बात बोली कि कभी कभी ना हम बोलना बंद कर देते हैं और शांत हो जाते हैं, कुछ बताते नहीं है अक्सर, लेकिन हम ये जो बोलना बंद करते हैं वो गुस्से में करते हैं कि कोई बोलने का फायदा नहीं है, उसको बोलते हैं सुनते ही नहीं है, सुनता ही नहीं है। लेकिन आपकी मम्मी ने बोलना बंद किया, लेकिन शायद बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन भेजती रही आप तक।
3: वो तो अब समझ में आता है ना, तब ये समझ में नहीं आता था कि बिना बोले भी कुछ हो सकता है, बिना कहे भी अपनी सोच दूसरे तक पहुंचाई जा सकती है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि वो घर में खाना बनाती थी, तो जो उनकी सोच है वो खाने के थ्रू, भोजन के थ्रू भी हमारे ऊपर असर करती है। तो उन्होंने अपनी ये जर्नी शुरू की एंड मेरे फादर, मेरा ब्रदर, मैं, नोबडी वाज इंटरेस्टेड। लेकिन आज सारे हैं उस जर्नी के ऊपर, बिकॉज शी वाज कुकिंग। तो वो खाना बनाते समय जो मन की स्थिति होती है और जो एक प्योर इंटेंशन है बच्चे के लिए, वो सब काम करता है विदाउट सेइंग एनीथिंग।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी, सिस्टर शिवानी, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Sethia and Brahma Kumari, Sister Shivani. Only on Mirchi. It's hot.
1: Jaisa ann, vaisa man. क्या हमारे खाने का असर हमारे माइंड पर भी पड़ता है?
2: आइए जानते हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा के इस स्पेशल एपिसोड में
1: ब्रह्म कुमारी, सिस्टर शिवानी और विशाल सेठिया के साथ।
3: खाने के बारे में मैं देखता हूँ कि आप कई बार कई जोर देते हैं और खाने पे बहुत आपका महत्व रहता है कि किस इंटेंशन से बना है, वो बहुत जरूरी होता है। लेकिन आम जगहों पर, मैं रेस्टोरेंट और होटल्स की बात नहीं कर रहा, बाहर की जगह की बात नहीं कर रहा, घरों की बात कर रहा हूँ, आजकल बहुत बार खाना जब बनता है तो हमारे दिमाग में कुछ चल रहा होता है, हम कुछ सोच रहे होते हैं या हम शायद मोबाइल देखते वक्त ही खाना बना रहे होते हैं। तो ऐसे केसेस में हम उनको क्या कहें कि भाई जब आप ये करें तो क्या स्थिति रहेगा, क्या सोचें आप?
4: उनकी गलती नहीं है, क्योंकि उनको ये लगता है कि खाना बनाना जो सामने वाला खाएगा वो उसकी बॉडी के हेल्थ के लिए है।
3: हाँ।
4: तो हम फोन पे बात भी कर सकते हैं, हम टीवी भी दूसरे रूम में ऑन रख सकते हैं, हम फोन पे कुछ सुन भी सकते हैं और हम खाना बना सकते हैं, वो खाना बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। क्योंकि हमारे लिए खाना बनाना वॉज अ डूइंग, कुछ करना है, मुझे खाना बनाना है, तो हम परफेक्ट खाना बना सकते हैं। हम परेशान मन से भी, दुखी उदास मन से भी, रोते हुए भी परफेक्ट खाना बना सकते हैं। मतलब वो रेसिपी हमें आती है ना, वो तो आप आधी रात को भी नींद में उठाओगे घर की मदर को तो वो बना लेंगी। एंड दे वर राइट, क्योंकि वो डूइंग का था। लेकिन अब हमें समझ में आता है जो भारत की संस्कृति में हजारों साल से है कि इट इज जैसा अन्न वैसा मन, इट इज नॉट जैसा अन्न वैसा तन।
3: बिल्कुल,
4: है ना। तो हम तो बॉडी के लिए खाना बना रहे थे, तो बॉडी के लिए अगर आप खाना बना रहे हैं तो आप कुछ भी सोच रहे हैं डजंट मैटर, आपकी रेसिपी परफेक्ट होनी चाहिए और आपकी सब्जी वो परफेक्ट बननी चाहिए।
3: बिल्कुल।
4: लेकिन अब जब समझ में आता है कि जैसा अन्न वैसा मन, तो दूसरी लाइन ये भी है, जैसा मन वैसा अन्न।
3: अच्छा, जैसा मन वैसा अन्न।
4: हाँ, मतलब बनाने वाले का मन,
3: स्थिति जो हो,
4: बनाने वाले का जो मन है, तो बेसिकली एनर्जी वाइब्रेशन की बात हो रही है। सो इवन अगर चलो हम उतना नहीं सोचे, अगर कोई बहुत प्यार से खाना बनाता है ना, जिसको लाइक बहुत अच्छा लगता है किसी के लिए खाना बनाना उसको, तो उसकी वो वाइब्रेशन ऑफ प्यार, वो दैट इंटेंशन, खाने वाला ज्यादा खा जाता है।
3: हाँ, बिल्कुल,
4: है ना, ज्यादा खा जाता है। एक और भी कोई हो सकता है जो बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी बनाएगा पर उसका मन नहीं था खाना बनाने के लिए,
3: तो एक में पेट भर जाता है,
4: बेमन से बनाया हुआ खाना, परफेक्ट रेसिपी फिर भी होगी। तो वो हम एक्सपेरिमेंट करके देखें, तो हमें तो बहुत एक्सपीरियंसेस हैं अभी ऐसे कि बनाने वाले की सोच, बनाने वाले की मन की स्थिति सीधा अन्न पर असर करती है और वो अन्न खाने वाले के मन पर असर करता है और फिर खाने वाले का मन खाने वाले के तन पर असर करता है। सो इट इज अन्न से मन, फिर मन से तन। हम ये कहते हैं कि भले रेसिपी ठीक ना हो, भले एक सिंपल सी खिचड़ी बना देना, कुछ हमें चार चीजें नहीं चाहिए, लेकिन वो बनाने बहुत अच्छे मन की स्थिति के लिए,
3: खुशी खुशी बनाए,
4: तो हमारी प्रायोरिटी चेंज हो गई है।
3: वाह, क्या बात।
4: क्योंकि हमें पता है चार चीजें खाने से खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश मन से बनाई हुई एक खिचड़ी भी खाई तो उससे खुशी भी मिलेगी और स्वास्थ्य भी मिलेगा। अगर कोई खाना डिस्टर्ब स्टेट ऑफ माइंड से बनाया है, लेकिन परफेक्ट खाना बना है, लेकिन उसकी करंट जो है एनर्जी वो डिस्टर्ब्ड है, तो वो बॉडी को भी हेल्थ नहीं दे सकती। चलो मन को तो नहीं सुकून देगी, लेकिन वो शरीर को भी स्वास्थ्य नहीं देगी, क्योंकि जब वो अंदर जा रहा है वो एक एनर्जी के साथ जा रहा है, मैं परेशान हूँ, मैं दुखी हूँ, आज मेरे साथ ऑफिस में ये हो गया या और कुछ नहीं तो मैं इतनी थकी हुई हूँ, हमेशा मुझे ही सारा काम करना पड़ता है,
3: तो खाने वाले को भी महसूस होगा,
4: खाने वाले के शरीर पर भी असर करेगा। जब हम कहते हैं ना मेजोरिटी ऑफ आर डिजीजेज आर लाइफस्टाइल, तो ये एक लाइफस्टाइल का हिस्सा है। क्योंकि बहुत लोग कहते हैं हम तो परफेक्ट डाइट खा रहे हैं, डॉक्टर ने लिखा ये हम बिल्कुल उसको फॉलो कर रहे हैं, तो सिर्फ हम क्या खा रहे हैं उससे नहीं होगा, कौन बना रहा है, किस मन की स्थिति में बना रहा है, फिर जो खा रहा है वो किस मन की स्थिति में खा रहा है, वो सारे फैक्टर्स मिला के फिर शरीर के हेल्थ बनेंगे।

टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

काशीपुरपतिं भज विश्वनाथम् भूताधिपं भुजगभूषण भूषिताङ्गं व्याघ्राजिनाम्बरधरं जटिलं त्रिनेत्रं पाशाङ्कुशाभयवरप्रदशूलपाणिं वाराणसीपुरपतिं।

0: चार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर शिवानी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: खाना बनाते और खाते वक्त पीस ऑफ माइंड क्यों जरूरी है, आइए जानते हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा के इस स्पेशल एपिसोड में ब्रह्म कुमारी सिस्टर शिवानी और विशाल सेठिया के साथ।
2: खाने के बारे में मैं देखता हूँ कि आप कई बार कई जोर देते हैं और खाने पे बहुत आपका महत्व रहता है कि किस इंटेंशन से बना है, वो बहुत जरूरी होता है।
3: तो सिर्फ क्या खा रहे हैं नहीं, क्या खा रहे हैं लेकिन कौन बना रहा है, कैसे बना रहा है, और फिर अगर सब बनाने वाले ने सब परफेक्ट कर लिया लेकिन खाने वाला ही टीवी देख के साथ खाना खा रहा है,
2: वो भी जरूरी।
3: अब उसमें वो चाहे दुनिया की खबरें देख रहा है या कोई सीरियल देख रहा है,
2: क्राइम शो देख रहे हैं,
3: अच्छा कुछ नहीं तो आप एक मैच ही अगर देख रहे हो, ओके उसमें कोई नेगेटिव नहीं कुछ नहीं, लेकिन आपका माइंड कितना उथल पुथल करता है एक मैच देखते हुए भी, दैट्स नॉट गुड। आप खाना अंदर डाल रहे हैं, इट हैज टू गो विद पीस शांति। तो इवन अगर आप सोचो हम तो मैच देख रहे हैं, कोई क्राइम नहीं कोई नेगेटिव, बट उसमें बहुत फ्लक्चुएशन आता है। खाना हमेशा शांति से खाना है, इसलिए बचपन से सीखा था शुरू करने से पहले रुको, उसको याद करो परमात्मा को, या कोई भी हाई एनर्जी थॉट क्रिएट करो। क्यों थॉट क्रिएट करो हाई, अभी तो खाना खाना है, क्योंकि जब आप हाई एनर्जी थॉट क्रिएट करेंगे आपका माइंड एकदम पावरफुल साइलेंट हो जाएगा, वो हाई एनर्जी थॉट आपके शरीर को मिलेंगे, आपका शरीर भी सेटल्ड हो जाएगा, फिर वो हाई एनर्जी थॉट वो अन को मिलेगी, फिर वो अन उस हाई एनर्जी के साथ अंदर जाएगा। तो मन और तन दोनों के लिए क्या खा रहे हैं से ज्यादा कैसे खा रहे हैं और कैसे बना रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है।
2: बहुत बढ़िया।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर शिवानी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

mola, mucho en la jupa ega. Con mola, con mola.

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर शिवानी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: 100 तारीफों के बीच एक क्रिटिसिज्म ही हमें क्यों याद रह जाता है, आइए इस माइंडसेट को समझें मिर्ची रिचार्ज मंत्रा के इस स्पेशल एपिसोड में ब्रह्म कुमारी सिस्टर शिवानी और विशाल सेठिया के साथ।
2: सिस्टर, मेरे साथ कई बार क्या होता है कि मैं लोगों से मिल रहा हूँ और बहुत प्यारे लोग हैं, बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स हैं और लेट्स से मैंने एक प्रेजेंटेशन किया, बोलते हैं अरे बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था और हम उसके बारे में बात कर रहे हैं और कोई एक उनमें से होगा जो बोलेंगे यार तुम्हारी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तुम यार ये बहुत करते हो, तुमको ये नहीं करना चाहिए, कुछ क्रिटिसाइज उसने कर दिया। अब 90 लोगों ने बहुत अच्छा बोला लेकिन एक ने कुछ गलत बोला, ऐसा क्यों होता है कि जब मैं वापस घर जाता हूँ वो एक चीज मेरे दिमाग में बार बार चलती रहती है और मैं सोचता हूँ यार उसने ऐसा बोल दिया। मैं 90 लोगों पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता हूँ कि यार 90 लोगों को फर्क पड़ा, अच्छा लगा उनको। हमारा दिमाग हमेशा नेगेटिव की तरफ ज्यादा क्यों भागता है?
3: 100 लोग हैं, 90 लोगों ने आपको एक गिफ्ट दिया
2: जी,
3: लेकिन जो वो एक था उसने ऐसा हैमर मारा तो चोट लगी।
2: हाँ।
3: तो चोट लगी तो वो चोट दर्द हो रही है, दर्द को आपने ठीक नहीं किया है।
2: हाँ।
3: अगर आप दर्द को ठीक कर देंगे तो वो हैमर भी भूल जाएगा, लेकिन अगर मुझे यहाँ चोट लगी है और वो दर्द हो रहा है तो मुझे चोट मारने वाला याद आएगा ना, जितनी देर वो दर्द होगा, तो वो सिर्फ उस दिन नहीं याद आएगा, वो हफ्ते भी याद आएगा, अगली बार दिखेगा तो भी चोट याद आएगी। इम्पोर्टेंट ये है कि जब वो मिल रही है क्रिटिसिज्म उसी टाइम अगर हम उसको हील कर लेंगे ना तो वो घाव नहीं बनेगा, और हम सिर्फ घाव बनने नहीं देते, हम उस घाव को बार बार रिपीट भी करते हैं। तो वो घाव क्या होता है, सिर्फ माइंड में नहीं करते, हम किसी से बात भी करते हैं, हम कहते हैं पता है उसको क्या आता है, कुछ आता तो है नहीं, आके अपना दे के चला गया,
2: मैंने ये किया वो ऐसा बोला,
3: फिर सामने वाला उस पे और आपको एंडोर्स करता है, हाँ वो तो है ही ऐसा, तो हम अपने को और अलाउ करते हैं, ये सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। हमेशा हमें याद रखना है सामने वाला जो कह रहा है वो उसका नजरिया है और उनका नजरिया उनके संस्कारों से बनता है
2: जी।
3: और हर सोल की लंबी जर्नी है तो अलग अलग संस्कार हैं, वो रोल कोई भी प्ले कर सकते हैं आपके ऑफिस में, लेट से कोई आपका सीनियर है या कोई आपका जूनियर है, रोल अलग अलग है लेकिन डिफरेंट जर्नी डिफरेंट संस्कार। तो जब आपको कोई अप्रिसिएशन देना तब याद रखना कि मेरे बारे में नहीं है, ये इनके प्यारे प्यारे संस्कार हैं जो ऐसा बोल रहे हैं,
2: प्यारे प्यारे,
3: हाँ प्यारे है ना, वो अच्छा दिख रहे हैं, वो अच्छा बोल पा रहे हैं आपको।
2: हाँ।
3: कि उनके अच्छे संस्कार है ना इसलिए वो कर पा रहे हैं।
2: हाँ।
3: और अगर कोई ऑपोजिट देगा तब भी याद रखना इट्स नॉट अबाउट मी, ये उनका संस्कार है, थोड़ा सा कड़वाहट भरी है मन के अंदर, कोई चोट लगी होगी कभी, इस वजह से वो ऐसा बोल रहे हैं। जिसको अगर किसी को वायरल होता है ना तो उसको मीठी खीर भी अच्छी नहीं लगती है।
2: बिल्कुल,
3: अगर मेरे पास वो संस्कार है ना।
2: हाँ।
3: वो चाहे कभी भी बना हो वो संस्कार, तो आप बेस्ट पर्सन ऑन द प्लैनेट हो सकते हैं।
2: हाँ।
3: लेकिन मुझे फिर भी कुछ ना कुछ आपके अंदर गलती दिखाई देगी, नॉट बिकॉज आप गलत हैं, क्योंकि मेरे पास वो संस्कार है। तो प्रैक्टिस निंदा में नहीं करनी है, प्रैक्टिस स्तुति में करनी है।
2: अच्छा।
3: अप्रिसिएशन में करनी है।
2: बिल्कुल।
3: तो पुराने जमाने में वो घड़ी थी ना जो पेंडुलम ऐसे घूमता।
2: हाँ,
3: था।
2: बिल्कुल।
3: तो मेडिटेशन हमें सिखाता है पेंडुलम को बस सेंटर में रखना।
2: हाँ।
3: जब अप्रिसिएशन मिले तब भी सेंटर में रखना।
2: हाँ।
3: अगर अप्रिसिएशन में सेंटर में रख लिया।
2: हाँ।
3: तो क्रिटिसिज्म में सेंटर में रहेगा वो
2: जी।
3: लेकिन अगर अप्रिसिएशन में वो 60 डिग्रीज इस तरफ गया टू द लेफ्ट।
2: हाँ।
3: तो वो क्रिटिसिज्म में 60 डिग्रीज टू द राइट जाएगा।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर शिवानी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए। इट्स अ जर्नी। चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर शिवानी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: वैलिडेशन से ज्यादा इनर इवैल्यूएशन क्यों जरूरी है, आइए जानते हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा के इस स्पेशल एपिसोड में ब्रह्म कुमारी सिस्टर शिवानी और विशाल सेठिया के साथ।
2: ये बहुत जरूरी है क्योंकि जब कोई अप्रिशिएट करता है हमको बड़ा अच्छा लगता है।
3: हाँ, तो फिर आप डिपेंडेंसी क्रिएट कर ली ना दूसरों के शब्दों के ऊपर, जो अप्रिशिएट करे उसको प्यार से शुक्रिया दुआएं, लेकिन याद रखना ये उनका संस्कार है। और ऐसे भी हो सकता है कि कोई मन में आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहा है
2: लेकिन बोल में कर रहा है,
3: शब्दों में कर रहा है, तो वो भी हमें पता नहीं। लेकिन हम कितना किसी की भी वाहवाही लेकर अपने आप को बहुत ज्यादा वो कर लेते हैं। हमें खुद खुद को इवैल्यूएट करना चाहिए
2: जी।
3: हमें खुद डिटैच्ड होकर अपने आप को इवैल्यूएट करना चाहिए कि कैसा था वो प्रेजेंटेशन, या और फिर जो क्रिटिसाइज कर रहा है उसका आप फीडबैक ले लीजिए। फीडबैक आपके लिए है, क्रिटिसिज्म उनका संस्कार है,
2: वो बहुत जरूरी है, ये इनको सेपरेट करें।
3: लेकिन जब हम वो क्रिटिसाइज करके फीडबैक देते हैं ना, तो हम फीडबैक भी नहीं लेते हैं क्योंकि हम क्रिटिसिज्म से ही हर्ट होते हैं। तो सपोज मेरे पास आपके लिए गिफ्ट है, वो गिफ्ट बहुत रियली वैल्यूएबल है आपके लिए, लेकिन मेरा देने का तरीका ठीक नहीं था। मैं आपके पास आई और मैंने कहा ये लो, तो वो मैंने दिया इतना गलत तरीके से कि आपने गिफ्ट खोल के ही नहीं देखा।
2: सही बात।
3: दिस इज व्हाट हैपेंस स्पेशली इन एन ऑफिस।
2: यस।
3: यू नो सामने वाला बहुत आपके फायदे के लिए कोई आपको बात कहता है, लेकिन अगर उसका मन परेशान है, अगर कोई कड़वाहट भरी हुई है, तो उसका कहने का तरीका उतना रिस्पेक्टफुल नहीं होगा। तो तरीका उनका है, फीडबैक हमारे लिए है। तो सेपरेट द फीडबैक फ्रॉम द संस्कार ऑफ क्रिटिसिज्म। तो फिर आप फीडबैक को नहीं खोएं क्योंकि वो मेरी गिफ्ट थी, देने का तरीका उनका संस्कार।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर शिवानी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Sethia and Brahma Kumari, Sister Shivani. Only on Mirchi. It's hot.
1: क्या आप भी नो नहीं बोल पाते? तो ये कॉन्वर्सेशन आपके लिए है. आइए जानते हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा के इस स्पेशल एपिसोड में ब्रह्म कुमारी, सिस्टर शिवानी और विशाल सेठिया के साथ.
2: सिस्टर, क्योंकि हम ऑफिस की बात कर रहे थे, एक सिचुएशन के बारे में बात करते हैं. हमारे ऑफिस में एक बहुत सीनियर बंदे हैं और वो मुंह पे हमेशा हाँ बोलते हैं लेकिन पीठ पीछे जाके बिल्कुल उसका उल्टा. सीनियर बंदे हैं, उनसे बहुत बार फीडबैक उनको दे दिया गया है इस बारे में. और शायद कहीं ना कहीं ऐसा भी होता है ना कि कुछ लोग होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं, तो ऐसा नहीं कि आप उनको परे कर सकते हैं. और सारी चीज़ों के बीच में भी बात, ऐसे लोगों से क्या करें? क्योंकि कई बार जब मैं सोचता हूँ कि चलो उनका संस्कार उनको फॉरगिव कर देते हैं, लेकिन मेरी ड्यूटी भी अपने ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, मुझे भी अपना काम करना है, उनके साथ मेरे डिपार्टमेंट को काम करना है. ऐसे लोगों को कैसे हैंडल किया जाए?
3: वो ना नहीं बोल पाते. वो जानबूझ के नहीं कर रहे हैं.
2: अच्छा.
3: क्योंकि बहुत लोग ना नहीं बोल पाते हैं और बहुत लोग ना सुन नहीं पाते हैं.
2: हाँ.
3: है ना, कुछ लोग ना सुन के भी ऑफेंड हो जाते हैं.
2: हाँ.
3: कुछ लोग ना इसलिए नहीं बोल पाते क्योंकि वो दूसरे को ऑफेंड नहीं करना चाहते.
2: बिल्कुल.
3: एंड दिस इज अ संस्कार ऑफ सीकिंग वैलिडेशन. अगर मैंने आपको किसी चीज के लिए ना बोला, फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा कि मैंने ना बोला. और अगर आपको अच्छा नहीं लगेगा तो फिर आपके अनुसार मैं अच्छी नहीं हूँ, ये मेरा बिलीफ सिस्टम है. तो इसीलिए भले मुझे वो ना लगता है लेकिन मैं अच्छी हूँ, ये आपके माइंड में फिक्स होना चाहिए. इसके लिए मैं आपको हाँ बोलती हूँ. वो आपके लिए है ही नहीं एक्चुअली, वो मेरी नीड है ऑफ वैलिडेशन. तो ये सामने वाले को पता भी नहीं होता कि ये क्यों कर रहे हैं ये सब कुछ, लेकिन वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वो हर एक से एक अच्छी वो क्रिएट करना चाहते हैं. और उसमें उनकी गलती नहीं होती है कि कभी कभी बहुत पुरानी रिकॉर्डिंग हो गई होती है. मोस्ट केसेस में इट इज अ चाइल्ड.
2: Okay.
3: एक बच्चा है.
2: हाँ.
3: जिसका पेरेंट या
2: हाँ.
3: जिसका टीचर बहुत क्रिटिकल या बहुत स्ट्रिक्ट या बहुत डिफिकल्ट टू प्लीज.
2: हाँ.
3: जिसको आप खुशी नहीं कर सकते हो. आप कितना भी परफॉर्म कर लो, आप 99/100 लिया, वो बोलेगा लेकिन
2: हाँ.
3: आपका ये एक नंबर नहीं है. जब बच्चा छोटा होता है ना, उसके लिए ये बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो अभी तक वो सीख कर रहा है कि कब एक दिन
2: कोई अप्रिशिएट
3: वो मेरा पेरेंट या वो मेरा टीचर कहेंगे तो बहुत अच्छे हो. तो वो जो सीकिंग का संस्कार है ना, वो बहुत पुराना होता है. और वो इतना पुराना होता है कि हमको भी नहीं पता हमारा वो संस्कार कैसे बन गया है, लेकिन हम आज भी वो सीकिंग के मूड में हैं कि लोग मुझे कहें कि मैं अच्छी. वो बहुत डीप प्रोग्रामिंग होती है. तो वो अभी नहीं समझेंगे लेकिन हमें समझ लेना चाहिए कि ये उनका संस्कार है.
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी, सिस्टर शिवानी. ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Sethia and Brahma Kumari, Sister Shivani. Only on Mirchi. It's hot.
1: वर्कप्लेस में ओपन कम्युनिकेशन क्यों जरूरी है, आइए जानते हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा के इस स्पेशल एपिसोड में ब्रह्म कुमारी, सिस्टर शिवानी और विशाल सेठिया के साथ।
2: सिस्टर, क्योंकि हम ऑफिस की बात कर रहे थे, एक ऑर्गेनाइजेशन जब आप चलाते हैं तो सिर्फ समझने से तो काम नहीं चलता, हमको काम भी करवाना है।
3: आप उनसे ओपनली बोल सकते हैं कि हम तो रेडी है, आप बताओ अगर ये गलत है तो हम अभी छोड़ देते हैं, हम अभी इसको चेंज। गिव द पर्सन दैट थिंग कि आप सेम रहेंगे दिस वे और दैट वे। अगर आपने हमें अच्छा बोला या राइट बोला तो भी हम ठीक हैं। अगर आपने बोला कि हमने जो गलत किया उसको पूरा बदलना, हम भी ठीक। आप उनको ना, हम रोल को देखते हैं ना, तो हमें बहुत डिफिकल्ट होता है ये करना। ओ, ये तो इतने बड़े हैं, इनको हम ऐसे क्यों बात करें। हम रोल को नहीं देखते हैं, हम व्यक्ति को देखते हैं, और हमें दिखता है कि ये छोटा सा बच्चा अभी तक वो घाव लेके चल रहा है, तो बस उसको उस नजरिए से देखकर एक तब ओपनली बोल दो कि आई एम परफेक्टली ओपन, आप बस मुझे बता दो कौन सी गलतियां। तो सामने वाले को शक्ति देनी पड़ेगी कि वो हिम्मत कर सके आपको डिसप्लीज करने के लिए, बाय अश्योरिंग हिम कि हम ऑफेंड नहीं होंगे, हमारी रिस्पेक्ट आपके लिए अभी भी उतनी है, आप हमारी गलतियां निकालोगे तभी भी उतनी ही है, आप हमें गलत कहोगे तो भी उतनी है। ये अश्योरेंस उस बच्चे को नहीं मिली थी। तो जब हमें दूसरों के संस्कार और मन की स्थिति समझ में आती है ना, भले वो हमारे रोल में सीनियर होंगे लेकिन मन अभी भी वो बच्चे का ही है, तो वो मन को अश्योरेंस दे दो कि वी आर एब्सोल्युटली ओपन, कि आप फीडबैक दो, आप गलतियां निकालो और हम आपके साथ ही बैठ के इसको करेक्ट करेंगे। एक बार दो बार, इट्स लाइक किसी को पानी से डर लगता है, तो वो डरता है ना, कब भी कुछ हुआ होगा, उसको बहुत धीरे से पानी के पास लेके जाना पड़ता है, एक नई रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है आत्मा पर कि पानी इज कम्फर्टेबल, लिफ्ट इज कम्फर्टेबल। कभी कुछ हो गया तो लिफ्ट में जाने से डर लगता है, कभी कुछ हुआ तो फ्लाइट में, ऐसे ही करेक्शन देने से डर लगता है क्योंकि मुझे ना नहीं सुना।
0: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Sethia and Brahma Kumari, Sister Shivani. Only on Mirchi. It's hot.

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला ओनली ऑन रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: देखो, अगर आज तुम्हारा अलार्म 3 बार ऑलरेडी बज चुका है, तुम्हारी चाय ऑलरेडी स्पिल हो चुकी है, एनी आई 95 ट्रैफिक इज ऑलरेडी कॉलिंग यू, रिलैक्स बॉस, टेक अ डीप ब्रेथ, बिकॉज एज द ग्रेट फिलोसोफर्स नेवर सेड कि लाइफ इज 10% व्हाट हैपेंस टू अस एंड 90% ऑफ हाउ वेल वी प्रिटेंड दैट एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली फाइन। दिस इज योर गर्ल प्रिसिला विद यू, लेकर आई हूँ ऑफिशियली तुम्हारे लिए मिर्ची मॉर्निंग्स, जिसकी अभी अभी शुरुआत हुई है। तो फिलहाल अगर तुम कम्यूट कर रहे हो या फिर किसी मीटिंग को बहुत शिद्दत से सर्वाइव कर चुके हो या फिर प्रिटेंड कर रहे हो कि तुमने सारी ईमेल्स आज के दिन की पढ़ ली है, आई एम हियर टू मिर्चीफाई योर डे। तुम्हारे साथ अगले कुछ घंटों तक रहने वाली हूँ मैं, इसीलिए जल्दी से जाओ, जान पहचान बढ़ा लो, सोशल मीडिया पर भी मुझे फॉलो करो, मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम, इंस्टाग्राम और एक्स पर दैट इज MIRCHIPRIS, और व्हाट्सएप करना है तो 9033647244, दैट्स माई नंबर। एंड अभी आने वाले हैं कुछ मिर्चीदार नंबर्स जस्ट फॉर यू, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे hot।

रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: Hey there, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, दिस इज मिर्ची मॉर्निंग। जरा अब चलते हैं थोड़ा सा टाइम ट्रैवलिंग करने के लिए, रिवाइंड करके पता करते हैं आज का दिन क्यों खास था हिस्ट्री में। बैक इन 1608 कैप्टन जॉन स्मिथ बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ द जेम्सटाउन कॉलोनी इन वर्जीनिया। 1813 में कमांडर ओलिवर हजार्ड पेरी बीट द ब्रिटिश एट द बैटल ऑफ लेक ईरी। 1846 में एलायस हो पेटेंटेड द लॉक स्टिच सोइंग मशीन। 1989 में हंगरी ओपन्ड इट्स बॉर्डर्स हेल्पिंग टेयर डाउन द आयरन कर्टन in Europe, and 2008 may scientists turned on the Large Hadron Collider in Switzerland, a massive machine built to recreate the Big Bang. And now hit me up on WhatsApp, 9033 Mirchi is my number, 9033647244, and slide into my DMs on Instagram and X. Mera handle name hai Mirchi Pris, that is MIRCHIPRIS. Right now stay tuned and stay hot.

ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: ओ यार मिर्जापुर आ गई। यानी 2018 में जिन लोगों ने इस सीरियल बा देखल बे ना, इन लोगों को तो बिंदास्त में एक बार थिएटर में जाकर अपने अपनी कालीन अब चद्दर बिछा कर कालीन भैया की एंटरटेनमेंट देखना बनता है। सारे जो कलाकार है वो धमाल करते हैं। इनफैक्ट जीतूराज तो कहेगा कि जितने लोगों को मिर्जापुर पसंद आई थी उन लोगों को तो 100% पसंद आएगी, पर जिन लोगों ने मिर्जापुर सीरीज नहीं देखी उन लोगों को भी एक बार बिंदास देख लेनी चाहिए। बहुत धमाल है, बहुत सारी गाली गलौच है, बहुत सारी गुंडागर्दी है, बहुत सारा खून रेजी है, बट दैट इज व्हाट मिर्जापुर इज ऑल अबाउट। बट जीतूराज को स्त्रियों का महत्व बड़ा पसंद आता है, एंड मिर्जापुर सीरीज में जो स्त्रियों को महत्व दिया था वो इस पहले हिस्से में, शायद ऐसे लगता है कि दूसरा हिस्सा भी आएगा मिर्जापुर द मूवी का, इस पहले हिस्से में स्त्रियों को महत्व नहीं दिया है। कोई कारण होगा पता नहीं है, बट बिंदास देखी जा सकती है। ई भौकाल एक बार एंटरटेनमेंट के लिए अपनी फैमिली के साथ देखना चाहिए या नहीं, एक ऑल त्योहार है। हम तोहका ना ही बोला है कि जाके थिएटर में अपनी फैमिली के साथ देखाओ, बट इंडिविजुअली अपने फ्रेंड्सवा के साथ बिंदास तंगड़ियां पसार के कुर्सियों पर बैठकर देख लो हैं। ई का भौकाल मचाया मिर्जापुर द मूवी ने। एंड हां, भूलना मत हमारे रवि किशन भैया जब जब स्क्रीन पर आते ना भैया, अमा पनवा चटाई के जव धमाल करे। कभी कभार तो ऐसे लगाए कि ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, रवि किशन बाबू कि हमार कालीन भैया पंकज त्रिपाठी। वो फुल एंटरटेनमेंट है यार। 3:30 मिर्ची है टीम मिर्ची की तरफ से, देखा और अपनी कितनी मिर्चियां हैं वो हमका बताओ इंस्टाग्राम पर आए @मिर्ची जीतूराज। समझे कि नहीं समझे, सही है।
0: साथ जीतूराज Only on Mirchi, it's hot.

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: हेलो, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रही हूँ मिर्ची मॉर्निंग्स। और अब अम्ब्रेला लेकर जाना है कि नहीं जाना है ये पता करने का टाइम आ चुका है। इन वेदर अपडेट, राइट नाउ वी आर सिटिंग एट 71 डिग्रीज फारेनहाइट एंड इट्स मोस्टली क्लाउडी, लेकिन ऑनेस्टली इट्स फीलिंग अ लिटिल बिट लाइक 73 डिग्रीज फारेनहाइट। आज का टेम्परेचर रेंज इज स्विंगिंग बिटवीन 70 एंड 86 डिग्रीज फारेनहाइट, बट द फील्स लाइक टेम्परेचर इज हिटिंग अप टू 87 डिग्रीज फारेनहाइट। एंड हियर इज द प्लॉट ट्विस्ट, वी हैव गॉट 2 मिलीमीटर्स का रेन स्नीकिंग इन अर्ली मॉर्निंग। तो अगर तुम सुबह सुबह जाने वाले हो बाहर किसी काम से, कुछ एरेंड्स रन करने या अपने ऑफिस कम्यूट के लिए, तो यू माइट सी दैट रेन, बट डोंट यू वरी, बाय 3 PM इट्स ब्रेकिंग इनटू पार्टली क्लाउडी स्काइज। और अगर तुम बाहर निकल रहे हो तो लेयर के प्लेयर बनकर ही जाना, साथ में अपना SPF 50++++ लगाना और ढेर सारा पानी पीना। And let me quickly excite you for the next hour because I'm going to give away free tickets to the biggest Bollywood live concert hitting the East Coast. Naam nahi batane wali hu, lekin hint ke liye bol sakti hu ki Deewana Dil Kal Ho Na Ho is tarah ke kuch gaane wane gaaye unhone. And if you're excited, jaldi se note karo mera Insta ID. Mirchi Pris is my handle name, MIRCHIPRIS. WhatsApp ka number bhi note karo, 9033 Mirchi is my number, 9033.

0: out of 10.
1: क्यों नहीं चाहिए? चल
0: ओके देन. भरे कलब में रह जाएगी बिल्लो, फिर कल ही तू कौन संभालेगा तुझको जब हो जाएगी टल.

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला ओनली ऑन रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क इट्स हॉट
2: Let's go crazy.

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में। दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स एंड नाउ इट्स टाइम फॉर
2: मिर्ची आवर का थ्री।
1: सबसे पहले एप्पल जस्ट ड्रॉप्ड इट्स ब्रांड न्यू $2,000 फोल्डेबल फोन कॉल्ड द आईफोन डुओ। लेकिन बिफोर Apple could even celebrate, Samsung posted online saying, "Let us know when you're done reheating our leftovers." Ouch. The tech world is giving full Saas Bahu drama these days. And number two, per speaking of phones, the viral 80s AI retro photo trend. Reports warn that when you upload your selfie, tech companies get to keep a copy of your face for up to 30 days to train AI. And lastly, on the sports front, India's junior women's hockey team completely dominated Pakistan 19-0 in the Asia Cup quarterfinals. Pooja Malik hit a hat-trick, absolute Shaini energy on the field. And that's it for Mirchi, Hour Ka 3, Mehu Prasad. तुम्हारे साथ में। टेल मी ऑन व्हाट्सएप 9033 मिर्ची इज माय नंबर, दैट्स 9033647244। व्हाट आर योर व्यूज अबाउट द अपडेट्स एंड आल्सो इंस्टाग्राम और एक्स पर मुझे डीएम कर सकते हो। मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम, दैट इज MIRCHIPRIS। कमिंग अप लेटर इज अ कॉन्टेस्ट फॉर यू एंड राइट नाउ वी आर हेडिंग टू मिर्ची दार बैंगर्स। मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: Milci. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La virtua la burga.
1: Milci, burga.
2: हेलो,
3: दिमाग खराब कर रखा है। रॉयल स्टूडियो से बोल रहे हैं भाई?
2: हाँ जी
3: यार, कमाल कर दिया आपने, जो फोटो खींचे थे मेरे बेटे की शादी के, सारी एल्बम आ गई है। क्या फोटो खींचे यार, दिमाग खराब कर दिया।
2: क्यों सर जी, क्या हो गया फोटो में?
3: अरे फोटो आकर देख यार, यहाँ पे क्या एल्बम बना रखी है, सबके फोटो अजीब से आए यार, सारे फोटो यार बकवास कर दिया आपने, मेरा दिमाग खराब।
2: फोटो बहुत अच्छा है। क्या
3: फोटो? बहुत अच्छा है, सतीश चंद का एक बटन है, उसकी शादी के फोटो बिखा दिए यार, सारे दिमाग।
2: सतीश जी बहुत अच्छे फोटो खींचे बहुत।
3: अरे मैं झूठ बोल रहा हूँ, मतलब मैं पागल हूँ? आपने एल्बम देखी है? एल्बम देखी है?
2: मैंने देखी खुद अपने हाथ से। सर जी हमने फिश लाइन लगाया उसके ऊपर, बेहतरीन। आप देखिए एक से एक बेहतरीन क्लोजअप है उसके अंदर।
3: अरे क्लोजअप को मारा गोली यार, क्लोजअप तो देखे में शर्म आ रही है हमें।
2: अरे शर्म की क्या बात है सर,
3: जितने फोटो हैं सबके कपड़े गायब है यार, तूने किया क्या ये?
2: किसी का
3: कपड़े गायब है, एक आदमी का मैं खड़ा हूँ, अजीब सा लग रहा हूँ यार। मैं
2: लगाया नहीं
3: क्या, कौन सा लेंस लगाया? एक तो बता, ये बदमाशी करते हो, कपड़े
2: गायब नहीं।
3: कल को
2: फोटो
3: खींचे? अरे लेंस ऐसे
2: पूरे कपड़े
3: कौन से? मैंने शेरवानी पहन रखी थी, शेरवानी गायब है, अंदर से सब दिख रहा है यार। शेरवानी तुमने गायब करी है यार मेरी?
2: नहीं सर, शेरवानी गायब नहीं है, बहुत अच्छे फोटो है।
3: अरे मैं केस कर सकता हूँ वहाँ पे?
2: नहीं साहब, देखिए केस वेस की बात मत कीजिए, इसने हमारा नाम है इलाके में।
3: अरे हमारा भी कुछ था, अब कुछ नहीं बचा जब से फोटो देखे हैं।
2: सर क्या बात, चुन के बनाया है?
3: कोई फोटो चुन के नहीं बनाया, मेरा बेटा खड़ा है, कपड़े नहीं है बहू उसका, चलो छोड़ो मैंने देखा भी नहीं है, वो खड़ा है, जितने बराती आया है सबके कपड़े गायब है, ऐसा लग रहा है यार, पता नहीं अफ्रीका में शादी हो रही है यार।
2: अरे नहीं सर, कहीं गड़बड़ लग रही है मुझे,
3: गड़बड़
2: देखना चाहूंगा एक बार फिर आपकी एल्बम, ऐसी कोई बात नहीं
3: यार, इतना बुरा लग रहा है, हर आदमी के प्लेट में, हर आदमी के हाथ में प्लेट है, कपड़े है भी।
2: दिखाइए
3: आपका कपड़े कैसे, आप उसको सही करिए यार,
2: कोई सिस्टम ही नहीं है कपड़े गायब हो जाए,
3: ऐसा सिस्टम है एक जगह होता है,
2: कहाँ होता है बताइए।
4: रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम पर आप मुर्गा बन रहे हैं रेडियो मिर्ची।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: All right, cancel all your Friday nights ka plan right now. Because if you don't listen to this, then you are going to miss out big time. Main hoon Priscilla, tumhare saath mein. This is Mirchi Mornings and I am about to make your week. Kal, yani ki Friday 11th September ko, the legendary voice behind Kal Ho Na Ho and Suraj Hua Madhyam, the one and the only Sonu Nigam, is taking the stage live at the Hard Rock Live at Aegis Arena in Atlantic City. It's not just a concert buzz. It's pure emotion, romance and high energy nostalgia. अब तुम्हें अगर इसके tickets जीतने हैं, वो भी couple tickets, तो तुम्हें सिर्फ एक simple से सवाल का simple सा जवाब लिखकर भेजना है. इनमें से कौन सी फिल्म फीचर सोनू निगम्स आइकॉनिक ट्रैक कॉल्ड कल हो ना हो. तुम्हारे ऑप्शन है ए दिल चाहता है, ऑप्शन बी कल हो ना हो एंड ऑप्शन सी कभी खुशी कभी गम. टेक्स्ट करने के लिए टाइप करो सोनू निगम, उसके बाद अपना पूरा नाम लिखो एंड देन योर करेक्ट आंसर ए बी एंड सी, और उसे भेज दो व्हाट्सएप पर 9033 मिर्ची इज माय नंबर 9033647244 या फिर स्लाइड इनटू माय इंस्टाग्राम डीएम्स एट मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS. और टिकट्स जीतने के बाद उसे पिकअप करना होगा एट द हार्ड रॉक अरीना बॉक्स ऑफिस इन अटलांटिक सिटी टुमारो बिफोर द शो. जल्दी जल्दी एंट्रीज भेजो और टिकट्स जीत जाओ. और अभी आने वाले हैं कुछ हॉट हॉट मिर्चीदार बैंगर्स ओनली फॉर यू. मिर्ची मॉर्निंग्स पर दिस इज प्रिसिला विद यू. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

ऑलराइट, स्टॉप स्क्रॉलिंग राइट नाउ। अगर अभी तक तुमने कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं किया तो तुम कैसे जीतोगे सोनू निगम के कॉन्सर्ट के कपल पासेस। मैं हूँ प्रिसला, तुम्हारे साथ में, दिस इज मिलिट्री मॉर्निंग्स। एंड दिस फ्राइडे 11th ऑफ सितंबर को द किंग ऑफ बॉलीवुड रोमांस सोनू निगम का कॉन्सर्ट हो रहा है, ब्रॉट यू बाय साई USA Inc. सोनू निगम इज परफॉर्मिंग लाइव एट द हार्ड रॉक लाइव एट एटिस अरीना इन अटलांटिक सिटी टुमारो। और इसके कपल टिकट्स मैं दे रही हूँ अभी की अभी तुम्हें मिर्ची मॉर्निंग्स पर। तुम्हें सिंपल सा एक काम करना है, तुम्हें फटाफट से मुझे बताना है कि इनमें से कौन सी फिल्म में सोनू निगम का आइकॉनिक ट्रैक कल होना हो फीचर हुआ है। ऑप्शन ए है दिल चाहता है, ऑप्शन बी है कल होना हो, एंड ऑप्शन सी है कभी खुशी कभी गम। कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए टेक्स्ट करो अभी के अभी सोनू निगम एंड देन उसके बाद अपना पूरा नाम एंड देन योर आंसर ए बी और सी, एंड उसे व्हाट्सएप पर भेजो मुझे अभी के अभी 9033 मिर्ची पर, that's 9033647244, या फिर easy peasy DM करो मुझे Instagram पर right away, Mirchi Pris is my handle name, that is MIRCHIPRIS, and winners को मिलने वाले हैं couple tickets for the concert। सही जवाब तो तुम्हें पता ही होगा, विन करने के लिए जल्दी से जल्दी अपने answers भेजो और अभी सुनते रहो Mirchi, because आने वाले हैं मिर्चीदार bangers। मेरा नाम है Priscilla, सुन रहे हो Mirchi Morning, stay tuned and stay hot।

0: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: ओ यार मिर्जापुर आ गई। यानी 2018 में जिन लोगों ने इस सीरियल बात देखल बे ना, इन लोगों को तो बिंदास्त में एक बार थिएटर में जाकर अपने अपनी कालीन अब चद्दर बिछा कर कालीन भैया के एंटरटेनमेंट देखना बनता है। सारे जो कलाकार है वो धमाल करते हैं। इनफैक्ट जीतूराज तो कहेगा कि जितने लोगों को मिर्जापुर पसंद आई थी उन लोगों को तो 100% पसंद आएगी, पर जिन लोगों ने मिर्जापुर ये सीरीज नहीं देखी उन लोगों को भी एक बार बिंदास देख लेनी चाहिए। बहुत धमाल है, बहुत सारी गाली गलौच है, बहुत सारी गुंडागर्दी है, बहुत सारा खून रेजी है, बट दैट इज व्हाट मिर्जापुर इज ऑल अबाउट। बट जीतूराज को स्त्रियों का महत्व बड़ा पसंद आता है एंड मिर्जापुर सीरीज में जो स्त्रियों को महत्व दिया था वो इस पहले हिस्से में, शायद ऐसे लगता है कि दूसरा हिस्सा भी आएगा मिर्जापुर द मूवी का, इस पहले हिस्से में स्त्रियों को महत्व नहीं दिया है। कोई कारण होगा पता नहीं है, बट बिंदास देखी जा सकती है। ये भौकाल एक बार एंटरटेनमेंट के लिए अपनी फैमिली के साथ देखना चाहिए या नहीं, एक कॉल त्योहार है। हम तोहका ना ही बोला है कि जाके थिएटर में अपनी फैमिली के साथ देखाओ, बट इंडिविजुअली अपने फ्रेंड्सवा के साथ बिंदास तंगड़ियां पसार के कुर्सियों पर बैठकर देख लो। हैं ये का भौकाल मचाए मिर्जापुर द मूवी ने। एंड हां भूलना मत, हमारे रवि किशन भैया जब जब स्क्रीन पर आते ना भैया, अमा पनवा चटाई के जव धमाल करे, कभी कभार तो ऐसे लगाए कि ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, रवि किशन बाबू कि हमार कालीन भैया पंकज त्रिपाठी। वो फुल एंटरटेनमेंट है यार। 3:30 मिर्ची है टीम मिर्ची की तरफ से, देखा और अपनी कितनी मिर्चियां हैं वो हमका बताओ इंस्टाग्राम पर आए @मिर्ची जीतूराज। समझे कि नहीं समझे, सही है
0: साथ जीतूराज। Only on Mirchi, it's hot.

0: सुनो जी, यानी कि गोल्ड रेट अपडेट ओनली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। मेरा नाम है प्रिसला।
1: राज रोज विशेस एवरीवन हैप्पी एंड हेल्दी मॉर्निंग। गोल्ड ट्रेडिंग एट $4,350 $4,350 पर ट्राउंस के साथ आज सुबह गोल्ड के प्राइसेस डाउनवर्ड ट्रेंड पर हैं। डेफिनेटली एंट्री पॉइंट बनता है। जिन्होंने गोल्ड में इन्वेस्ट करना है $4,350 रेफरेंस पॉइंट मानते हुए, चाहे 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी हो चाहे गोल्ड बार्स खरीदने हो, राज ज्वेल्स डेस्टिनेशन स्टोर। आइए गोल्ड में इन्वेस्ट करें राज ज्वेल्स की टीम के साथ। थैंक यू। हैप्पी मॉर्निंग टू ऑल।
0: हिट मी अप ऑन व्हाट्सएप 9033 मिर्ची इज माय नंबर, दैट्स 9033647244, एंड इंस्टाग्राम और एक्स पर मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। राइट नाउ स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला ओनली ऑन रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Good morning, Mirchi Mornings. पर मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. And it's time for
2: Mirchi Hour Got 3.
1: सबसे पहले बिजनेस टाइकून हर्ष गोयल का शेयर्ड ब्रेकडाउन ऑफ वर्ल्ड लीडर्स सैलरीज एंड इट टर्न्स आउट सिंगापुर प्राइम मिनिस्टर लॉरेंस वॉन्ग टॉप्स द लिस्ट मेकिंग अ वॉपिंग 26 करोड़ रुपीज एनुअली. मीनवाइल इंडियन पीएम नरेंद्र मोदी अर्न्स अराउंड 20 लाख रुपीज अ ईयर एज गोयल का सेड क्वाइट अ रेंज फॉर एसेंशियली द सेम जॉब डिस्क्रिप्शन. नंबर टू पर इंडिया ओरिजिन पावर कपल अनुराधा एंड विकास सिन्हा डोनेटेड अ मैसिव $20 million टू द यूनिवर्सिटी of North Texas to set up a brand new AI college. Talk about giving back in a big way. And lastly, on the sports front, reigning world champion Sheetal Devi just won her very first individual World Archery Para Series gold medal in the nail-biting shoot of tiebreaker in Ahmedabad. At just 19 years old, she's proving that true champions hit the bullseye no matter what. And that's it for Mirchi Hour Cut 3 with me, Priscilla. कनेक्ट करो मुझसे इंस्टा और एक्स पर. मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस एंड व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची. दैट्स 9033647244. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: Milchi. Iskabana, puskabana, sakabana. Rambala. Murga, murga. La virpa, la murga. Milchi, murga.
1: हेलो
2: हेलो मुकेश जी.
1: कौन
2: मुकेश जी? मैं ये प्रताप बोल रहा हूँ, राणा मोटर से. आपने जो 1000 दी थी ना, उसका वो जो कार्बोरेटर साफ होना था, वो सर हो नहीं पाया एक्चुअली. थोड़ा
1: नहीं हो पाया भाई.
2: हाँ, वो नहीं हो पाया सर.
1: हाँ, नहीं हो पाया
2: सर, वो थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी. अच्छा सर, आप बता रहे थे ना पीछे बोनेट से आवाज आ रही है आपकी गाड़ी की. सर वो भी हो नहीं पाई है, वो उसमें थोड़ा हो नहीं पाया हमसे अभी.
1: नहीं, क्या नहीं पाया तुम्हारे यार, रोज गए तुम्हें, जब भी गाड़ी तो नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया, क्या मजाक ही क्या है ये?
2: नहीं मुकेश जी, मैं समझ रहा हूँ वो एक
1: क्या समझ रहे हो भाई.
2: नहीं नहीं, आप सही कह रहे हैं. अच्छा मुकेश जी, आपने एक बताया था ना ब्रेक ऑयल डलना है, ब्रेक काम नहीं कर रहे. सर वो ऑयल डल नहीं पाया थोड़ा.
1: अरे तो हो क्या पाया है तुमसे
2: सर, वो
1: ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया. मुझे फोन करना है, मुझे फोन इसलिए कराया कि ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया.
2: नहीं सर,
1: आपको तो फोन इसलिए करना था कि भाई ये जो काम दिया गया आपको वो कर दे.
2: नहीं सर, कुछ हो नहीं पाया.
1: क्यों नहीं हो पाया
2: सर? वो रात गाड़ी चोरी हो गई आपकी.
1: है
2: सर, रात गाड़ी चोरी हो गई आपकी.
1: अरे तेरा दिमाग खराब है क्या?
2: अरे सर मैं वही आपसे कह रहा हूँ, मतलब हम
1: क्या करा दूँ
2: सर, मतलब आप ये आप आके FIR लिखवा देंगे अपनी गाड़ी की?
1: कैसी FIR? दिमाग खराब हो गया तेरा, पागल तो नहीं है तू?
2: अरे सर जितने की गाड़ी थी इतना दे देंगे, आप गुस्सा तो मत करिए कम से कम.
1: गुस्सा ना करूं, नई गाड़ी थी हमारी.
2: नहीं सर, आप आपकी नई गाड़ी थी तो सर हमारा भी तो उसमें कुछ गया है, हमने भी तो ग्रीस व्रीस लगाया.
1: उसमें
2: ग्रीस
1: तुम्हारा
2: ग्रीस लगाया, उसमें हमने पेट्रोल डाला है.
1: ग्रीस कितने का? 5 रुपए का लगाया. आग लगा दूंगा मैं तुम्हारे शोरूम में, तुम्हारे वर्कशॉप में.
2: अच्छा
1: मुझे चाहिए अपनी वापस.
2: सर आप इतना गुस्सा ना करें,
1: जिम्मेदारी तुम्हारी है FIR वगैरह कराने की.
2: सर बिल्कुल आप गुस्सा ना करें. अच्छा सर, ऐसा चल सकता है जैसे आप गाड़ी ना लेके कॉम्पोजिट कर दें, हम आज शाम आपको मुर्गा खिला दें और मुकेश वो बन भी गया मुर्गा.
3: मुकेश मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, छोटा सा मजाक किया तुम्हारे साथ, मुर्गा बना दिया तुम्हारा.
1: तो जान निकाल दी हमारी.
3: मुकेश आपकी गाड़ी वही खड़ी है आपकी वर्कशॉप में, बस उसको धक्का लगाना है और आपको धक्का हम लगा देंगे. मेरे साथ जरा प्यार से कह दीजिए, गुस्सा खत्म करिए.
1: कुकड़ू कू
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स

0: ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
0: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची। इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: हे, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे हो मिर्ची मॉर्निंग्स। और मेरे पास आ चुका है राशि जोन पार्ट 2, यानी कि राशि फ्रॉम लीब्रा टू पाइसिस।
2: मिर्ची राशि जोन।
1: लीब्रा यानी कि तुला राशि, मेटिकुलस वर्क एंड स्ट्रक्चर्ड प्लान्स आर ब्रिंगिंग बिग प्रोफेशनल रिवॉर्ड्स टुडे। डबल चेक दोस स्प्रेडशीट्स। लकी कलर इज कोरल पिंक, लकी नंबर इज 18। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, स्टैंड योर ग्राउंड व्हेन इट कम्स टू योर मनी एंड सिक्योरिटी, एंड इनर ब्रेक थ्रू इज राइट अराउंड द कॉर्नर। लकी कलर इज डीप क्रिम्सन, लकी नंबर इज 5। सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि, एन अपबीट पॉजिटिव डे फॉर सोशल वाइब्स, टाइम टू कैच अप विद योर स्क्वाड after work। Lucky color is tangerine orange, lucky number is 21. Capricorn yani makar rashi, assess those long term goals and lean into practical strategy. Slow and steady wins the race dost. Lucky color is charcoal gray, lucky number is 8. Aquarius yani kumbh rashi, take a breather and reevaluate your routine. Stop trying to match everyone else's crazy speed. Lucky color is turquoise blue, lucky number is 33. And last but not the least, Pisces यानी कि मीन राशि, बैलेंस योर पार्टनरशिप्स एंड ट्रस्ट योर इंट्यूशन ड्यूरिंग दिस न्यू मून फेज। योर गट फीलिंग इज 100% राइट टुडे। लकी कलर इज लैवेंडर पर्पल, लकी नंबर इज 12। एंड दैट्स इट फॉर राशि जोन पार्ट 2। मैं हूं प्रिसिला तुम्हारे साथ में। ड्रॉप मी अ वॉइस नोट ऑन व्हाट्सएप एट 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम, दैट इज MIRCHIPRIS। एंड अभी मिर्ची दर बैंगर्स के टाइम है, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: ओ यार मिर्जापुर आ गई। यानी 2018 में जिन लोगों ने इस सीरियल बा देखल बे ना, इन लोगों को तो बिंदास्त में एक बार थिएटर में जाकर अपनी अपनी कालीन चद्दर बिछा कर कालीन भैया के एंटरटेनमेंट देखना बनता है। सारे जो कलाकार है वो धमाल करते हैं। इनफैक्ट जीतूराज तो कहेगा कि जितने लोगों को मिर्जापुर पसंद आई थी उन लोगों को तो 100% पसंद आएगी, वह जिन लोगों ने मिर्जापुर ये सीरीज नहीं देखी उन लोगों को भी एक बार बिंदास देख लेनी चाहिए। बहुत धमाल है, बहुत सारी गाली गलौच है, बहुत सारी गुंडागर्दी है, बहुत सारा खूनरेजी है, बट दैट इज व्हाट मिर्जापुर इज ऑल अबाउट। बट जीतूराज को स्त्रियों का महत्व बड़ा पसंद आता है, एंड मिर्जापुर सीरीज में जो स्त्रियों को महत्व दिया था वो इस पहले हिस्से में, शायद ऐसे लगता है कि दूसरा हिस्सा भी आएगा मिर्जापुर द मूवी का, इस पहले हिस्से में स्त्रियों को महत्व नहीं दिया है। कोई कारण होगा पता नहीं है, बट बिंदास देखी जा सकती है। ई भौकाल एक बार एंटरटेनमेंट के लिए अपनी फैमिली के साथ देखना चाहिए या नहीं, एक ऑल त्योहार है। हम तोहका ना ही बोला है कि जाके थिएटर में अपनी फैमिली के साथ देखाओ, बट इंडिविजुअली अपने फ्रेंड्सवा के साथ बिंदास तंगड़ियां पसार के कुर्सियों पर बैठकर देख लो। ई का भौकाल मचाया मिर्जापुर द मूवी ने। एंड हां, भूलना मत हमारे रवि किशन भैया जब जब स्क्रीन पर आते हैं ना भैया, अमा पनवा चटाई के जब धमाल करे, कभी कभार तो ऐसे लगाए कि ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, रवि किशन बाबू कि हमार कालीन भैया पंकज त्रिपाठी। वो फुल एंटरटेनमेंट है यार। 3.5 मिर्ची है टीम मिर्ची की तरफ से, देखा और अपनी कितनी मिर्चियां हैं वो हमका बताओ इंस्टाग्राम पर आए @मिर्ची जीतूराज। समझे कि नहीं समझे, सही है
0: साथ जीतूराज। Only on Mirchi, it's hot.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Hey there, my Mirchi family. This is officially a wrap on Mirchi Mornings today. Lekin, before I let you go conquer your day, I have huge news for all our aspiring medical stars. If you want to build a real career in the US, Ames Education College of Health Sciences is now issuing I-20s for eligible international students who clear the F1 visa requirements. We are talking hands-on Associate of Applied Science degree in hot fields like surgical, MRI, ultrasound, cardiovascular, anesthesia and neurodiagnostic technologies. Plus, तुम्हें साथ में मिलेगा अनपेड क्लिनिकल इंटर्नशिप इन टॉप मेडिकल सेंटर्स फॉर रियल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, मतलब कि फुल ऑन प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी मिलने वाली है साथ साथ में. सो हेड ओवर राइट नाउ टू aimseducation.edu टू गेट स्टार्टेड. स्टडी इन अमेरिका, ट्रेन इन हेल्थ केयर एंड टेक योर करियर फॉरवर्ड. एंड हे, डोंट फॉरगेट टू मीट मी ऑनलाइन. इंस्टाग्राम और एक्स पे मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS. एंड व्हाट्सएप का नंबर है 9033 Mirchi, that's 9033-647-2244. Until tomorrow, keep smiling, work hard, khao pio, aish karo, and remember, Mirchi sunte raho because it's hot. And that's a tata bye bye from Priscilla.

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

मुझे लगता है हर किसी के अंदर एक बावर्ची होता है। पुरानी जीन्स पर हाय, मैं हूँ श्रेया। और सबने ना कभी कुछ ना कुछ तो कुक किया होता है, फिर चाहे वो हॉस्टल में तुम्हारे 2 मिनट नूडल्स हो या फिर चाय। तो हम सब कहीं ना कहीं तो बावर्ची होते ही हैं। इसी टाइटल को रखकर ऋषिकेश दा ने उस जमाने की एक बड़ी ही खूबसूरत फिल्म बनाई विद राजेश खन्ना एस बावर्ची एंड जया बच्चन जी। इस फिल्म में बहुत सारे कैरेक्टर्स थे, एके हंगल साहब, असरानी साहब, दुर्गा खोटे। तो आज ना इसी मूवी की कहानियां बताऊंगी जो कि मैं कुक नहीं करके आई हूँ, वो सच में ये खट्टी मीठी किस्से एक्चुअली में ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ दिस फिल्म हुए थे। शुरुआत करेंगे फिल्म की कास्ट और क्रेडिट से। वापस आओ श्रेया के साथ ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: हेलो,
1: दिमाग खराब कर रखा है। रॉयल स्टूडियो से बोल रहे हैं भाई?
0: हाँ जी।
1: यार कमाल कर दिया आपने, जो फोटो खींचे थे मेरे बेटे की शादी के, सारी एल्बम आ गई है। क्या फोटो खींचे यार, दिमाग खराब कर दिया।
0: क्यों सर जी, क्या हो गया फोटो में?
1: अरे फोटो आकर देख यार, यहाँ पे क्या एल्बम बना रखी है, सबके फोटो अजीब से आए यार, सारे फोटो यार बकवास कर दिया आपने, मेरा दिमाग खराब।
0: फोटो बहुत अच्छा है। क्या
1: फोटो बहुत अच्छा है? सतीश चंद का एक बटन है, उसकी शादी के फोटो बिखा दिए यार, सारे दिमाग।
0: सतीश जी बहुत अच्छे फोटो बहुत।
1: अरे मैं झूठ बोल रहा हूँ, मतलब मैं पागल हूँ? आपने एल्बम देखी है? एल्बम देखी है?
0: मैंने देखी खुद अपने हाथ से एल्बम। सर जी हमने फिश लाइन्स लगाया उसके ऊपर बेहतरीन, आप देखिए एक से बेहतरीन क्लोजअप है उसके अंदर।
1: अरे क्लोजअप को मारा गोली यार, क्लोजअप तो देखे में शर्म आ रही है हमें।
0: अरे शर्म की क्या बात है सर,
1: जितने फोटो हैं सबके कपड़े गायब है यार, तूने किया क्या ये?
0: किसी का
1: कपड़े गायब है, एक आदमी का मैं खड़ा हूँ, अजीब सा लग रहा हूँ यार। मैं
0: लगाया नहीं
1: क्या, कौन सा लेंस लगाया? एक तो बता, ये बदमाशी करते हो, कपड़े
0: गाय
1: नहीं दीदी, मैं कल को
0: फोटो खींचे।
1: अरे लेंस ऐसे पूरे कपड़े कौन से, मैंने शेरवानी पहना की थी, शेरवानी गायब है अंदर से सब दिख रहा है यार। शेरवानी तुमने गायब करी है यार मेरी?
0: सर शेरवानी गायब नहीं है, बहुत अच्छे फोटो है।
1: अरे मैं केस कर सकता हूँ वहाँ पे?
0: नहीं साहब देखिए, केस वेस की बात मत कीजिए, इसने हमारा नाम है इलाके में।
1: अरे हमारा भी कुछ था, अब कुछ नहीं बचा जब से फोटो देखे हैं।
0: सर क्या बात, सुन के बनाया है?
1: कोई फोटो चुन के नहीं बनाया, मेरा बेटा खड़ा है, कपड़े नहीं है बहू उसका, चलो छोड़ो मैंने देखा भी नहीं है, वो खड़ा है, जितने बराती आया है सबके कपड़े गायब है, ऐसा लग रहा है यार पता नहीं अफ्रीका में शादी हो रही है यार।
0: अरे नहीं सर, कहीं गड़बड़ लग रही है मुझे,
1: गड़बड़
0: देखना चाहूंगा एक बार फिर आपकी एल्बम, ऐसी कोई बात नहीं
1: यार, इतना बुरा लग रहा है, हर आदमी के प्लेट में, हर आदमी के हाथ में प्लेट है, कपड़े है भी
0: दिखाइए
1: आपका कपड़े कैसे, आप उसको सही करिए यार,
0: कोई सिस्टम ही नहीं है कपड़े गायब हो जाए,
1: ऐसा सिस्टम है एक जगह होता है,
0: कहाँ होता है बताइए।
2: रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम पर आप मुर्गा बन रहे हैं रेडियो मिर्ची।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स, श्रेया के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।

इससे पहले तक किसी भी फिल्म में ऐसा नहीं हुआ था। पुरानी जीन्स पर हाय, मैं हूँ श्रेया और आज ना ऋषिकेश दा, राजेश खन्ना, जया भादुड़ी जी की फिल्म बावर्ची की बात हो रही है। आपको पता है इससे पहले किसी भी इंडियन फिल्म में ऐसा नहीं हुआ था कि कास्ट और क्रेडिट को ना दिखाया जाए। हर फिल्म में जैसे क्रेडिट दिए जाते हैं ना, ये फिल्म पहली ऐसी फिल्म थी जिसमें क्रेडिट्स फिल्म के शुरुआत में नहीं दिए गए। फिर क्या किया गया, अगर आपने ये फिल्म देखी है तो पता होगा, और अगर नहीं देखी है या फिर बहुत पहले देखी थी तो मैं याद दिलाऊंगी। कम राइट बैक विद मी श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: only on Radio Mercy New York. It's hot.
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

ये यूनिक आइडिया फिल्म के डायरेक्टर ऋषिकेश दा का था। पुरानी जींस पर हाय, मैं हूँ श्रेया एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द लेजेंडरी फिल्म बावर्ची, जो कि ऋषिकेश मुखर्जी ने बनाई थी, राजेश खन्ना थे, जया बच्चन थी और भी बहुत सारे एक्टर्स थे। अब इस फिल्म में पहली बार ऐसा हुआ कि क्रेडिट्स नहीं दिए गए, यानी देयर वर नो टाइटल कार्ड्स। तो फिर क्या किया गया था, इसमें अमिताभ बच्चन जी के वॉइस ओवर ने हर एक कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया था और ये यूनिक आइडिया पहली बार किसी फिल्म में देखा गया था। अच्छा, अमिताभ बच्चन उस टाइम पे बहुत बिजी थे, लेकिन अपने बिजी स्केड्यूल में से क्यों उन्होंने टाइम निकाला, ये अभी बताऊंगी श्रेया के साथ। वापस आओ ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। साथ जीतू राज, only on मिर्ची, it's hot।
1: ओ यार मिर्जापुर आ गई। यानी 2018 में जिन लोगों ने इस सीरियल बाद देखल बे ना, इन लोगों को तो बिंदास्त में एक बार थिएटर में जाकर अपने अपनी कालीन चद्दर बिछा कर कालीन भैया के एंटरटेनमेंट देखना बनता है। सारे जो कलाकार है वो धमाल करते हैं। इनफैक्ट जीतुराज तो कहेगा कि जितने लोगों को मिर्जापुर पसंद आई थी उन लोगों को तो 100% पसंद आएगी, पर जिन लोगों ने मिर्जापुर सीरीज नहीं देखी उन लोगों को भी एक बार बिंदास देख लेनी चाहिए। बहुत धमाल है, बहुत सारी गाली गलौच है, बहुत सारी गुंडागर्दी है, बहुत सारा खून रेजी है, बट दैट इज व्हाट मिर्जापुर इज ऑल अबाउट। बट जीतुराज को स्त्रियों का महत्व बड़ा पसंद आता है, एंड मिर्जापुर सीरीज में जो स्त्रियों को महत्व दिया था वो इस पहले हिस्से में, शायद ऐसे लगता है कि दूसरा हिस्सा भी आएगा मिर्जापुर द मूवी का, इस पहले हिस्से में स्त्रियों को महत्व नहीं दिया है। कोई कारण होगा पता नहीं है, बट बिंदास देखी जा सकती है। ई भौकाल एक बार एंटरटेनमेंट के लिए अपनी फैमिली के साथ देखना चाहिए या नहीं, एक ऑल त्योहार है। हम तोहका ना ही बोला है कि जाके थिएटर में अपनी फैमिली के साथ देखाओ, बट इंडिविजुअली अपने फ्रेंड्सवा के साथ बिंदास तंगड़ियां पसार के कुर्सियों पर बैठकर देख लो हैं, ये का भौकाल मचाया मिर्जापुर द मूवी ने। एंड हां, भूलना मत हमारे रवि किशन भैया जब जब स्क्रीन पर आते ना भैया, अमा पनवा चटाई के जव धमाल करे, कभी कभार तो ऐसे लगाए कि ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, रवि किशन बाबू कि हमार कालीन भैया पंकज त्रिपाठी। वो फुल एंटरटेनमेंट है यार। 3.5 मिर्ची है टीम मिर्ची की तरफ से, देखा और अपनी कितनी मिर्चियां हैं वो हमका बताओ इंस्टाग्राम पर आए @मिर्ची जीतुराज। समझे कि नहीं समझे, सही है।
0: साथ जीतुराज, only on मिर्ची, it's hot।
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

टाइटल्स के साथ एक्सपेरिमेंट ये पहले कभी किसी ने नहीं सोचा था। इट वॉज अ फिनोमिनल ऋषिकेश मुखर्जी जिन्होंने ये सोचा भी और अपनी फिल्म बावर्ची में किया भी। पुरानी जीन्स पर हाय, मेरा नाम है श्रेया और मैं बात कर रही थी द लेजेंडरी फिल्म बावर्ची की, ऋषिकेश दा की डायरेक्टेड, जिसमें बावर्ची बने थे राजेश खन्ना, उनकी लव इंटरेस्ट बनी थी जया बच्चन जी। और इस फिल्म में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि कास्ट एंड क्रू के नाम नहीं दिए गए थे, बल्कि एक बहुत यूनिक आइडिया सोचा ऋषिकेश दा ने, एंड दैट वाज कि हर एक कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करने के लिए अमिताभ बच्चन का वॉइस ओवर यूज किया गया। अब अमिताभ बच्चन उस टाइम पे बहुत बिजी थे, तो ऋषिकेश दा उनसे ये फेवर मांगने में थोड़ा कतरा रहे थे। उन्होंने जया जी से वाइल शूटिंग द फिल्म ऐसे ही मुस्कुरा के बात बात में कह दिया कि काश अमित ये काम कर पाता। ये बात जया जी ने घर जा करके अमित जी को डिनर पे बताई। अमिताभ बच्चन और जया जी के लिए ऋषिकेश दा फादरली फिगर थे, हमेशा से एक बड़े भाई थे। जैसे ही अमित जी ने ये बात सुनी, वो ऋषिकेश दा के घर पहुंच गए और उनसे नाराज होके कहा, दादा ये बात आप मुझसे आके नहीं कह सकते थे, आपको जया की जरूरत पड़ी इसके लिए। ऋषिकेश दा ने मुस्कुरा दिया और उसके बाद तो वी ऑल नो व्हाट हैपेंड। पुरानी जीन्स पर ऐसे बहुत सारे किस्से हैं मेरे पास, तो बस वापस आओ श्रेया के साथ।

0: हाँ
1: या चुप रहूं
0: ना
1: दिल में मेरे आज क्या है
0: क्या है

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ना ये दोनों डेटिंग फेज में थे। पुरानी जीन्स पर उस जमाने के गाने, उस जमाने की बातें, इस जमाने की श्रेया के साथ। अच्छा, तो मैं बात कर रही थी बावर्ची की थोड़ी देर पहले। तो इस फिल्म के दौरान अमिताभ बच्चन और जया जी ना एक दूसरे से मिलजुल रहे थे, एक दूसरे को समझ रहे थे, वो प्यार में धीरे धीरे पड़ रहे थे। तो क्या होता था कि अमित जी जया जी को मिलने फिल्म के सेट पे जाते थे। अब सेट पे तो उनको उस टाइम के सुपरस्टार काका यानी राजेश खन्ना भी मिलते थे, जिन्हें अमिताभ बच्चन थोड़े अखरते थे। अच्छा, काका उस टाइम पे अपने स्टारडम के खुमार में भी थे। अमिताभ बच्चन बिजी जरूर थे, उनके पास फिल्में बहुत थीं, लेकिन जनरली उनकी फिल्में इतनी खास चल नहीं रही थी। ऐसे में काका उनको ताने मारा करते थे, रिमार्क्स पास किया करते थे। क्या अमिताभ बच्चन को गुस्सा आया या फिर उनकी तब की गर्लफ्रेंड जया जी को, बताऊंगी थोड़े से गानों के बाद। मुझे बहुत मजा आता है आपको ऐसे सस्पेंस में छोड़ के जाने में, क्योंकि फिर मुझे यकीन होता है कि आप वापस यहाँ होंगे। सो कम राइट बैक पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ श्रेया।

0: Milchi. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabbana. Murga, murga. Na vidva la murga. Milchi, murga.
1: हेलो
2: हेलो मुकेश जी.
1: कौन
2: मुकेश जी? मैं ये प्रताप बोल रहा हूँ, राणा मोटर से. आपने जो 1000 दी थी ना, उसका वो जो कार्बोरेटर साफ होना था, वो सर हो नहीं पाया एक्चुअली. थोड़ा
1: नहीं हो पाया भाई.
2: हाँ, वो नहीं हो पाया सर.
1: हाँ जी, नहीं पाया
2: सर, वो थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी. अच्छा सर, आप बता रहे थे ना पीछे बोनेट से आवाज आ रही है आपकी गाड़ी की. सर वो भी हो नहीं पाई है, वो उसमें थोड़ा हो नहीं पाया हमसे अभी.
1: नहीं, क्या नहीं पाया तुम्हारे यार, रोज गए तुम्हारे, जब भी गाड़ी तो नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया, क्या मजाक ही क्या है ये?
2: नहीं मुकेश जी, मैं समझ रहा हूँ वो
1: एक का... क्या समझ रहे हो भाई?
2: नहीं नहीं, आप सही कह रहे हैं. अच्छा मुकेश जी, आपने एक बताया था ना ब्रेक ऑयल डलना है, ब्रेक काम नहीं कर रहे. सर वो ऑयल डल नहीं पाया थोड़ा.
1: अरे तो हो क्या पाया है तुमसे
2: सर? वो
1: ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया. मुझे फोन करना है, मुझे फोन इसलिए कराया कि ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया.
2: नहीं सर,
1: आपको तो फोन इसलिए करना था कि भाई ये जो काम दिया गया आपको वो कर दे.
2: नहीं सर, कुछ हो नहीं पाया.
1: क्यों नहीं हो पाया
2: सर? वो रात गाड़ी चोरी हो गई आपकी.
1: है
2: सर, रात गाड़ी चोरी हो गई आपकी.
1: अरे तेरा दिमाग खराब है क्या?
2: अरे सर मैं वही आपसे कह रहा हूँ, मतलब हम
1: क्या करा दूँ
2: सर? मतलब आप ये आप आके FIR लिखवा देंगे अपनी गाड़ी की?
1: कैसी FIR? दिमाग खराब हो गया तेरा, पागल तो नहीं है तू?
2: अरे सर जितने की गाड़ी थी इतना दे देंगे आप? गुस्सा तो मत करिए कम से कम.
1: गुस्से ना करूँ, नई गाड़ी थी हमारी.
2: नहीं सर, आपकी नई गाड़ी थी तो सर हमारे भी तो उसमें कुछ गया है. हमने भी तो ग्रीस लगाया.
1: उसमें
2: ग्रीस लगाया, उसमें हमने पेट्रोल डाला.
1: ग्रीस कितने का? 5 रुपए का लगाया. आग लगा दूंगा मैं तुम्हारे शोरूम में, तुम्हारे वर्कशॉप में.
2: अच्छा
1: मुझे चाहिए अपनी वापस.
2: सर आप इतना गुस्सा ना करें,
1: जिम्मेदारी तुम्हारी है FIR वगैरह कराने की.
2: सर बिल्कुल आप गुस्सा ना करें. अच्छा सर, ऐसा चल सकता है जैसे आप गाड़ी ना लेके कॉम्पोजिट कर दें, हम आज शाम आपको मुर्गा खिला दें और मुकेश वो बन भी गया मुर्गा.
3: मुकेश मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, छोटा सा मजाक किया तुम्हारे साथ, मुर्गा बना दिया तुम्हारा.
1: तो जान निकाल दी हमारी.
3: मुकेश आपकी गाड़ी वही खड़ी है आपकी वर्कशॉप में, बस उसको धक्का लगाना है और आपको धक्का हम लगा देंगे. मेरे साथ जरा प्यार से कह दीजिए, गुस्सा खत्म करिए.
1: कुकड़ू कू
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
5: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ, सिर्फ मिर्ची पर.

काका बोले तो राजेश खन्ना अमिताभ बच्चन जी को बहुत सारे ताने मारते थे। पुरानी जीन्स पर हाय, मैं हूँ श्रेया और आज बात हो रही है ऋषिकेश दास द्वारा डायरेक्टेड फिल्म बावर्ची की। तो मैं कहाँ पे छोड़ के गई थी बात? हाँ, मैं ये बता रही थी कि ये वो टाइम था जब अमिताभ बच्चन एंड जया जी वर डेटिंग। वो एक दूसरे को मिल रहे थे, जान रहे थे, समझ रहे थे, धीरे धीरे प्यार में पड़ रहे थे। तो अमित जी के पास बड़ी सारी फिल्में थी, वो बिजी भी थे, लेकिन उनकी फिल्में इतनी चल नहीं रही थी। ऐसे में द सुपर सक्सेसफुल राजेश खन्ना जब उनको सेट पे देखते तो ऑफकोर्स उन्हें वो कॉम्पिटिशन लगते और वो उनको बहुत सारे ताने मारते। अमिताभ बच्चन भी सुन लेते, जया बच्चन भी सुन लेती, लेकिन एक दिन ऐसा आया जब काका ने एक बहुत ही खराब शब्द कहा। इस शब्द को सुन करके जया जी का सब्र का बांध टूट पड़ा और उन्होंने काका को जाकर के उनके कान में एक ऐसी बात बोली जिसके बाद से उन्होंने कभी भी अमिताभ बच्चन को कुछ नहीं कहा। वो शब्द क्या था अभी बताऊंगी। श्रेया के साथ वापस आओ, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: तेरा क्या होगा कालिया?
3: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
2: अब मिर्ची खा।
4: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: मनहूस, ये कह के बुलाया था काका ने अमिताभ बच्चन जी को। पुरानी जीन्स पर हाय, मैं हूँ श्रेया और आज बात हो रही है बावर्ची फिल्म की। इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले ऋषिकेश दा, फिल्म के मेन लीड राजेश खन्ना और फिल्म की हीरोइन जया बच्चन। ये वो टाइम था जब जया बच्चन जया बहादुरी थी और अमिताभ बच्चन बहुत सारी फिल्में कर रहे थे लेकिन उनकी फिल्म सक्सेसफुल नहीं हो रही थी, वो फिल्में फ्लॉप होती जा रही थी एक के बाद एक। ये वो टाइम था जब जया जी और अमिताभ बच्चन प्यार करने लगे थे एक दूसरे से, तो अमित जी ना बावर्ची के सेट पे उनसे मिलने जाते थे और हाँ ऋषिकेश दा तो उनके दोस्त ही थे। ऐसे में राजेश खन्ना को बहुत अखड़ते थे। राजेश खन्ना चलते फिरते अमिताभ बच्चन को कोई ना कोई ताना मार ही देते थे। पर एक दिन ऐसा आया जब जया जी के सब्र का बांध टूट गया और वो था जब राजेश खन्ना ने अमिताभ बच्चन को कहा, मनहूस, तुम मनहूस हो, जिस भी फिल्म में जाते हो वो फ्लॉप हो जाती है। ये बात जया जी के दिल पे सीधे जाके चुभी। उनको इतना गुस्सा आया कि अमित जी उन्हें चाय पे वापस बैठाते रहे, बैठ जाओ छोड़ो जाने दो। जया जी गुस्से में उठी, राजेश खन्ना के पास गई और उनके कान में कहा, एक दिन पूरी दुनिया देखेगी कि यह आदमी क्या बनेगा और आप क्या रह जाएंगे। इस एक लाइन के बाद वो वापस आके चाय पीने लगी। एंड आफ्टर दिस काका ने अमिताभ बच्चन को कभी ताना नहीं मारा। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ श्रेया और भी किस्से हैं उस जमाने के, तो गाने सुन करके यहीं वापस आना।
1: होठों पे रंगत है, दिल में मोहब्बत है, क्या जिसमें औरत है, बस जन्नत ही जन्नत है।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क इट्स हॉट
1: मिर्ची बायोस्कोप साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: ओ यार मिर्जापुर आ गई। यानी 2018 में जिन लोगों ने ये सीरियल बा देखल बे ना, इन लोगों को तो बिंदास्त में एक बार थिएटर में जाकर अपनी अपनी कालीन अब चद्दर बिछाकर कालीन भैया के एंटरटेनमेंट देखना बनता है। सारे जो कलाकार है वो धमाल करते हैं। इनफैक्ट जीतूराज तो कहेगा कि जितने लोगों को मिर्जापुर पसंद आई थी उन लोगों को तो 100% पसंद आएगी, पर जिन लोगों ने मिर्जापुर ये सीरीज नहीं देखी उन लोगों को भी एक बार बिंदास देख लेनी चाहिए। बहुत धमाल है, बहुत सारी गाली गलौच है, बहुत सारी गुंडागर्दी है, बहुत सारा खूनरेजी है, बट दैट इज व्हाट मिर्जापुर इज ऑल अबाउट। बट जीतूराज को स्त्रियों का महत्व बड़ा पसंद आता है, एंड मिर्जापुर सीरीज में जो स्त्रियों को महत्व दिया था वो इस पहले हिस्से में, शायद ऐसे लगता है कि दूसरा हिस्सा भी आएगा मिर्जापुर तो मूवी का, इस पहले हिस्से में स्त्रियों को महत्व नहीं दिया है। कोई कारण होगा पता नहीं है, बट बिंदास देखी जा सकती है। ई भौकाल एक बार एंटरटेनमेंट के लिए अपनी फैमिली के साथ देखना चाहिए या नहीं, एक कॉल त्योहार है। हम तोहका ना ही बोला है कि जाके थिएटर में अपनी फैमिली के साथ देखाओ, बट इंडिविजुअली अपने फ्रेंड्सवा के साथ बिंदास तंगड़ियां पसार के कुर्सियों पर बैठकर देख लो का भौकाल मचाए मिर्जापुर द मूवी ने। एंड हाँ, भूलना मत हमारे रवि किशन भैया जब जब स्क्रीन पर आते हैं ना भैया, अमा पनवा चटाई के जब धमाल करे, कभी कभार तो ऐसे लगे कि ज्यादा इम्पोर्टेंट कौन है, रवि किशन बाबू कि हमारे कालीन भैया पंकज त्रिपाठी। वो फुल एंटरटेनमेंट है यार। 3:30 मिर्ची है टीम मिर्ची की तरफ से, देखा और अपनी कितनी मिर्चियां हैं वो हमका बताओ इंस्टाग्राम पर आए @मिर्ची जीतूराज। समझे कि नहीं समझे, सही है
1: साथ जीतूराज। Only on मिर्ची इट्स हॉट।
3: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

अच्छा एक और चीज में ये फिल्म बावर्ची खास थी, पुरानी जीन्स पर। हाय मेरा नाम है श्रेया और आज मूवी बावर्ची की बात कर रहे हैं। राजेश खन्ना, जया बच्चन एंड ऑफ कोर्स डायरेक्टेड बाय ऋषिकेश मुखर्जी। राजेश खन्ना यानी काका उस टाइम पे ना सुपरस्टार थे, बल्कि कहा जाता है कि इंडिया के वो फर्स्ट सुपरस्टार थे। उनके साथ हर हीरोइन ने कई सारी फिल्मों में काम किया था, फिर चाहे वो शर्मिला टैगोर हो, मुमताज जी हो, आशा पारेख हो, जीना तमान हो, तनुजा जी हो, ऑल ऑफ देम। लेकिन सिर्फ एक हीरोइन थी जो उस टाइम पे अपने स्टारडम के पीक पे थी, पर काका से थोड़ी दूरी बना के चलती थी। उन्होंने राजेश खन्ना के ऑपोजिट एज इज लव इंटरेस्ट सिर्फ एक ही फिल्म में काम किया और वो थी बावर्ची। जया जी और राजेश खन्ना की ये रोमांटिकली पेयर अप होने वाली पहली और आखिरी फिल्म थी, इसीलिए है ना ये यूनिक फिल्म, क्योंकि ऋषिकेश दा इन दोनों को एक साथ ले आए थे इस पिक्चर में। पुरानी जीन्स पर मेरा नाम है श्रेया, वापस आओ, बातें तो अभी बहुत सारी बाकी हैं उस जमाने की।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

एक ऐसी फिल्म जिसने हमें जम करके हंसाया और बहुत सारे सीन्स में इमोशनल भी कर दिया, आज उसी की बात हो रही है, बावर्ची। पुरानी जीन्स पर मेरा नाम है श्रेया और मैं बात कर रही हूँ ऋषिकेश दा द्वारा डायरेक्टेड फिल्म बावर्ची की। अच्छा, जो रेट्रो फैंस हैं उन्होंने डेफिनेटली ये फिल्म देखी होगी, और जिन्होंने नहीं देखी उन्हें मैं बताना चाहती हूँ कि इस फिल्म में राजेश खन्ना बावर्ची बने थे, एक जॉइंट फैमिली के लिए खाना बनाया करते थे। पर अगर जब आप फिल्म देखोगे ना तो वो खाने से ज्यादा वो पूरी फैमिली का ख्याल रखते थे। सबके सीक्रेट्स भी इसी बावर्ची के पास होते हैं। जब ऋषिकेश दा ने ये अलग हट करके कैरेक्टर, एकदम अलग हट करके फिल्म काका को सुनाई ना, उन्हें बड़ा पसंद आया। सबसे ज्यादा एक्साइट उनको किया था बावर्ची की कॉस्ट्यूम, हाफ पैंट्स, एक शर्ट और सर पे टोपी। अब ये जो टोपी थी ना, इसकी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। इस टोपी को दो वजहों से पहना था राजेश खन्ना ने, एंड वो दो रीजंस क्या थे? आहा, अब तो आप मुझे जान गए हो, ऐसे कहाँ बताती हूँ मैं आपको। ऐसे सस्पेंस में छोड़ के जाने में श्रेया को तो बड़ा मजा आता है, तो गाने सुन करके जल्दी से वापस आओ, फिर बताती हूँ इस टोपी के पीछे की कहानी। ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: हेलो,
1: दिमाग खराब कर रखा है। रॉयल स्टूडियो से बोल रहे हैं भाई?
0: हाँ जी।
1: यार कमाल कर दिया आपने, जो फोटो खींचे थे मेरे बेटे की शादी के, सारी एल्बम आ गई है। क्या फोटो खींचे यार, दिमाग खराब कर दिया।
0: क्यों सर जी, क्या हो गया फोटो में?
1: अरे फोटो आकर देख यार, यहाँ पे क्या एल्बम बना रखी है, सबके फोटो अजीब से आए यार, सारे फोटो यार बकवास कर दिया आपने, मेरा दिमाग खराब।
0: फोटो बहुत अच्छा है। क्या
1: फोटो बहुत अच्छा है? सतीश चंद का एक बटन है, उसकी शादी के फोटो बिखा दिए यार, सारे दिमाग।
0: सतीश जी बहुत अच्छे फोटो खींचे बहुत।
1: अरे मैं झूठ बोल रहा हूँ, मतलब मैं पागल हूँ? आपने एल्बम देखी है? एल्बम देखी है?
0: मैंने देखी खुद अपने हाथ से एल्बम। सर जी हमने फिश लाइन लगाया उसके ऊपर, बेहतरीन। आप देखिए एक से बेहतरीन क्लोजअप है उसके अंदर।
1: अरे क्लोजअप को मारा गोली यार, क्लोजअप तो देखे में शर्म आ रही है हमें।
0: अरे शर्म की क्या बात है सर,
1: जितने फोटो है सबके कपड़े गायब है यार, तूने किया क्या ये?
0: किसी का
1: कपड़े गायब है, एक आदमी का मैं खड़ा हूँ, अजीब सा लग रहा हूँ यार। मैं
0: लगाया नहीं
1: क्या, कौन सा लेंस लगाया है? एक तो बता, ये बदमाशी करते हो, कपड़े गायब?
0: नहीं,
1: मैं कल को
0: फोटो खींचे।
1: अरे लेंस ऐसे
0: पूरे
1: कपड़े कौन से, मैंने शेरवानी पहन रखी थी, शेरवानी गायब है, अंदर से सब दिख रहा है यार। शेरवानी तुमने गायब करी है यार मेरी?
0: नहीं सर, शेरवानी गायब नहीं है, बहुत अच्छे फोटो है।
1: अरे मैं केस कर सकता हूँ वहाँ पे?
0: नहीं साहब, देखिए केस वेस की बात मत कीजिए, इसलिए हमारा नाम है इलाके में।
1: अरे हमारा भी कुछ था, अब कुछ नहीं बचा जब से फोटो देखे
0: हैं। सर क्या बात, चुन के बनाया है?
1: कोई फोटो चुन के नहीं बनाया, मेरा बेटा खड़ा है, कपड़े नहीं है बहू उसका, चलो छोड़ो, मैंने देखा भी नहीं है, वो खड़ा है, जितने बराती आए हैं सबके कपड़े गायब है, ऐसा लग रहा है यार, पता नहीं अफ्रीका में शादी हो रही है यार।
0: अरे नहीं सर, कहीं गड़बड़ लग रही है मुझे,
1: गड़बड़
0: देखना चाहूंगा एक बार फिर आपकी एल्बम, ऐसी कोई बात नहीं
1: यार, इतना बुरा लग रहा है, हर आदमी के प्लेट में, हर आदमी के हाथ में प्लेट है, कपड़े है भी
0: दिखाइए
1: आपका कपड़े कैसे, आप उसको सही करिए यार,
0: कोई सिस्टम ही नहीं है, कपड़े गायब हो जाए।
1: ऐसा सिस्टम है, एक जगह होता है,
0: कहाँ होता है बताइए?
2: रेडियो मिर्ची 98.3 FM पर आप मुर्गा बन रहे हैं रेडियो मिर्ची।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स पटाक। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स, श्रेया के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।

लोगों को लगा कि ये टोपी राजेश खन्ना ने फिल्म के कॉस्ट्यूम के चक्कर में पहनी है, लेकिन इसका रीजन तो कुछ और ही था। हाय, मैं हूँ श्रेया और आप सुन रहे हैं मुझे पुरानी जीन्स पे, और आज बात हो रही है द फिनोमिनल फिल्म बावर्ची की। अच्छा, ऋषिकेश दा जब ये रोल लेकर के पहुंचे राजेश खन्ना के पास, तो उन्हें लगा था कि शायद काका मना कर दें, क्योंकि तब काका इमोशनल रोल्स तो कर रहे थे, लेकिन उनको साथ में अच्छा दिखना बहुत पसंद था, गुड लुक्स। सो राजेश खन्ना अपने कपड़ों को लेकर के, अपने कॉस्ट्यूम्स को लेकर के बहुत पर्टिकुलर होते थे। जब उन्हें पता चला कि इस फिल्म में वो बावर्ची का रोल प्ले करेंगे और उन्हें एक बावर्ची जैसे कपड़े पहनने हैं, तो उन्होंने हामी भर दी। ऋषिकेश दा को बड़ा अचंभा हुआ। फिर राजेश खन्ना ने एक बात कही कि उनके सर से बावर्ची की टोपी, अगर आप देखो ना, एक पॉइंटेड सी टोपी पहने वो, जिसे उन्होंने एक सेकेंड के लिए भी फिल्म में नहीं उतारा। सो काका ने कहा कि इस पूरी फिल्म में वो ये टोपी पहने रहेंगे। तो ऋषिकेश दा ने आंखें छोटी करते हुए उनको शक की निगाहों से देखते हुए पूछा कि राजेश, तुम ये टोपी कॉस्ट्यूम के लिए पहनना चाहते हो या फिर कोई और रीजन है? काका ने मुस्कुरा के पता है क्या कहा? कि उनके बाल कम हो रहे हैं और टोपी की वजह से वो छिप जाएंगे। पुरानी जीन्स पर मेरा नाम है श्रेया, और भी बातें बताऊंगी ना, वापस तो आओ।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।

only on Radio Mirchi, New York. It's hot. आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

ऋषिकेश दाना बंगाली फिल्मों से बहुत इंस्पायर होते थे, बहुत इम्प्रेस होते थे और इसीलिए उनकी कई सारी फिल्में बंगाली फिल्म से ही इंस्पायर थी। पुरानी जींस पर हाय, मैं हूँ श्रेया। बावर्ची की बात हो रही है, ऋषिकेश दा ने बनाई थी, राजेश खन्ना और जया बच्चन थी विद अ लॉट ऑफ अदर एक्टर्स। ए के हंगल थे, असरानी साहब थे, दुर्गा खोटे थी। हाँ, तो मैं ये बता रही थी कि बावर्ची भी एक बंगाली फिल्म से इंस्पायर थी और इसका नाम था गोल्पो होलियो सोटी। ये फिल्म तपन सिन्हा ने बनाई थी। बनी तो ये 1966 में थी, लेकिन जब ये ऋषिकेश मुखर्जी ने देखी थी, उन्होंने तभी सोच लिया था कि वो ये फिल्म राजेश खन्ना के साथ हिंदी में बनाएंगे। पुरानी जीन्स पर आज इसी फिल्म की बातें चलती रहेंगी, तो श्रेया के साथ वापस आओ।

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्जापुर आ गई यानी 2018 में जिन लोगों ने इस सीरियल बात देखल बे ना, इन लोगों को तो बिंदास्त में एक बार थिएटर में जाकर अपनी अपनी कालीन अब चद्दर बिछाकर कालीन भैया के एंटरटेनमेंट देखना बनता है। सारे जो कलाकार है वो धमाल करते हैं। इनफैक्ट जीतूराज तो कहेगा कि जितने लोगों को मिर्जापुर पसंद आई थी उन लोगों को तो 100% पसंद आएगी, वह जिन लोगों ने मिर्जापुर ये सीरीज नहीं देखी उन लोगों को भी एक बार बिंदास देख लेनी चाहिए। बहुत धमाल है, बहुत सारी गाली गलौच है, बहुत सारी गुंडागर्दी है, बहुत सारा खूनरेजी है, बट दैट इज व्हाट मिर्जापुर इज ऑल अबाउट। बट जीतूराज को स्त्रियों का महत्व बड़ा पसंद आता है एंड मिर्जापुर सीरीज में जो स्त्रियों को महत्व दिया था वो इस पहले हिस्से में, शायद ऐसे लगता है कि दूसरा हिस्सा भी आएगा मिर्जापुर द मूवी का, इस पहले हिस्से में स्त्रियों को महत्व नहीं दिया है। कोई कारण होगा पता नहीं है, बट बिंदास देखी जा सकती है। ये भौकाल एक बार एंटरटेनमेंट के लिए अपनी फैमिली के साथ देखना चाहिए या नहीं, एक कॉल त्योहार है। हम तोहका ना ही बोला है कि जाके थिएटर में अपनी फैमिली के साथ देखाओ, बट इंडिविजुअली अपने फ्रेंड्सवा के साथ बिंदास तंगड़ियां पसार के कुर्सियों पर बैठकर देख लो। ये का भौकाल मचाया मिर्जापुर द मूवी ने। एंड हां, भूलना मत हमारे रवि किशन भैया जब जब स्क्रीन पर आते हैं ना भैया, अमा पनवा चटाई के जब धमाल करे, कभी कभार तो ऐसे लगा कि ज्यादा इम्पोर्टेंट कौन है, रवि किशन बाबू कि हमारे कालीन भैया पंकज त्रिपाठी। वो फुल एंटरटेनमेंट है यार। 3.5 मिर्ची है टीम मिर्ची की तरफ से, देखा और अपनी कितनी मिर्चियां हैं वो हमका बताओ इंस्टाग्राम पर आए @मिर्ची जीतूराज। समझे कि नहीं समझे, सही है
0: जीतूराज। Only on Mirchi, it's hot.
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: लाइंस पर आप हो श्रेया के साथ। मेरा जाने का टाइम तो हो गया है, पर आपको पता है ना मैं अकेले नहीं जाती हूँ। इस समय एक गाना चूज करके मैं और आप मिल करके हाईवे तक घूम के आते हैं। तो चलो गाड़ी में जल्दी से बैठो। तो आज का मेरा हाईवे हिट पहली मुलाकात पे, एंड स्पेशली जब आप उनसे फर्स्ट टाइम मिलने वाले होते हो ना, तो वो जो एक्साइटमेंट होता है ना कि क्या बातें होंगी, वो मुझसे क्या कहेगा, मैं उससे क्या पूछूंगी, आगे कॉन्वर्सेशन कैसे बढ़ाएंगे, अच्छा हम कैसे लग रहे होंगे एक दूसरे को, ये सब सवाल होते हैं ना। तो आज उसी एक्साइटमेंट पे
1: आज उनसे पहली मुलाकात होगी।
0: यही गाना सुनते हुए चलते हैं। On that note, this is Shreya signing off. आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो फेसबुक और इंस्टा पे, RJ Shreya with love. ये है मेरा हैंडल, that's RJ SHREYA Shreya with love.

0: भाई डेब्यू हो तो ऐसी।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: वेल मिर्ची पे ट्यून्ड इन हो आप, और मैं जिस फिल्म की बात कर रही हूँ ना वो शॉर्ट फिल्म कैटेगरीज में आती है, और ये फिल्म सिलेक्ट हुई है फॉर 10 फिल्म फेस्टिवल्स अक्रॉस 4 डिफरेंट कंट्रीज। और इसी फिल्म के साथ एक्टर सयानी गुप्ता ने अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू किया है। इसका नाम है आसमानी, और ये शॉर्ट फिल्म इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में ट्रैवल कर रही है। 2 महीने के टाइम पीरियड में 10 फिल्म फेस्टिवल्स टच करेगी, विच इज हैपनिंग अक्रॉस US, कनाडा, जापान एंड इंडिया। अगर कहानी के बैकड्रॉप की बात करें तो एक हार्ट वार्मिंग बॉन्ड दिखाया गया है बिटवीन अ स्पिरिटेड ग्रैंड मदर एंड हर ग्रैंड डॉटर, और इन दोनों की कहानी चल रही है एक पाउडर ब्लू कलर की कार में, विच डेफिनेटली इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ देयर जर्नी। इस फिल्म के साथ ही एक्टर सयानी गुप्ता ने एज अ डायरेक्टर लव लॉस एंड फ्रेंडशिप को एक्सप्लोर किया है थ्रू द रिलेशनशिप ऑफ अ ग्रैंड मदर एंड अ ग्रैंड डॉटर। इनफैक्ट उन्होंने तो एक इंटरव्यू में यह भी बताया कि भाई दिस इज इंस्पायर्ड समवेयर डाउन द लाइन फ्रॉम हर रिलेशनशिप विद हर ग्रैंड मदर। एंड आई कैन जस्ट इमेजिन कि ये कितना होलसम होगा देखने में। अगर आपको फिल्म का ओवरव्यू चाहिए तो ट्रेलर अवेलेबल है, डू गो चेक इट आउट। इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ अगर किसी भी तरीके से मौका मिले ऐसी फिल्मों को देखने का, देन इट्स हाई टाइम दैट वी एज ऑडियंस सपोर्ट सच क्राफ्ट। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: Milci. Escabana, puscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La virtua la burga.
1: Milci, burga. हेलो
2: हेलो मुकेश जी,
1: कौन
2: मुकेश जी? मैं ये प्रताप बोल रहा हूँ, राणा मोटर से। आपने जो 1000 दी थी ना, उसका वो जो कार्बोरेटर साफ होना था, वो सर हो नहीं पाया एक्चुअली। थोड़ा
1: नहीं हो पाया भाई?
2: हाँ, वो नहीं हो पाया सर।
1: हाँ, नहीं हो पाया
2: सर, वो थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। अच्छा सर, आप बता रहे थे ना पीछे बोनेट से आवाज आ रही है आपकी गाड़ी की। सर वो भी हो नहीं पाई है, वो उसमें थोड़ा हो नहीं पाया हमसे अभी।
1: नहीं, क्या नहीं पाया तुम्हारे यार, रोज गए तुम्हें, जब भी गाड़ी तो नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया, क्या मजाक ही क्या है ये?
2: नहीं मुकेश जी, मैं समझ रहा हूँ वो
1: एक क्या समझ रहे हो भाई।
2: नहीं नहीं, आप सही कह रहे हैं। अच्छा मुकेश जी, आपने एक बताया था ना ब्रेक ऑयल डल रहा है, ब्रेक काम नहीं कर रहे। सर वो ऑयल डल नहीं पाया थोड़ा।
1: अरे तो हो क्या पाया है तुमसे
2: सर? वो
1: ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया, मुझे फोन करना है, मुझे फोन इसलिए कराया कि ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया।
2: नहीं सर,
1: आपको तो फोन इसलिए करना था कि भाई ये जो काम दिया गया आपको वो कर दे।
2: नहीं सर, कुछ हो नहीं पाया।
1: क्यों नहीं हो पाया
2: सर? वो रात गाड़ी चोरी हो गई आपकी
1: है।
2: सर रात गाड़ी चोरी हो गई आपकी।
1: अरे तेरा दिमाग खराब है क्या?
2: अरे सर मैं वही आपसे कह रहा हूँ, मतलब हम
1: क्या करा दू
2: सर? मतलब आप ये आप आके FIR लिखवा देंगे अपनी गाड़ी की?
1: कैसी FIR? दिमाग खराब हो गया तेरा, पागल तो नहीं है तू?
2: अरे सर जितने की गाड़ी थी इतना दे देंगे, आप गुस्सा तो मत करिए कम से कम।
1: क्या गुस्सा ना करूं, नई गाड़ी थी हमारी।
2: नहीं सर, आप आपकी नई गाड़ी थी तो सर हमारा भी तो उसमें कुछ गया है, हमने भी तो ग्रीस लगाया
1: उसमें,
2: ग्रीस लगाया उसमें, हमने पेट्रोल डाला है।
1: ग्रीस कितने का? 5 रुपए का लगा। आग लगा दूंगा मैं तुम्हारे शोरूम में, तुम्हारे वर्कशॉप में।
2: अच्छा सर,
1: मुझे चाहिए अपनी वापस।
2: सर आप इतना गुस्सा ना करें,
1: जिम्मेदारी तुम्हारी है FIR वगैरह कराने की।
2: सर बिल्कुल आप गुस्सा ना करें। अच्छा सर, ऐसा चल सकता है जैसे आप गाड़ी ना लेके कॉम्पोजिट कर दें, हम आज शाम आपको मुर्गा खिला दें और मुकेश वो बन भी गया मुर्गा।
3: मुकेश मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, छोटा सा मजाक किया तुम्हारे साथ, मुर्गा बना दिया तुम्हारा।
1: तो जान निकाल दी हमारी।
3: मुकेश आपकी गाड़ी वही खड़ी है आपकी वर्कशॉप में, बस उसको धक्का लगाना है और आपको धक्का हम लगा देंगे। मेरे साथ जरा प्यार से कह दीजिए, गुस्सा खत्म करिए।
1: कुकड़ू कू
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

दोस्त, अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इन्फॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माई फ्रेंड, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो। इस इंसान को तो डांस करता देखना चाहती हूँ मैं विजय वर्मा की बात कर रही हूँ यार, जो अपना डांसिंग साइड एक्सप्लोर करने वाले हैं विद हिज अपकमिंग फिल्म एंटनी, विच इज गोइंग टू बी एन एक्शन थ्रिलर। मूवी में विजय वर्मा के अलावा सनी देओल भी नजर आएंगे और इन दोनों का फिल्म में फेस ऑफ होगा। आई लाइक इट। हैवान 2 घंटे 44 मिनट के रन टाइम के साथ आने वाली है। CBFC ने UA 16+ सर्टिफिकेट के साथ फिल्म को पास कर दिया है। ऑल्दो फिल्म के सेकेंड हाफ के कुछ डेरोगेटरी वर्ड्स हटाए गए हैं। एंड नाउ द मूवी इज सेट टू रिलीज ऑन द 11th of September। बर्थडे पे नहीं आएगी टीजर, आएगा टीजर होता है श्रुति। अरे क्या करे, बिहारीपना नहीं जाता है ना मेरे अंदर से। एनीवे, सो मैं बात कर रही हूँ अपकमिंग हाईली एंटिसिपेटेड फिल्म लव एंड वॉर के बारे में, जिसमें आलिया भट्ट, रणबीर कपूर और विकी कौशल लीड रोल्स निभाते नजर आएंगे। सो द अपडेट वॉज की इस फिल्म का टीजर 28th of September, दैट इज रणबीर कपूर के बर्थडे पे आएगा। बट क्योंकि इस फिल्म का शूट ही हाल फिलहाल खत्म हुआ है, इसलिए अब डिसाइड किया जा रहा है कि भाई दिवाली पे रिलीज हो रही है रणबीर कपूर की एक और मच अवेटेड फिल्म रामायण के पार्ट 1 के साथ लव एंड वॉर के टीजर को अटैच किया जाएगा। बाकी की डेट्स पता चलते ही आपको जरूर बताऊंगी। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: खेलो मगर प्यार से।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ,
0: मैं तो बॉलीवुड गेम खेलने की बात कर रही हूँ, आप कहाँ जा रहे हो? मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, एंड यस लाइक एवरी डे इट्स टाइम टू फाइंड मिर्ची फिल्म जी। सो द ड्रिल इज कि आपको मेरे इंस्टाग्राम पे जाके अपना नंबर भेजना होता है, फिर मैं आपको कॉल करके इस गेम की शुरुआत करती हूँ। तो आज मेरे साथ सबसे पहले टेलीफोन लाइन पे है दीपक जी, कैसे हैं सर?
3: बढ़िया, बताइए।
0: ओके, मुझे तो डर लग रहा है आपके साथ ये गेम खेलने में, पता चला आपने एक बार में ही खत्म कर दिया गेम मेरा।
3: नहीं,
0: मुझे ये बात बोलनी चाहिए आपको, आप छोड़ते ही नहीं, आपके अंदर का फिल्मची जो है ना एकदम बाहर ही आ जाता है। लेट स्टार्ट, देखते हैं आज कैसा होता है।
3: देखते हैं
0: जी। करीना और शाहिद की लास्ट फिल्म एक साथ,
3: उड़ता पंजाब।
0: उड़ता पंजाब में हॉकी प्लेयर कौन है?
3: आलिया भट्ट।
0: आलिया भट्ट किस फिल्म में तमिल स्टूडेंट बनी है?
3: टू स्टेट्स, अर्जुन कपूर के साथ आई थी।
0: क्या बात है। टू स्टेट्स में मेल लीड कौन है?
3: अर्जुन कपूर।
0: अर्जुन कपूर की फिल्म जिसमें वो हाउस हस्बैंड बने हैं,
3: की एंड का।
0: की एंड का में किया साहनी का रोल किसने प्ले किया है?
3: करीना कपूर।
0: करीना कपूर किस फिल्म में भैया जी की सेक्रेटरी बनी है?
3: टशन।
0: बिल्कुल टशन। ओके, आगे पूछती हूँ, फिल्म में भैया जी का रोल किसने प्ले किया है?
3: अक्षय कुमार।
0: नहीं सर, यहाँ पे आप गलत हो गए, यहाँ पे चेन ब्रेक करूंगी मैं।
3: करो।
0: बट इतना अच्छा जो गेम यहाँ तक पहुँचाया है उसके लिए ये टैग तो बनता है।
1: मिर्ची फिल्म जी।
0: हाँ जी, तो आप फिलहाल जो मुझे सुन रहे हैं ऐसे बैठने से कुछ नहीं होगा, गेम कंप्लीट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम मिर्ची श्रुति पे जाके अपना नंबर डीएम कीजिए, बाकी आई टेक केयर ऑफ। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स ऑल।

0: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: ओ यार मिर्जापुर आ गई। यानी 2018 में जिन लोगों ने इस सीरियल बात देखल बे ना, इन लोगों को तो बिंदास्त में एक बार थिएटर में जाकर अपने अपनी कालीन चद्दर बिछाकर कालीन भैया के एंटरटेनमेंट देखना बनता है। सारे जो कलाकार है वो धमाल करते हैं। इनफैक्ट जीतूराज तो कहेगा कि जितने लोगों को मिर्जापुर पसंद आई थी उन लोगों को तो 100% पसंद आएगी, पर जिन लोगों ने मिर्जापुर ये सीरीज नहीं देखी उन लोगों को भी एक बार बिंदास देख लेनी चाहिए। बहुत धमाल है, बहुत सारी गाली गलौच है, बहुत सारी गुंडागर्दी है, बहुत सारा खून रेजी है, बट दैट इज व्हाट मिर्जापुर इज ऑल अबाउट। बट जीतूराज को स्त्रियों का महत्व बड़ा पसंद आता है, एंड मिर्जापुर सीरीज में जो स्त्रियों को महत्व दिया था वो इस पहले हिस्से में, शायद ऐसे लगता है कि दूसरा हिस्सा भी आएगा मिर्जापुर द मूवी का, इस पहले हिस्से में स्त्रियों को महत्व नहीं दिया है। कोई कारण होगा पता नहीं है, बट बिंदास देखी जा सकती है। ई भौकाल एक बार एंटरटेनमेंट के लिए अपनी फैमिली के साथ देखना चाहिए या नहीं, एक कॉल त्योहार है। हम तोहका ना ही बोला है कि जाके थिएटर में अपनी फैमिली के साथ देखाओ, बट इंडिविजुअली अपने फ्रेंड्सवा के साथ बिंदास तंगड़ियां पसार के कुर्सियों पर बैठकर देख लो। ई का भौकाल मचाए मिर्जापुर द मूवी ने। एंड हाँ, भूलना मत हमारे रवि किशन भैया जब जब स्क्रीन पर आते ना भैया, अमा पनवा चटाई के जव धमाल करे, कभी कभार तो ऐसे लगाए कि ज्यादा इम्पोर्टेंट कौन है, रवि किशन बाबू कि हमारे कालीन भैया पंकज त्रिपाठी। वो फुल एंटरटेनमेंट है यार। 3:30 मिर्ची है टीम मिर्ची की तरफ से, देखाओ और अपनी कितनी मिर्चियां हैं वो हमका बताओ इंस्टाग्राम पर आए @मिर्ची जीतूराज। समझे कि नहीं समझे, सही है
0: जीतूराज। Only on Mirchi, it's hot.
2: Breaking news, Mirchi पर आने वाला है हिट गाना।

0: खेलो मगर प्यार से।
1: श्रुति श्रुति
0: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ। इससे पहले कि आपके दिमाग के घोड़े इधर उधर दौड़े, मैं तो मिर्ची फिल्म से गेम की बात कर रही हूँ। एनीवे, सो द ड्रिल इज कि आपको मेरे इंस्टाग्राम हैंडल मिर्ची श्रुति पे जाके अपना नंबर भेजना होता है, फिर मैं आपको कॉल करके इस गेम की शुरुआत करती हूँ जो आज मैंने मनोज जी के साथ की। बट ही गॉट स्टक एट अ पॉइंट, और उसके आगे का गेम खेलने के लिए मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे हैं संदीप जी। हेलो, कैसे हैं सर?
2: मैं बढ़िया, आप कैसे?
0: मैं बिल्कुल बढ़िया। क्या तैयार है गेम खेलने के लिए?
2: हाँ जी, हाँ जी।
0: तो आपके पहले इस गेम की शुरुआत मनोज जी ने की, बट ही गॉट स्टक एट अ पॉइंट, वो जिस सवाल पे अटके हैं उसके आगे से मैं ये गेम आपके साथ खेल रही हूँ। सो द क्वेश्चन वॉज, फिल्म रन की फीमेल लीड कौन है?
2: भूमिका चावला।
0: भूमिका चावला की फिल्म जिसमें उनसे हीरो को ऑब्सेसिव प्यार हो जाता है?
2: तेरे नाम।
0: तेरे नाम में राधे कौन है?
2: सलमान खान।
0: सलमान खान की फिल्म जिसमें वो टांगों के बीच टावल डाल के डांस करते हैं?
2: ये मुझे बहुत पसंद है, मुझसे शादी करोगी।
0: यस, मुझसे शादी करोगी में सलमान को किससे शादी करनी है?
2: प्रियंका चोपड़ा।
0: प्रियंका चोपड़ा की फिल्म जिसमें वो मॉडल बनी है?
2: फैशन।
0: फैशन में इवी वी वी वी कौन?

0: Milci. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La virtua la burga.
1: Milci, burga. हेलो
2: मिल गया मैडम, आप मयूर विहार में हमारा रक्षा पे बैठ के मयूर विहार फेज वन से फेज टू गई थी, याद है आपको?
1: नहीं, नंबर कहाँ से मिल गया?
2: वही आपको बता रहे हैं, आप जब उतर के गई हैं ना अपने घर, और घर के जो आपके पड़ोसी हैं, हम उनसे नंबर आपका लिए हैं, मोबाइल नंबर, जो आप बोले हैं दाएं को मुड़ने के लिए, जब दाएं मुड़े हैं ना हम, मैडम आपका रास्ते में फोन भी आया था, जब आपका फुनवा बजा है तो आपकी आवाज सुने हैं हम, बहुत अच्छा लगा है आवाज सुन के। आप जब रिक्शा पे बैठी है ना, मैं हम कसम खा रहे हैं, हम जब से आप बैठे हो उस सीट को हम कि छूने भी नहीं दिए, हम धुलाए भी नहीं है।
1: क्या तुझे पागल लगा?
2: नहीं वो मैडम, हम आपसे एक बात कहना चाह रहे थे।
1: क्या कहना है?
2: मैडम आई लव यू, हम आपको देख के इतना मेरी बात है। चारू चारू फोन मत रखना, चारू फोन मत रखना, चारू फोन मत रखना, चारू चारू चलो। हेलो हेलो हेलो हेलो चारू, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुझे किसी ने तुम्हारा नंबर दिया था, उसने मुझे बताया कि तुमने रिक्शा पे ट्रैवल किया था, रिक्शा पे बैठ के गई थी, मैंने तो मजाक किया, तुम्हारा मुर्गा बना दिया। आई लव यू बट मैं सभी से मोहब्बत करता हूँ यार, आई लव यू, मैं रिक्शा नहीं चलाता हूँ। चारू प्लीज बुरा मत मान यार, थोड़ा सा नहीं, रिक्शा मैं चलाने को तैयार हूँ यार तुम्हारी वजह से, लेकिन तुम प्लीज जरा थोड़ा सा गुस्सा कम कर दो, मेरे साथ प्यार से हंस के बोल दो।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: तेरा क्या होगा कालिया?
4: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार,
3: अब मिर्ची खा।
5: Radio Mirchi, it's hot.

तुमसे मिलके मैंने जाना ये प्यार भी अजीब चीज है। इंसान खुद को भूल जाता है, ऐसा क्यों होता है?

तुम्हें देखता हूँ तो लगता है कोई ऐसा भी मेरे पास तो है, अरे जिसको मेरी तन्हाई का एहसास तो है।

0: I can call them my best friends, huh?
1: श्रुति, मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: चल बाबू मोशा है, जब मेरा मूड खराब होता है तो मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड या फिर अपनी माँ, who is the ultimate best friend of my life, मैं इन दोनों लोगों को कॉल करती हूँ। बट अगर ये नहीं हुआ देन ऑफ कोर्स अपना मूड ठीक करने के लिए आई स्विच टू सम अंडररेटेड कॉमेडी फिल्म्स, और उन्हीं फिल्मों की लिस्ट आज आपसे शेयर कर रही हूँ थ्रू माई पांच का पंच लिस्ट, जिसमें सबसे पहले वी टॉक्ड अबाउट दूल्हे राजा। अब नंबर दो पे लेट्स टॉक अबाउट भेजा फ्राई। वेल, ये मूवी रिलीज हुई थी इन द ईयर 2007, जिसमें आप विनय पाठक, रजत कपूर, रणवीर शौर्य और सारिका जैसे अमेजिंग एक्टर्स को देख सकते हैं। बाकी ये एक क्वर्की कॉमेडी है जिसमें रंजीत नाम का एक टैक्स इंस्पेक्टर डिनर पे बुला लेता है भरत नाम के एक एस्पायरिंग सिंगर को। बस इसके बाद जो धमा चौकड़ी मचती है, जो मेस क्रिएट होता है, एंड ऑल ऑफ दिस हैपेंस विद अमेजिंग डायलॉग्स एंड कॉमिक टाइमिंग। मूवी नहीं देखी तो जरूर देखना। लिस्ट में आगे बढ़ते हुए चलो दिल्ली की बात करना चाहूंगी। ऑन नंबर 3, जो रिलीज हुई थी इन द ईयर 2011, डायरेक्टेड बाय शशांक शाह। इस मूवी में लारा दत्ता और विनय पाठक लीड रोल में हैं। सो बेसिकली मिहिका नाम की एक इन्वेस्टमेंट बैंकर है जो अपनी दिल्ली की फ्लाइट मिस कर देती है, एंड अपेरेंटली उसको मनु गुप्ता से मिलना होता है, उसकी बहुत बातूनी सी आदत को बर्दाश्त करके उसके साथ दिल्ली पहुंचना होता है। अब इस पूरे रस्ते में किस तरीके से क्या चीज होती है इज वॉट द मूवी इज ऑल अबाउट। अ डेफिनेट वॉच आई मस्ट से। बाकी मेरी इस लिस्ट में और भी दो ऐसी ही अंडररेटेड कॉमेडी फिल्मों की बातें बाकी हैं। बट इन अ व्हाइल, टिल देन यू एंजॉय द अपकमिंग सॉन्ग्स राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: हंसना और हंसाना मुझे काफी पसंद है। श्रुति श्रुति
1: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: और बाबू मोशा है, जिस दिन मूड खराब हो जाए उस दिन तो लगता है कि भाई साहब को ये एस्केप दे दो। और मेरे लिए एस्केप होता है कॉमेडी फिल्मों का। हाँ जी, और आज कुछ अंडररेटेड कॉमेडी फिल्मों की बात कर रही हूँ थ्रू माय 5 का पंच लिस्ट। तो पेन और पेपर लेके नोट डाउन करने की शुरुआत कर दीजिए। सबसे पहले इन द लिस्ट वी टॉक्ड अबाउट दूल्हे राजा, नंबर 2 पे वी टॉक्ड अबाउट भेजा फ्राई, नंबर 3 पे हमने बात की चलो दिल्ली के बारे में, और अब बारी है नंबर 4 पे टू टॉक अबाउट खोसला का घोसला, वन ऑफ माई सुपर डुपर फेवरेट फिल्म्स, जो रिलीज हुई थी इन द ईयर 2006, डायरेक्टेड बाय दिबाकर बैनर्जी, स्टारिंग अनुपम खेर, बमन ईरानी, परवीन दाबस, विनय पाठक, तारा शर्मा एंड रणवीर शौर्य। एंड भाई साहब ये फिल्म एक डिलाइटफुल कॉमेडी है अबाउट अ मिडिल क्लास फैमिली एंड उनका बैटल अगेंस्ट अ लैंड माफिया प्लेड बाय बमन ईरानी माइंड यू, जो उस फैमिली की प्रॉपर्टी को इल्लीगल तरीके से कैप्चर कर लेता है। सो ऑल इन ऑल द मूवी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ह्यूमर विद अ टचिंग स्टोरी अबाउट फैमिली एंड परसिस्टेंस। चाहो तो अपने परिवार के साथ भी ये फिल्म देख सकते हो। चलो लिस्ट में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं फिल्म 2 दुनी 4 के बारे में, जो रिलीज हुई थी इन द ईयर 2010, डायरेक्टेड बाय हबीब फाजिल, और इस मूवी में नीतू सिंह, ऋषि कपूर लीड रोल्स में नजर आएंगे। बाकी ये फिल्म एक हार्ट वार्मिंग कॉमेडी है, एक मिडिल क्लास स्कूल टीचर की कहानी है जिसमें वो अपनी जिंदगी चलाने के स्ट्रगल्स के बीच अपने परिवार के लिए एक गाड़ी खरीदने का सपना देखता है। बाकी मूवी का फन इज वेरी रिलेटेबल एंड इट कम्स विद अ स्ट्रॉन्ग मैसेज अबाउट फैमिली वैल्यूज। अ डेफिनेट वॉच आई मस्ट से। सो या, मेरी इस अंडररेटेड कॉमेडी फिल्मों की लिस्ट में अगर आप भी कुछ एडिशन करना चाहो देन फील फ्री टू डू दैट। MIRCHISHRUTI, दैट इज मिर्ची श्रुति के नाम से मुझसे फेसबुक या फिर इंस्टा पे कनेक्ट करके। इन द मीन टाइम स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: साथ जीतू राज, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: ओ यार मिर्जापुर आ गई। यानी 2018 में जिन लोगों ने इस सीरियल बा देखल बे ना, इन लोगों को तो बिंदास्त में एक बार थिएटर में जाकर अपनी अपनी कालीन अब चद्दर बिछाकर कालीन भैया के एंटरटेनमेंट देखना बनता है। सारे जो कलाकार है वो धमाल करते हैं। इनफैक्ट जीतूराज तो कहेगा कि जितने लोगों को मिर्जापुर पसंद आई थी उन लोगों को तो 100% पसंद आएगी, पर जिन लोगों ने मिर्जापुर ये सीरीज नहीं देखी उन लोगों को भी एक बार बिंदास देख लेनी चाहिए। बहुत धमाल है, बहुत सारी गाली गलौच है, बहुत सारी गुंडागर्दी है, बहुत सारा खूनरेजी है, बट दैट इज व्हाट मिर्जापुर इज ऑल अबाउट। बट जीतूराज को स्त्रियों का महत्व बड़ा पसंद आता है, एंड मिर्जापुर सीरीज में जो स्त्रियों को महत्व दिया था वो इस पहले हिस्से में, शायद ऐसे लगता है कि दूसरा हिस्सा भी आएगा मिर्जापुर द मूवी का, इस पहले हिस्से में स्त्रियों को महत्व नहीं दिया है। कोई कारण होगा पता नहीं है, बट बिंदास देखी जा सकती है। ये भौकाल एक बार एंटरटेनमेंट के लिए अपनी फैमिली के साथ देखना चाहिए या नहीं, एक और त्योहार है। हम तो हका ना ही बोला है कि जाके थिएटर में अपनी फैमिली के साथ देखाओ, बट इंडिविजुअली अपने फ्रेंड्सवा के साथ बिंदास तंगड़ियां पसार के कुर्सियों पर बैठकर देख लो। हैं ये का भौकाल मचाया मिर्जापुर द मूवी ने। एंड हां भूलना मत, हमारे रवि किशन भैया जब जब स्क्रीन पर आते ना भैया, अमा पनवा चटाई के जव धमाल करे, कभी कभार तो ऐसे लगाए कि ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, रवि किशन बाबू कि हमारे कालीन भैया पंकज त्रिपाठी। वो फुल एंटरटेनमेंट है यार। 3.5 मिर्ची है टीम मिर्ची की तरफ से, देखा और अपनी कितनी मिर्चियां हैं वो हमका बताओ इंस्टाग्राम पर, आए एट मिर्ची जीतूराज। समझे कि नहीं समझे, सही है
0: जीतूराज। Only on Mirchi, it's hot.
2: Har gana hit, har dusra gana super hit.
3: Only on Radio Mirchi, it's hot.
4: Hey, goli mar bheje main.
5: Yeah.
4: Ye bheja shor karta hai.

Mirchi. Brighten up your day, we will find a way. On Meety Mirchi, aha. दोस्त, अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इन्फॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माय फ्रेंड, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो। मिर्ची, मिर्ची, टॉप, टॉप, टॉप, टॉप ट्रेंडिंग। इस इंसान को तो डांस करता देखना चाहती हूँ मैं विजय वर्मा की बात कर रही हूँ यार, जो अपना डांसिंग साइड एक्सप्लोर करने वाले हैं विद हिज अपकमिंग फिल्म एंटनी, विच इज गोइंग टू बी एन एक्शन थ्रिलर। मूवी में विजय वर्मा के अलावा सनी देओल भी नजर आएंगे और इन दोनों का फिल्म में फेस ऑफ होगा। आई लाइक इट। हैवान 2 घंटे 44 मिनट के रन टाइम के साथ आने वाली है। CBFC ने UA 16+ सर्टिफिकेट के साथ फिल्म को पास कर दिया है। ऑल दो फिल्म के सेकेंड हाफ के कुछ डेरोगेटरी वर्ड्स हटाए गए हैं। एंड नाउ द मूवी इज सेट टू रिलीज ऑन द 11th of September। बर्थडे पे नहीं आएगी टीजर, आएगा टीजर होता है श्रुति। अरे क्या करे, बिहारीपना नहीं जाता है ना मेरे अंदर से। एनीवे, सो मैं बात कर रही हूँ अपकमिंग हाईली एंटिसिपेटेड फिल्म लव एंड वॉर के बारे में, जिसमें आलिया भट्ट, रणबीर कपूर और विकी कौशल लीड रोल्स निभाते नजर आएंगे। सो द अपडेट वॉज की इस फिल्म का टीजर 28th of September, दैट इज रणबीर कपूर के बर्थडे पे आएगा। बट क्योंकि इस फिल्म का शूट ही हाल फिलहाल खत्म हुआ है, इसलिए अब डिसाइड किया जा रहा है कि भाई दिवाली पर रिलीज हो रही है रणबीर कपूर की एक और मच अवेटेड फिल्म रामायण के पार्ट 1 के साथ लव एंड वॉर के टीजर को अटैच किया जाएगा। बाकी की डेट्स पता चलते ही आपको जरूर बताऊंगी। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

थर्सडे पे आज एक छोटी सी याद। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और थ्रो बैक टू द टाइम जब यार हमारे पास ऑप्शन ही नहीं था कि गाना हम स्किप कर सकते थे। जी हाँ, याद है वो वक्त जब गाना सिर्फ सुनना नहीं होता था, गाने के साथ थोड़ा जीना भी होता था। पहले इंट्रो आता था, फिर धीरे धीरे धुन बिल्डअप होती थी, फिर अंतरा, और फिर पता ही नहीं चलता था कि कब पूरा गाना खत्म हो गया। और जी हाँ, आज वही गाने कभी कभी छोटी से एक रील मोमेंट में मिलते हैं, कभी एक लाइन, कभी एक हुक, और कभी बस वही रिपीट पे चलती रहती है। रील ना हमें उस गाने का एक ही हिस्सा याद दिलाता है, पर रेडियो पे जब हम ये गाने पहले सुनते थे तो पूरा गाना फील करवा देता था। तो जैसे कभी कोई गाना पूरा याद होता था, अब उसका सिर्फ एक टुकड़ा ही याद रह जाता है। पर यार जब भी हम वापस जाके ऐसे किसी गाने को पूरा सुनते हैं ना, तो लगता है कि जैसे कोई पुरानी डायरी खुल गई हो। हर लाइन, हर म्यूजिक पीस कुछ ना कुछ याद तो जरूर दिला देता है। तो चलिए दोस्तों, रेडियो पे उसी एहसास को वापस लाते हैं, बिना स्किप किए इस गाने को पूरा सुनते हैं। और आप भी बताइए, ऐसा कौन सा गाना है जो आपको कंप्लीट याद है, सिर्फ रील वाला पार्ट नहीं। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और फिलहाल आपके लिए ये अगला खूबसूरत सा गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi. Escabana, escabana, sacabana. Rambala. Murga, murga. La vieja la murga.
1: Mirchi, murga. हेलो
2: हेलो मुकेश जी,
1: कौन?
2: मुकेश जी मैं ये प्रताप बोल रहा हूँ राणा मोटर से। आपने जो 1000 दी थी ना उसका, हाँ वो जो कार्बोरेटर साफ होना था वो सर हो नहीं पाया एक्चुअली, थोड़ा
1: नहीं हो पाया भाई।
2: हाँ वो नहीं हो पाया सर।
1: हाँ जी? नहीं हो पाया
2: सर, वो थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। अच्छा सर, आप बता रहे थे ना पीछे बोनेट से आवाज आ रही है आपकी गाड़ी की। सर वो भी हो नहीं पाई है, वो उसमें थोड़ा हो नहीं पाया हमसे अभी।
1: नहीं क्या नहीं पाया तुम्हारे यार, रोज के तुम्हें जब भी गाड़ी पे नहीं हो पाया वो नहीं हो पाया है, क्या मजाक ही क्या है ये?
2: नहीं मुकेश जी मैं समझ रहा हूँ वो एक
1: क्या समझ रहे हो भाई।
2: नहीं नहीं आप सही कह रहे हैं। अच्छा मुकेश जी आपने एक बताया था ना ब्रेक ऑयल डलना है, ब्रेक काम नहीं कर रहे। सर वो ऑयल डल नहीं पाया थोड़ा।
1: अरे तो हो क्या पाया है तुमसे
2: सर, वो
1: ये नहीं हो पाया वो नहीं हो पाया, मुझे फोन करना है, मुझे फोन इसलिए कराया कि ये नहीं हो पाया वो नहीं हो पाया।
2: नहीं सर
1: एक्चुअली आपको तो फोन इसलिए करना था कि भाई ये जो काम दिया गया आपको वो कर दे।
2: नहीं सर कुछ हो नहीं पाया।
1: क्यों नहीं हो पाया
2: सर? वो रात गाड़ी चोरी हो गई आपकी
1: है?
2: सर रात गाड़ी चोरी हो गई आपकी।
1: अरे तेरा दिमाग खराब है क्या?
2: अरे सर मैं वही आपसे कह रहा हूँ, मतलब हम
1: क्या करा दूँ
2: सर, मतलब आप ये आप आके FIR लिखवा देंगे अपनी गाड़ी की?
1: कैसी FIR, दिमाग खराब हो गया तेरा, पागल तो नहीं है तू?
2: अरे सर जितने की गाड़ी थी इतना दे देंगे, आप गुस्सा तो मत करिए कम से कम।
1: क्या गुस्सा ना करूं, नई गाड़ी थी हमारी।
2: नहीं सर आप आपकी नई गाड़ी थी तो सर हमारा भी तो उसमें कुछ गया है, हमने भी तो ग्रीस लगाया।
1: उसमें
2: ग्रीस लगाया, उसमें हमने पेट्रोल डाला है।
1: ग्रीस कितने का? 5 रुपए का लगा। आग लगा दूंगा मैं तुम्हारे शोरूम में, तुम्हारे वर्कशॉप में।
2: अच्छा सर
1: मुझे चाहिए अपनी वापस।
2: सर आप इतना गुस्सा ना करें,
1: जिम्मेदारी तुम्हारी है FIR वगैरह कराने की।
2: सर बिल्कुल आप गुस्सा ना करें। अच्छा सर ऐसा चल सकता है जैसे आप गाड़ी ना लेके कॉम्पोजिट कर दें, हम आज शाम आपको मुर्गा खिला दें और मुकेश वो बन भी गया है मुर्गा।
3: मुकेश मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, छोटा सा मजाक किया तुम्हारे साथ, मुर्गा बना दिया तुम्हारा।
1: तो जान निकाल दी हमारी।
3: मुकेश आपकी गाड़ी वही खड़ी है आपकी वर्कशॉप पे, बस उसको धक्का लगाना है और आपको धक्का हम लगा देंगे। मेरे साथ जरा प्यार से कह दीजिए, गुस्सा खत्म करिए।
1: कुकड़ू कू
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

कुछ गाने हम अकेले नहीं सुनते, उनके साथ घर के लोग, पुरानी ड्राइव्स, शादियों की मस्ती और पूरी पूरी मेमोरीज ऑटोमेटिकली जुड़ जाती है। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि, और एक ऐसी आवाज़ है जिसने हमें कई सारे ऐसे गाने दिए हैं। जी हाँ, सोनू निगम की आवाज़। यार इस आवाज़ में तो जैसे हर जनरेशन के लिए एक गाना है। किसी के लिए संदेश से आते हैं, किसी के लिए सूरज हुआ मध्यम, किसी के लिए मैं अगर कहूँ तो किसी के लिए अभी मुझ में कहीं। और शायद इसीलिए जब भी अपने फैमिली के साथ एक स्पेशल इवनिंग प्लान करनी है ना, तो सोचिए कि अटलांटिक सिटी के ग्रैंड वेन्यू में कंफर्टेबली बैठकर लाइव म्यूजिक और सामने वो आवाज़ जिसके गाने आप सब ने अपनी अपनी जिंदगी के अलग अलग चैप्टर्स में सुने हैं। जी हाँ दोस्तों, सोनू निगम रेवोल्यूशन टूर इस शुक्रवार सितंबर 11 हार्ड रॉक लाइव ईटस एरेना अटलांटिक सिटी में आ रहा है। अनंत सेन, अमित जेटली ऑफ साई यूएसए आईएनसी प्रेजेंटेशन। तो यार कॉन्सर्ट का कैनवस तो ग्रैंड ही होने वाला है, और अगर आप अपने फैमिली के लिए प्लान बनाना चाहते हो तो जल्दी से टिकट बुक कर लीजिए फ्रॉम टिकट मास्टर या फिर saiusainc.com या फिर sulekha.com। और मिर्ची लिसनर्स, टिकट लेने के साथ अपनी बॉलीवुड नॉलेज भी टेस्ट कर लो, क्योंकि कॉन्टेस्ट का टाइम आ चुका है। आपको बस इतना बताना है कि यार सोनू निगम ने कौन सा एक ऐसा गाना गाया था जिसमें उन्होंने 54 डिफरेंट वॉइस मॉड्यूलेशन यूज किए थे। अलग अलग आवाज़ खुद ही बना के 54 अलग अलग आवाज़ और वॉइस मॉड्यूलेशन यूज करके उन्होंने ये एक गाना गाया था। डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI टाइप कीजिए सोनू और आपका जवाब, या फिर आप हमें व्हाट्सएप पर भी अपना जवाब भेज सकते हो 9033647244। अब ऐसे गाना सुनोगे तो लगेगा पूरी सिंगर्स की बारात आ चुकी है, लेकिन माइक के पीछे से वे की आवाज थी सोनू निगम। तो चलिए रिवॉल्यूशन का काउंट डाउन कंटिन्यू करते हैं सोनू निगम के खूबसूरत गाने के साथ, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

लंबी लंबी ट्रिप्स के बाद अगर कोई एक चीज की क्रेविंग होती है तो वो क्या है। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और सबके दिल से एक ही आवाज निकली होगी, घर के खाने की। जी हाँ, सफर चाहे कितना भी अच्छा हो, बाहर कितना भी खा लिया हो, एक पॉइंट के बाद ना दिल बस कुछ सिंपल, गर्मा गर्म और अपना सा चाहता है। आपने कभी नोटिस किया है, थकान तो आधी तब उतर जाती है जब किचन से हल्की सी तड़के की खुशबू आती है और फिर याद आता है कि कुछ कंफर्ट फूड ना फैशनेबल नहीं होते, बस फॉरएवर होते हैं। और मेरे लिए उस सुकून का एक ही नाम है, एक गर्मा गर्म बोल ऑफ मूंग दाल की खिचड़ी, हल्की सी घी, साथ में थोड़ा सा अचार, और बस जैसे सफ़र की सारी थकान ही उतर गई हो। बॉडी को ऐसा ईज मिलता है और दिल को भी इतना ज़्यादा सुकून मिलता है विद जस्ट दैट वन बोल ऑफ मूंग दाल की खिचड़ी। इतना सिंपल सा खाना, लेकिन क्या कमाल का कम्फर्ट है, ऑनेस्टली अंडररेटेड। और ऐसे ही घर वाले स्वाद के लिए आज ही ले आइए दीप प्रीमियम इंडियन ओरिजिन मूंग दाल फ्रॉम योर नियरेस्ट इंडियन ग्रोसरी स्टोर। दीप, खाओ तो जानो और मुझे बताओ कि आपका कंफर्ट फूड क्या है। टेल मी ऑन इंस्टा आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI, और तब तक के लिए सुनते रहिए मिर्ची इट्स हॉट।

0: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: ओ यार मिर्जापुर आ गई। यानी 2018 में जिन लोगों ने इस सीरियल बा देखल बे ना, इन लोगों को तो बिंदास्त में एक बार थिएटर में जाकर अपनी अपनी कालीन अब चद्दर बिछाकर कालीन भैया के एंटरटेनमेंट देखना बनता है। सारे जो कलाकार है वो धमाल करते हैं। इनफैक्ट जीतूराज तो कहेगा कि जितने लोगों को मिर्जापुर पसंद आई थी उन लोगों को तो 100% पसंद आएगी, पर जिन लोगों ने मिर्जापुर ये सीरीज नहीं देखी उन लोगों को भी एक बार बिंदास देख लेनी चाहिए। बहुत धमाल है, बहुत सारी गाली गलौच है, बहुत सारी गुंडागर्दी है, बहुत सारा खूनरेजी है, बट दैट इज व्हाट मिर्जापुर इज ऑल अबाउट। बट जीतूराज को स्त्रियों का महत्व बड़ा पसंद आता है, एंड मिर्जापुर सीरीज में जो स्त्रियों को महत्व दिया था वो इस पहले हिस्से में, शायद ऐसे लगता है कि दूसरा हिस्सा भी आएगा मिर्जापुर द मूवी का, इस पहले हिस्से में स्त्रियों को महत्व नहीं दिया है। कोई कारण होगा पता नहीं है, बट बिंदास देखी जा सकती है। ये भौकाल एक बार एंटरटेनमेंट के लिए अपनी फैमिली के साथ देखना चाहिए या नहीं, एक कॉल त्योहार है। हम तोहका ना ही बोला है कि जाके थिएटर में अपनी फैमिली के साथ देखाओ, बट इंडिविजुअली अपने फ्रेंड्सवा के साथ बिंदास तंगड़ियां पसार के कुर्सियों पर बैठकर देख लो है ये का भौकाल मचाए मिर्जापुर द मूवी ने। एंड हां, भूलना मत हमारे रवि किशन भैया जब जब स्क्रीन पर आते हैं ना भैया, अमा पनवा चटाई के जव धमाल करें, कभी कभार तो ऐसे लगाए कि ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, रवि किशन बाबू कि हमारे कालीन भैया पंकज त्रिपाठी। फुल एंटरटेनमेंट है यार। 3:30 मिर्ची है टीम मिर्ची की तरफ से, देखा और अपनी कितनी मिर्चियां हैं वो हमका बताओ इंस्टाग्राम पर आए @मिर्ची जीतूराज। समझे कि नहीं समझे, सही है
0: जीतूराज। Only on Mirchi, it's hot.

घर में चार लोग और चार अलग मूड्स हो तो ओटीटी चूज करना भी ना फैमिली मीटिंग बन जाती है। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि और इस वीकेंड तो मीटिंग और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है। हिस्ट्री और एक्शन का मूड है तो द रिवॉल्यूशनरीज, जहाँ भुवन बम, रोहित सराफ, प्रतिभा रांटा और गुरफतेह प्रजिता यंग फ्रीडम फाइटर्स की कहानी लेकर आ रहे हैं। क्राइम थ्रिलर चाहिए तो घमासान में अरशद वारसी और प्रतीक गांधी आमने सामने, और फैमिली के साथ कुछ हल्का फुल्का देखना है तो चुंबक में नीना गुप्ता, सुमित व्यास और देवन भोजानी के साथ कॉलोनी वाली कॉमेडी केओस लेकर रेडी रहने वाले हैं। मतलब यार एक स्क्रीन लेकिन मूड के हिसाब से तीन कंप्लीटली डिफरेंट डेस्टिनेशन। लेकिन असली सवाल तो ये है कि आप ओटीटी पर जॉनर चूज करते हो, स्टोरी देखते हो या कास्ट देखते ही प्ले का बटन दबा देते हो? जरूर बताना ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सुद्धि SIDDHI। और वैसे वॉच लिस्ट तो आप संभाल ही लेंगे, प्ले लिस्ट हम संभाल लेते हैं। अगला बॉलीवुड गाना मिर्ची पर, ओनली फॉर यू राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

इस एक डेट ने बॉलीवुड ऑडियंस की मेमोरी को जितना टेस्ट किया है ना, शायद ही किसी स्कूल एग्जाम ने टेस्ट किया होगा। तारीख 2 अक्टूबर, शाम शांता लाइव सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और जी हाँ, विजय सारगांवकर ने हम सबको एक चीज सिखा दी, दृश्यम देखते वक्त आंखों से ज्यादा दिमाग खुला रखना पड़ता है। और अब दृश्यम द कंक्लूजन का ट्रेलर आ चुका है, रिलीज डेट वही पुरानी 2 अक्टूबर। अजय देवगन और तब्बू की वो कैट एंड माउस गेम वापस है, लेकिन इस बार एक और जबरदस्त प्लेयर एंटर हुए हैं और वो है जयदीप अलावत। वैसे ट्रेलर देख के ना मैं प्रिडिक्ट नहीं करने वाली, क्योंकि दृश्यम के साथ ओवर कॉन्फिडेंस बहुत ही महंगा पड़ता है। बस इतना कहूंगी कि विजय सरगांवकर ने पहले पुलिस को कंफ्यूज किया, फिर ऑडियंस को, और अब देखना यह है कि द कंक्लूजन में ये जो उनका गेम है वो किसको पहले समझ आता है। तो मिर्ची का सवाल बहुत ही आसान, दृश्यम 1 और 2 मिलाकर आपको सबसे क्लेवर विजय सरगांवकर मूव कौन सा लगा? टेल मी ऑन इंस्टा @RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और अब सस्पेंस को थोड़ी देर पॉज कर है, क्योंकि अगले गाने का राज मैं अभी खोलने वाली हूँ। यार, आपके लिए गाना बजाना ही तो मेरा काम है। तो चलिए सुनते हैं अगला गाना, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milci. Escabana, puscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La virtua la burga.
1: Milci, burga. हेलो,
2: दिमाग खराब कर रखा है। रॉयल स्टूडियो से बोल रहे हैं भाई।
1: हाँ जी
2: यार, कमाल कर दिया आपने, जो फोटो खींचे थे मेरे बेटे की शादी के, सारी एल्बम आ गई है। क्या फोटो खींचे यार, दिमाग खराब कर दिया।
1: क्यों सर जी, क्या हो गया फोटो में?
2: अरे फोटो आकर देख यार, यहाँ पे क्या एल्बम बना रखी है, सबके फोटो अजीब से आए यार, सारे फोटो यार बकवास कर दिया आपने, मेरा दिमाग खराब।
1: फोटो बहुत अच्छा है। क्या
2: फोटो? बहुत अच्छा है, सतीश चंद का एक बटन है, उसकी शादी के फोटो बका दिए यार, सारे दिमाग।
1: सतीश जी बहुत अच्छे फोटो, बहुत।
2: अरे मैं झूठ बोल रहा हूँ, मतलब मैं पागल हूँ? आपने एल्बम देखी है? एल्बम देखी है?
1: सर जी हमने फिश लाइन लगाया उसके ऊपर, बेहतरीन। आप देखिए एक से एक बेहतरीन क्लोजअप है उसके अंदर।
2: अरे क्लोजअप को मारा गोली यार, क्लोजअप तो देखे में शर्म आ रही है हमें।
1: अरे शर्म की क्या बात है सर,
2: जितने फोटो हैं सबके कपड़े गायब है यार, तूने किया क्या ये?
1: किसी का
2: कपड़े गायब है, एक आदमी का मैं खड़ा हूँ, अजीब सा लग रहा हूँ यार। मैं
1: लेंस कौन सा लगाया नहीं?
2: क्या कौन सा लेंस लगाया है? एक तो बता, ये बदमाशी करते हो, कपड़े
1: गायब? नहीं,
2: कल को
1: फोटो खींचे।
2: अरे लेंस ऐसे
1: पूरे
2: कपड़े कौन से? मैंने शेरवानी पहना की थी, शेरवानी गायब है, अंदर से सब दिख रहा है यार। शेरवानी तुमने गायब करी है यार मेरी?
1: नहीं सर, शेरवानी गायब नहीं है, बहुत अच्छे फोटो है।
2: अरे मैं केस कर सकता हूँ वहाँ पे?
1: नहीं साहब, देखिए केस वेस की बात मत कीजिए, इसने हमारा नाम है इलाके में।
2: अरे हमारा भी कुछ था, अब कुछ नहीं बचा जब से फोटो देखे हैं।
1: सर क्या बात, सुन के बनाया है?
2: कोई फोटो चुन के नहीं बनाया, मेरा बेटा खड़ा है, कपड़े नहीं है बहु उसका, चलो छोड़ो, मैंने देखा भी नहीं है, वो खड़ा है, जितने बराती आया है सबके कपड़े गायब है, ऐसा लग रहा है यार, पता नहीं अफ्रीका में शादी हो रही है यार।
1: अरे नहीं सर, कहीं गड़बड़ लग रही है मुझे,
2: गड़बड़
1: देखना चाहूंगा एक बार फिर आपकी एल्बम, ऐसी कोई बात नहीं
2: यार, इतना बुरा लग रहा है, हर आदमी के प्लेट में, हर आदमी के हाथ में प्लेट है, कपड़े है भी।
1: दिखाइए
2: आपका कपड़े कैसे, आप उसको सही करिए यार,
1: कोई सिस्टम ही नहीं है कपड़े गायब हो जाए,
2: ऐसा सिस्टम है एक जगह होता है,
1: कहाँ होता है बताइए।
3: रेडियो मिर्ची 98.3 FM पर आप मुर्गा बन रहे हैं रेडियो में।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

कभी कभी प्रॉब्लम ये नहीं होती कि हमारे पास ऑप्शंस नहीं होते, कभी कभी प्रॉब्लम ये होती है कि हमें पता ही नहीं होता कि ऑप्शंस क्या है। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और लाइफ के बड़े डिसीजंस में हम अक्सर सिर्फ दो चॉइसेस देखते हैं, यस या नो, अभी या बाद में, लेकिन बीच में भी कई पॉसिबिलिटीज हो सकती है। और जब बात फाइनेंसेस और होम ओनरशिप की आए तो डिसीजंस लेने से पहले अपने ऑप्शंस को समझना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। बाय करना हो, रीफाइनेंस करना हो या फिलहाल वेट करना हो, पहले समझिए कि आपके ऑप्शंस क्या है। और वही सिंप्लीफाई करेंगे मेरे दोस्त बीश फ्रॉम लैंड मॉर्गेज। ओवर टू यू बीश।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।

कुछ कॉन्सर्ट्स का काउंटडाउन कैलेंडर से नहीं गानों से होता है और आज मिर्ची पर वो काउंटडाउन फुल वॉल्यूम में होने वाला है। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और सबसे पहले आप सबको बहुत सारा शुक्रिया एवरीवन हु पार्टिसिपेटेड इन द सोनू निगम कॉन्टेस्ट। आपके आंसर्स, आपके फेवरेट सॉन्ग्स और इतना सारा एक्साइटमेंट देखकर एक बात तो क्लियर है, न्यू जर्सी इज एब्सोल्युटली रेडी फॉर सोनू निगम। और इसी एक्साइटमेंट को और बढ़ाते हुए अब मिर्ची पर सुनेंगे सोनू निगम के बैक टू बैक गाने, क्योंकि कल यानी शुक्रवार सितंबर 11 को सोनू निगम लेकर आ रहे हैं रिवॉल्यूशन टूर एट हार्ड रॉक लाइव ईटस एरिना अटलांटिक सिटी में, प्रेजेंटेड बाय अमित जेटली ऑफ सा यूएसए आईएनसी। तो अगर टिकट्स अभी तक नहीं लिए तो चेकआउट ticketmaster.com, saayusaiinc.com या फिर sulekha.com, क्योंकि बहुत ही कम टिकट्स बचे हैं, तो जल्दी से जाइए। और अब बातें कम, म्यूजिक ज्यादा, सोनू निगम बैक टू बैक ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: ओ यार मिर्जापुर आ गई यानी 2018 में जिन लोगों ने इस सीरियल बात देखल बे ना, इन लोगों को तो बिंदास्त में एक बार थिएटर में जाकर अपने अपनी कालीन अब चद्दर बिछा कर कालीन भैया के एंटरटेनमेंट देखना बनता है। सारे जो कलाकार है वो धमाल करते हैं। इनफैक्ट जीतूराज तो कहेगा कि जितने लोगों को मिर्जापुर पसंद आई थी उन लोगों को तो 100% पसंद आएगी, पर जिन लोगों ने मिर्जापुर ये सीरीज नहीं देखी उन लोगों को भी एक बार बिंदास देख लेनी चाहिए। बहुत धमाल है, बहुत सारी गाली गलौच है, बहुत सारी गुंडागर्दी है, बहुत सारा खून रेजी है, बट दैट इज व्हाट मिर्जापुर इज ऑल अबाउट। बट जीतूराज को स्त्रियों का महत्व बड़ा पसंद आता है, एंड मिर्जापुर सीरीज में जो स्त्रियों को महत्व दिया था वो इस पहले हिस्से में, शायद ऐसे लगता है कि दूसरा हिस्सा भी आएगा मिर्जापुर द मूवी का, इस पहले हिस्से में स्त्रियों को महत्व नहीं दिया है, कोई कारण होगा पता नहीं है, बट बिंदास देखी जा सकती है। ये भौकाल एक बार एंटरटेनमेंट के लिए अपनी फैमिली के साथ देखना चाहिए या नहीं, एक कॉल त्योहार है। हम तोहका ना ही बोला है कि जाके थिएटर में अपनी फैमिली के साथ देखाओ, बट इंडिविजुअली अपने फ्रेंड्सवा के साथ बिंदास तंगड़ियां पसार के कुर्सियों पर बैठकर देख लो हैं, ये का भौकाल मचाए मिर्जापुर द मूवी ने। एंड हां भूलना मत, हमारे रवि किशन भैया जब जब स्क्रीन पर आते ना भैया, अमा पनवा चटाई के जव धमाल करे, कभी कभार तो ऐसे लगाए कि ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, रवि किशन बाबू कि हमारे कालीन भैया पंकज त्रिपाठी। वो फुल एंटरटेनमेंट है यार। 3:30 मिर्ची है टीम मिर्ची की तरफ से, देखा और अपनी कितनी मिर्चियां हैं वो हमका बताओ इंस्टाग्राम पर आए @मिर्ची जीतूराज। समझे कि नहीं समझे, सही है
0: साथ जीतूराज। Only on Mirchi, it's hot.

एक सूटकेस में कितने सपने फिट हो सकते हैं। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और जब भी कोई पढ़ने या करियर के लिए दूसरे देश जाता है ना, सूटकेस में कपड़े कम होते हैं लेकिन उम्मीदें ज़्यादा होती है। हर फ्लाइट एक नई बिगनिंग लेकर उड़ती है। और अगर आपकी नेक्स्ट डेस्टिनेशन अमेरिका है और हेल्थ केयर फील्ड में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हो, तो एम्स एजुकेशन कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज आपके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी लाया है। एलिजिबल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए F1 वीज़ा एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट कंप्लीट करने पर I-20 इशू की जा सकती है। एक्सप्लोर कीजिए सर्जिकल, MRI, अल्ट्रासाउंड, कार्डियोवैस्कुलर, एनेस्थीशिया और न्यूरो डायग्नोस्टिक टेक्नोलॉजीज के AAS डिग्री प्रोग्राम्स। और साथ ही रेपिटेड मेडिकल सेंटर्स में अनपेड क्लिनिकल इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज भी मिल सकती है, जो देते हैं रियल वर्ल्ड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। आज ही विजिट कीजिए aimseducation.edu। एम्स एजुकेशन, स्टडी इन अमेरिका, ट्रेन इन हेल्थ केयर एंड टेक योर करियर फॉरवर्ड। और चलिए, सपनों की बातें हो रही है तो सपनों से भरा ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शारदा लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि, और बातें हो रही है 2009 के एक ऐसे एल्बम की जिसका यार हर एक गाना सुपर डुपर हिट था। एल्बम था प्रीतम ने बनाया हुआ लव आजकल का, तो ये तो आपको याद होगा ही। लेकिन इसका जो ये खास गाना है जो सीधा साधा नहीं था, बिल्कुल था ट्विस्ट, पूरा मूड पार्टी मोड में स्विच कराने वाला एक गाना, जो यार लिखा तो वैसे इरशाद कामिल ने था, सिंगर थे नीरज श्रीधर और म्यूजिक था प्रीतम का। और जब भी शाम को थोड़ा ग्रूव चाहिए था ना, तो हम ट्विस्ट सुनते थे, क्योंकि यार नीरज श्रीधर की एनर्जेटिक आवाज़ ही ऐसी थी कि यार अगर तुम बस बैठे हो ना तो भी थिरकने लग जाते थे। और प्रीतम का फंकी कंपोजिशन, इन दोनों का बहुत ही परफेक्ट मेल था। और ये जो गाना था हर पार्टी में अपने आप को पोजीशन कर ही लेता था। वैसे मज़े की बात तो ये है कि इस सॉन्ग की कोरियोग्राफी में सैफ अली खान ने अपने नेचुरल डांसिंग स्टाइल को फुल ऑन एक्सप्लोर किया था, जहाँ उन्होंने स्पॉन्टेनियस डांस मूव्स किए थे। मतलब वो ज़्यादा कोरियोग्राफी हुई ही नहीं थी उस मूवी में, जो फिल्म में सबसे ज़्यादा

था, सरप्राइजिंग था। वैसे प्रीतम और इरशाद कामिल का कोलैबोरेशन फुल ऑन फन वाइब, ये गाना एक इंस्टेंट क्राउड पुलर बन ही गया था और आज भी उतना ही हमें थिरकाता है, उतना ही हमें डांस करने पे मजबूर करता है। तो आप भी बताना कि आपका ट्विस्ट मोमेंट कब था। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI, और क्या आज भी ये गाना सुन के आप भी अपने आप में डांस करते हो। वैसे इस एल्बम के और भी गाने के बारे में बात होने वाली है, तो कहीं ना जाइए, बने रहिए मेरे साथ राइट हियर ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Milci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. La virtua la burka. Milci, burka.
1: हेलो
2: मिल गया मैडम, आप मयूर विहार में हमारा रक्षा पे बैठ के मयूर विहार फेज वन से फेज टू गई थी, याद है आपको?
1: नहीं, नंबर कहाँ से मिल गया?
2: वही आपको बता रहे हैं, आप जब उतर के गई है ना अपने घर, और घर के जो आपके पड़ोसी हैं, हम उनसे नंबर आपका लिए हैं, मोबाइल नंबर, जो आप बोले हैं दाएं को मुड़ने के लिए, जब दाएं मुड़े हैं ना हम, मैडम आपका रास्ते में फोन भी आया था, जब आपका फोनवा बजा है तो आपकी आवाज सुने हैं हम, बहुत अच्छा लगा है आवाज सुन के। आज जब रिक्शा पे बैठी है ना, मैं हम कसम खा रहे हैं, हम जब से आप बैठे हो उस सीट को हम कि छूने भी नहीं दिए, हम धोलाए भी नहीं है।
1: क्या तुझे पागल लगा?
2: नहीं वो मैडम, हम आपसे एक बात कहना चाह रहे थे।
1: क्या कहना है?
2: मैडम आई लव यू, हम आपको देख के इतना मेरी बात है। चारू फोन मत रखना। हेलो, चारू में रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुझे किसी ने तुम्हारा नंबर दिया था, उसने मुझे बताया कि तुमने रिक्शा पे ट्रैवल किया था, रिक्शा पे बैठ के गई थी, मैंने तो मजाक किया, तुम्हारा मुर्गा बना दिया। आई लव यू बट मैं सभी से मोहब्बत करता हूँ यार, आई लव यू, मैं रिक्शा नहीं चलाता हूँ। चारू प्लीज बुरा मत मान यार, थोड़ा सा नहीं, रिक्शा मैं चलाने को तैयार हूँ यार तुम्हारी वजह से, लेकिन तुम प्लीज जरा थोड़ा सा गुस्सा कम कर दो, मेरे साथ प्यार से हंस के बोल दो।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि, और बातें हो रही है 2009 के एक ऐसे एल्बम की जिसका यार हर एक गाना सुपर डुपर हिट था। जी हाँ, लव आज का कल का, लव आज कल कंपोज्ड बाय प्रीतम। और उस एल्बम का जो ये गाना है, ये एक ऐसा गाना था जिसने यार ब्रेकअप को भी ना मुस्कुरा कर देखना सिखा दिया था। ऑफकोर्स आपने गेस कर ही लिया होगा, चोर बाजारी। मतलब कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि ज़्यादातर ब्रेकअप सॉन्ग्स रुला देते हैं या फिर फिलोसॉफिकल हो जाते हैं, मतलब अरिजीत सिंह टाइप्स, लेकिन चोर बाजारी ये हार्ट ब्रेक को भी ना थोड़ा शरारती बना देता था। मतलब अगर आज की शाम में ट्रैफिक में फंसे एक्स की याद आ भी जाए तो ये गाना कहता है कि यार थोड़ा हंस लो उस पे, क्योंकि नीरज श्रीधर और सुनिधि चौहान की नोक झोंक भरी वोकल्स बिल्कुल दो एक्स लवर्स की टीजिंग जैसी लगती है। और प्रीतम ने इसमें दर्द को ढोलक और बाउंस के साथ पैकेज किया। मतलब सोचिए क्या कमाल का कॉन्ट्रास्ट है। मज़े की बात तो ये है कि इम्तियाज़ अली ने इस गाने को ना स्पेसिफिकली सैड सेपरेशन जोन में नहीं रखा था, डेलिबरेटली प्लेफुल बनाया था, क्योंकि जय और मीरा का जो रिलेशनशिप है वो ख़त्म होके भी मूवी में ख़त्म नहीं हुआ था, और इसीलिए गाना ब्रेकअप सॉन्ग होकर भी सेलिब्रेशन लगता है। और वो अकॉर्डियन स्ट्रीट बैंड जैसा जो फील है ना, वो यार दिल्ली की गलियों में सीधा लेके जाता है, जहाँ दिल और ईगो दोनों साथ में भाग रहे होते हैं। वैसे आप भी बताना कि हार्ट ब्रेक का कौन सा ऐसा सॉन्ग है जो आपको बहुत पसंद है। क्या वो इसी तरह हल्का वाला गाना है या फिर दिल तोड़ के चीर देने वाला गाना है? टेल मी ऑन इंस्टेड आरजी मिर्ची सिद्धि SIDDHI। फिलहाल करेंगे इसी एल्बम पे थोड़ी और बातें, लेकिन आपके लिए राइट हियर चोर बाजारी ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि, और बातें हो रही है 2009 के उस सुपर डुपर हिट एल्बम की जिसका यार हर एक गाना धमाकेदार था, कंपोज्ड बाय प्रीतम। 2009 का लव आजकल का एल्बम, और वैसे तो यार इसके सारे ही गाने अमेजिंग थे, लेकिन एक गाना ऐसा है जिसे सुन के ना शांत रहना इम्पॉसिबल हो जाता है, आर फेवरेट आहू आहू। क्योंकि सच बताओ तो आहू आहू वो गाना है जो सुनते ही बॉडी पहले रिएक्ट करती है और दिमाग बाद में बोलता है, फिर चाहे इवनिंग ड्राइव टाइम हो या किचन में चाय बन रही हो, इस बीट पे शोल्डर्स खुद हिलने लगते हैं। क्योंकि नीरज श्रीधर की जो प्लेफुल वोकल्स है, मास्टर सलीम का पंजाबी फायर और सुजन डी मेलो का एटीट्यूड और ऊपर से प्रीतम के ढोल मीट्स क्लब का ग्रूव, ये गाना मतलब फुल ऑन कंट्रोल्ड मैडनेस है। और सबसे मजे की बात तो ये है कि ये जो सॉन्ग का फोक क्लब फ्यूजन है ना, उस वक्त ही इतना ज़्यादा फ्रेश लगता था, और ना सिर्फ उस वक्त अभी भी उतना ही ग्रूविंग है, और उसके ऊपर मास्टर सलीम का जो रस्टिक पंच है उसने इस ट्रैक को वो देसी स्वैगर दिया था जो हमें सीधा डांस फ्लोर पे लेके जाता है। वैसे ऑनेस्टली ये जो गाना है वो उन रेयर गानों में से है जो थोड़ा सा फ्लर्ट करता है, थोड़ा सा टीज करता है और बहुत ज़्यादा ग्रूव कराता है। तो चलिए आपको मैं चैलेंज देती हूँ कि आहू आहू सुन के ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप स्टिल बैठे हो। टेल मी ऑन इंस्टा कि ये गाना सुन के क्या आपने थोड़ा हेड बॉप किया या फिर फिंगर टॉप किया या फिर स्टरिंग पे बीट मारी, और अगर मारी तो यू आर कॉट। दोस्तों मुझे जरूर बताना कि ये सब हुआ कि नहीं। टेल मी ऑन इंस्टा आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI, और तब तक के लिए आपके लिए लव आजकल का आहू आहू राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: साथ जीतू राज only on मिर्ची it's hot।
1: ओ यार मिर्जापुर आ गई। यानी 2018 में जिन लोगों ने ये सीरियल बात देखल बे ना, इन लोगों को तो बिंदास्त में एक बार थिएटर में जाकर अपनी अपनी कालीन अब चद्दर बिछाकर कालीन भैया के एंटरटेनमेंट देखना बनता है। सारे जो कलाकार है वो धमाल करते हैं। इनफैक्ट जीतूराज तो कहेगा कि जितने लोगों को मिर्जापुर पसंद आई थी उन लोगों को तो 100% पसंद आएगी, पर जिन लोगों ने मिर्जापुर ये सीरीज नहीं देखी उन लोगों को भी एक बार बिंदास देख लेनी चाहिए। बहुत धमाल है, बहुत सारी गाली गलौज है, बहुत सारी गुंडागर्दी है, बहुत सारा खूनरेजी है, बट दैट इज व्हाट मिर्जापुर इज ऑल अबाउट। बट जीतूराज को स्त्रियों का महत्व बड़ा पसंद आता है, एंड मिर्जापुर सीरीज में जो स्त्रियों को महत्व दिया था वो इस पहले हिस्से में, शायद ऐसे लगता है कि दूसरा हिस्सा भी आएगा मिर्जापुर तो मूवी का, इस पहले हिस्से में स्त्रियों को महत्व नहीं दिया है, कोई कारण होगा पता नहीं है, बट बिंदास देखी जा सकती है। ये भौकाल एक बार एंटरटेनमेंट के लिए अपनी फैमिली के साथ देखना चाहिए या नहीं, एक और त्योहार है। हम तोहका ना ही बोला है कि जाके थिएटर में अपनी फैमिली के साथ देखाओ, बट इंडिविजुअली अपने फ्रेंड्सवा के साथ बिंदास तंगड़ियां पसार के कुर्सियों पर बैठकर देख लो ये का भौकाल मचाया मिर्जापुर द मूवी ने। एंड हां, भूलना मत हमारे रवि किशन भैया जब जब स्क्रीन पर आते हैं ना भैया, अमा पनवा चटाई के जब धमाल करे, कभी कभार तो ऐसे लगा है कि ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, रवि किशन बाबू कि हमारे कालीन भैया पंकज त्रिपाठी। वो फुल एंटरटेनमेंट है यार। 3:30 मिर्ची है टीम मिर्ची की तरफ से, देखा और अपनी कितनी मिर्चियां हैं वो हमका बताओ इंस्टाग्राम पर आए @ मिर्ची जीतूराज। समझे कि नहीं समझे, सही है
0: साथ जीतूराज only on मिर्ची it's hot।
2: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
3: only on रेडियो मिर्ची it's hot।

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि, और बातें हो रही है 2009 के एक ऐसे एल्बम के बारे में जिसका हर एक गाना ना सिर्फ सुपर डुपर हिट था बल्कि दिल को छू लेने वाला था। जी हाँ, वैसे तो इस एल्बम के बारे में हमने बहुत सारी बातें की है, इसके गानों के बहुत सारी बातें की है। कंपोज बाई प्रीतम, लव आजकल का एल्बम, जिसमें यार चोर बाजारी जैसा ब्रेकअप वाला गाना भी था जिसने ब्रेकअप के बाद मुस्कुराना सिखा दिया था, और एक ऐसा गाना था जिसने बस दूरियों को महसूस कराना सिखाया था। जी हाँ, ये दूरियां बाय मोहित चौहान, क्योंकि कुछ गाने सुनते ही ना दिल में उतर जाते हैं और दूरियां उन्हीं में से एक गाना था। जब चोर बाजारी हमने सुना था तब लगा था कि इम्तियाज अली और प्रीतम ने इस एल्बम को काफी ब्रॉड रेंज बनाया था कि एक हार्ट ब्रेक के गाने को भी इतने हल्के से शरारती रंग में दिखाया था, लेकिन फिर पता चला क्योंकि बाद में दूरियां आने वाला था, क्योंकि दूरियां वो एक ऐसी कहानी बताता था जब साइलेंस भी बोलने लगता है, क्योंकि मोहित चौहान की आवाज़ ही ऐसी थी, जो रॉनस उनकी आवाज़ में थी ना, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो गाना गा रहे हैं, बस ऐसा लग रहा था कि दिल से कुछ बोल रहे हैं। और प्रीतम का कंपोजिशन भी देखिए, मतलब ना कोई बीट्स, बस गिटार और हवा और थोड़ी सी साइलेंस, जैसे गाने में भी ना फासला हो। और यही तो कमाल की बात है इस गाने की, ये गाना सिर्फ दूरियों की बातें नहीं करता, दूरियाँ महसूस कराता है। किसी का साथ छूटना, लॉन्ग डिस्टेंस या बस एक इमोशनल गैप, हर कोई जो इस गाने को सुनता है ना अपनी कहानी में उसे रख देता है। और मज़े की बात तो ये है कि मोहित चौहान के फ्री फ्लोइंग फ्रेजिंग और ऑलमोस्ट एक कन्वर्जेशनल टाइप सिंगिंग ने इस ट्रैक को बहुत ही ज़्यादा इंटीमेट बना दिया, और शायद इसीलिए ये हार्ट ब्रेक एंथम कम पर्सनल कन्फेशन ज़्यादा लगता है। वैसे आप भी मुझे बताइए, क्या आपको ये गाना उतना ही डीप लगता है जितना मुझे लगता है? टेल मी ऑनेस्ट एट आर जे मिर्ची सिद्धि, SIDDHI। और अगर इस गाने ने दूरियाँ फील कराई है तो किसको याद करके आज ये गाना सुन रहे हो वो भी बताना। तब तक के लिए सुनते हैं दूरियाँ फ्रॉम द अमेजिंग एल्बम लव आजकल, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट।

कुछ खास गाने और उनके कुछ खास किस्से। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और गेरुआ ये गाना सुनते ही ना एक अलग ही ड्रीमी सी फीलिंग आ जाती है। पर एक बहुत ही अमेजिंग सा फन फैक्ट है इस गाने का कि यार अरिजीत सिंह ने जब ये गाना रिकॉर्ड किया था तो बस एक टेक में रिकॉर्ड किया था। अब ऐसे तो कई सारे गाने हैं जो एक टेक में रिकॉर्ड किए जाते हैं, लेकिन ये गाना उसमें भी खास है क्योंकि रिकॉर्डिंग के टाइम पे ना बस डायरेक्टर ने बोल दिया था कि वार्म अप के लिए एक रफ टेक ले लो, मतलब जस्ट एक यू नो एक रिहर्सल टेक ले लो। और जब वो रफ टेक अरिजीत सिंह ने गाया तो वही बन गया फाइनल मास्टर टेक। और टीम ने कहा कि यार ये आवाज़ ही इतनी अमेजिंग है, इतना एफर्टलेस डेप्थ है इस आवाज़ में, इस टेक में, कि इसी टेक को फाइनल करते हैं। तो बस फाइनल टेक कभी किया ही नहीं और यही टेक फाइनल बन चुका था। तो मतलब बोलते हैं ना कभी कभी प्रैक्टिस भी परफेक्शन बन जाती है, तो अरिजीत जी के साथ कुछ ऐसा ही होता है। और शायद इसलिए ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक सिंगर्स ऑफ इंडियन सिनेमा। वैसे आपका फेवरेट अरिजीत सिंह का गाना कौन सा, टेल मी ऑन इंस्टेंट आरजे मिर्ची सिद्धि IDDHR। और फिलहाल सुनते हैं ये वन टेक सॉन्ग ऑफ अरिजीत सिंह, गेरुआ, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi. Escabana, pues cabana, sacabana.
1: Cabana.
0: Burga, burga. La fiesta la burga.
1: Mirchi, burga.
2: हेलो
3: हेलो मुकेश जी.
2: कौन
3: मुकेश जी? मैं ये प्रताप बोल रहा हूँ, राणा मोटर से. आपने जो 1000 दी थी ना, उसका वो जो कार्बोरेटर साफ होना था, वो सर हो नहीं पाया एक्चुअली. थोड़ा
2: नहीं हो पाया भाई.
3: हाँ, वो नहीं हो पाया सर.
2: हाँ जी, नहीं पाया
3: सर, वो थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी. अच्छा सर, आप बता रहे थे ना पीछे बोनेट से आवाज आ रही है आपकी गाड़ी की. सर वो भी हो नहीं पाई है, वो उसमें थोड़ा हो नहीं पाया हमसे अभी.
2: नहीं, क्या नहीं पाया तुम्हारे यार, रोज गए तुम्हें, जब भी गाड़ी तो नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया, क्या मजाक ही क्या है ये?
3: नहीं मुकेश जी, मैं समझ रहा हूँ वो एक
2: क्या समझ रहे हो भाई.
3: नहीं नहीं, आप सही कह रहे हैं. अच्छा मुकेश जी, आपने एक बताया था ना ब्रेक ऑयल डलना है, ब्रेक काम नहीं कर रहे. सर वो ऑयल डल नहीं पाया थोड़ा.
2: अरे तो हो क्या पाया है तुमसे
3: सर? वो
2: ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया. मुझे फोन करना है, मुझे फोन इसलिए कराया कि ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया.
3: नहीं सर,
2: आपको तो फोन इसलिए करना था कि भाई ये जो काम दिया गया आपको वो कर दे.
3: नहीं सर, कुछ हो नहीं पाया.
2: क्यों नहीं हो पाया
3: सर? वो रात गाड़ी चोरी हो गई आपकी.
2: है
3: सर, रात गाड़ी चोरी हो गई आपकी.
2: अरे तेरा दिमाग खराब है क्या?
3: अरे सर मैं वही आपसे कह रहा हूँ, मतलब हम
2: क्या करा दू
3: सर? मतलब आप ये आप आके FIR लिखवा देंगे अपनी गाड़ी की?
2: कैसी FIR? दिमाग खराब हो गया तेरा, पागल तो नहीं है तू?
3: अरे सर जितने की गाड़ी थी इतना दे देंगे आप? गुस्सा तो मत करिए कम से कम.
2: कहा गुस्सा ना करूं, नई गाड़ी थी हमारी.
3: नहीं सर, आप आपकी नई गाड़ी थी तो सर हमारे भी तो उसमें कुछ गया है, हमने भी तो ग्रीस लगाया.
2: उसमें
3: ग्रीस लगाया, उसमें हमने पेट्रोल डाला.
2: ग्रीस कितने का? 5 रुपए का लगाया. आग लगा दूंगा मैं तुम्हारे शोरूम में, तुम्हारे वर्कशॉप में.
3: अच्छा सर,
2: मुझे चाहिए अपनी वापस.
3: सर आप इतना गुस्सा ना करें,
2: जिम्मेदारी तुम्हारी है FIR वगैरह कराने की.
3: सर बिल्कुल आप गुस्सा ना करें. अच्छा सर, ऐसा चल सकता है जैसे आप गाड़ी ना लेके कॉम्पोजिट कर दें, हम आज शाम आपको मुर्गा खिला दें और मुकेश वो बन भी गया मुर्गा.
4: मुकेश, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, छोटा सा मजाक किया तुम्हारे साथ, मुर्गा बना दिया तुम्हारा.
2: तो जान निकाल दी हमारी.
4: मुकेश, आपकी गाड़ी वही खड़ी है आपकी वर्कशॉप में, बस उसको धक्का लगाना है और आपको धक्का हम लगा देंगे. मेरे साथ जरा प्यार से कह दीजिए, गुस्सा खत्म करिए.
2: कुकड़ू कू.
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

बॉलीवुड म्यूजिक का डिबेट कभी खत्म ही नहीं होता, ओल्ड इज गोल्ड या न्यू इज बोल्ड। शाम शादा लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और पुराने गाने ना यार टाइम लेते थे दिल में बसने के लिए, लेकिन नए गाने इंस्टेंट वाइब देते हैं। पहले लिरिक्स डायरी जैसे लगते थे, लेकिन आज बीट्स प्लेलिस्ट फ्रेंडली हो गए। दोनों का ना अपना ही एक अलग चार्म है, एक मेमोरी बनाता है लेकिन दूसरा मोमेंट बनाता है। और शायद इसी बैलेंस में बॉलीवुड म्यूजिक सरवाइव कर रहा है। वैसे आप भी बताओ दोस्तों, आपका मूड आज किस तरफ है, रेट्रो या रीसेंट? डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। फिलहाल मेरा मूड क्या कहता है वो तो आप अभी सुनेंगे राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

कभी कभी कोई गाना ऐसा होता है जो बजते ही शाम का मूड चेंज कर देता है। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि, और 2000 एरा का एक ऐसा ही टाइमलेस ट्रैक है कल हो ना हो। यार जैसे ही उसका सॉफ्ट पियानो इंट्रो शुरू होता है ना, सडनली सब कुछ थोड़ा सा स्लो लगने लगता है। ड्राइव हो, चाय हो, या बस विंडोज से बाहर देखना, यार इस गाने की खूबसूरती ही ये है कि ये लाउड नहीं है पर इम्पैक्ट बहुत ही ज्यादा डीप है। सिंपल सी मेलोडी है, सोलफुल सी आवाज है, वो भी सोनू निगम की, और वो लाइन जो याद दिलाती है कि हर दिन को ना थोड़ा और अप्रिशिएट करना चाहिए। और इसीलिए जब भी ये ट्रैक रेडियो पे आता है ना, लोग ऑटोमेटिकली वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा ही लेते हैं, क्योंकि कुछ गाने सिर्फ गाने नहीं होते, वो ना मूड बन जाते हैं। तो दोस्तों आप भी बताना कि कौन सा ऐसा बॉलीवुड का गाना है जो सुनते ही आपको भी वो पॉज और फील मोमेंट मिलता है। DM ऑन इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI, और तब तक के लिए आपके लिए कल हो ना हो, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: साथ जीतू राज only on मिर्ची इट्स हॉट।
1: ओ यार मिर्जापुर आ गई। यानी 2018 में जिन लोगों ने ये सीरियल बा देखल बे ना, इन लोगों को तो बिंदास्त में एक बार थिएटर में जाकर अपनी अपनी कालीन अब चद्दर बिछाकर कालीन भैया के एंटरटेनमेंट देखना बनता है। सारे जो कलाकार है वो धमाल करते हैं। इनफैक्ट जीतूराज तो कहेगा कि जितने लोगों को मिर्जापुर पसंद आई थी उन लोगों को तो 100% पसंद आएगी, पर जिन लोगों ने मिर्जापुर ये सीरीज नहीं देखी उन लोगों को भी एक बार बिंदास देख लेनी चाहिए। बहुत धमाल है, बहुत सारी गाली गलौच है, बहुत सारी गुंडागर्दी है, बहुत सारा खूनरेजी है, बट दैट इज व्हाट मिर्जापुर इज ऑल अबाउट। बट जीतूराज को स्त्रियों का महत्व बड़ा पसंद आता है, एंड मिर्जापुर सीरीज में जो स्त्रियों को महत्व दिया था वो इस पहले हिस्से में, शायद ऐसे लगता है कि दूसरा हिस्सा भी आएगा मिर्जापुर द मूवी का, इस पहले हिस्से में स्त्रियों को महत्व नहीं दिया है। कोई कारण होगा पता नहीं है, बट बिंदास देखी जा सकती है। ये भौकाल एक बार एंटरटेनमेंट के लिए अपनी फैमिली के साथ देखना चाहिए या नहीं, एक कॉल त्योहार है। हम तोहका ना ही बोला है कि जाके थिएटर में अपनी फैमिली के साथ देखाओ, बट इंडिविजुअली अपने फ्रेंड्सवा के साथ बिंदास तंगड़ियां पसार के कुर्सियों पर बैठकर देख लो हैं, ये का भौकाल मचाया मिर्जापुर द मूवी ने। एंड हां भूलना मत, हमारे रवि किशन भैया जब जब स्क्रीन पर आते हैं ना भैया, अमा पनवा चटाई के जब धमाल करे, कभी कभार तो ऐसे लगा है कि ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, रवि किशन बाबू कि हमारे कालीन भैया पंकज त्रिपाठी। फुल एंटरटेनमेंट है यार। 3:30 मिर्ची है टीम मिर्ची की तरफ से, देखा और अपनी कितनी मिर्चियां हैं वो हमका बताओ इंस्टाग्राम पर, आए एट मिर्ची जीतूराज, समझे कि नहीं समझे, सही है।
0: साथ जीतूराज, only on मिर्ची, it's hot।

शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। एंड चलिए, अब वक्त आ चुका है फॉर मी टू से टाटा, बाय बाय, सायोनारा टू यू। लेकिन ना, आप कहीं ना जाइए, क्योंकि थर्सडे की शाम है, बस एक दिन और फिर फ्राइडे जल्द ही शुरू होने वाला है। तो कहीं ना जाइए, बने रहिए, जमे रहिए, टिके रहिए और सुनते रहिए रेडियो मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Mitchy Roshi.
1: Only on Radio Mitchy New York, South Asia's number one radio station. It's hot.
2: Good morning in the night, my little Roshans. Welcome to a brand new edition of Mirchi Insta Pyar on this Thursday. और आज मैं आपको एक शब्द सिखाने वाली हूँ और उसका अर्थ भी consequently. शब्द है blind spot. अर्थ है वो जगह जो more often than not लोगों को नजर नहीं आती है. सामने ही होती है लेकिन लोग उसे नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि आगे कुछ है पीछे कुछ है. और ब्लाइंड स्पॉट एग्जैक्टली वह ही जगह होती है जहां आप और आपके पार्टनर छुप छुप के मेकआउट करते हो, मोस्ट ऑफ इन द नॉट इन पब्लिक. अब मेरा आपसे सवाल मीठा मीठा ऑन दिस थर्सडे इवनिंग है, कभी किया है आपने ऐसे ब्लाइंड स्पॉट में मेकआउट जहां पकड़े जाने का रिस्क इज 100%, बट अगर रिस्क नहीं लिया तो प्यार क्या किया? अगर आपको भी ऐसी फीलिंग्स होती हैं, व्हाई डोंट यू हिट मी अप डार्लिंग इंस्टा पर या FB पर. एंड व्हाइल यू डू दैट, कहीं मत जाना क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.